एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1946 के आश्विन मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 2 अक्टूबर 2026 प्रातः के 5:57 हो चुके हैं। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने को है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को केवल एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
3: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
2: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। विदेशों में भी भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकास का लाभ किसी भी नागरिक से न छूटे, इसके लिए संवेदना और समावेशिता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 125वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज राजघाट पर गांधी जयंती और विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किए हैं। कार्यक्रम की सुगमता तथा यातायात सुचारू एवं सुरक्षित रखने के लिए राजघाट, रिंग रोड और आसपास की सड़कों पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
4: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान

0: की योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई की उड़ान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब के तबुक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें आबुधाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। जापान में 20वें एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत अब तक 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य पदक सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए चिंतन।

परिवार समाज की एक इकाई है और मनुष्यों का एक समूह परिवार के रूप में समाज का हिस्सा है। प्रायः मनुष्य एकाकी नहीं रह पाता और इसीलिए उसे परिवार की आवश्यकता है। परिवार के केंद्र में माता पिता होते हैं जिनसे परिवार एकजुट रह पाता है। परिवार में माता पिता, दादा दादी, पुत्र पुत्रियां, चाचा बाबा और अन्य रिश्ते समाहित रहते हैं। यदि हम थोड़ा पीछे की ओर जाएं तो पाएंगे कि हमारे यहाँ संयुक्त परिवारों की एक लंबी परंपरा रही है जिसमें आपसी रक्त संबंधों के बहुत से सदस्य एक साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार में रहते हुए हमने पारिवारिक संस्कारों को सहज रूप से ही सीख लिया था। संयुक्त परिवार में रहते हुए मनुष्य को सुरक्षा का भी भरोसा था, साथ ही सामूहिक भोजन और घर खेत खलिहान के कार्य भी सामूहिक रूप से सहजतापूर्वक संपन्न हो जाते थे। इस प्रकार संयुक्त परिवारों में हरेक सदस्य को अपने कर्तव्यों का पर्याप्त ध्यान रहता था और मुखिया के तौर पर वयोवृद्ध व्यक्ति की आज्ञा का पालन सभी करते थे। आज आर्थिक उलझनों के कारण संयुक्त परिवार बिखर गए और एकल परिवार हो गए जिसमें हम दो, हमारे दो, बस। इसी विचार के इर्द गिर्द बुने गए परिवार कर्ज और आभासी दिखावे में जी रहे हैं और उनकी सभी खुशियां तीज त्योहार के उल्लास फीके पड़ गए हैं। अब इससे भी आगे न्यूक्लियर फैमिली जिसमें सिर्फ पति पत्नी ही होते हैं का चलन देखने में आ रहा है, जो केवल स्वयं के लिए भौतिक खुशी में जी रहे हैं। इस प्रकार के परिवारों से समाज में कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा। पहले और आज भी ये धारणा है कि परिवार बच्चों की पहली पाठशाला है और माँ हमारी पहली अध्यापिका। लेकिन जब परिवार ही सिकुड़ रहे हैं तो संस्कार कहाँ से आएंगे? माता पिता दोनों ही आर्थिक भंवर में ऐसे उलझे हैं कि बच्चों का बचपन महंगे स्कूलों में और टीवी मोबाइल में सिमट चुका है। सौभाग्य से अभी भी कुछ परिवार ऐसे बचे हैं जो अपनी सभी व्यस्तताओं के बाद भी इकट्ठे रहते हैं। उनके सभी त्योहार, व्रत, उपवास आदि कुटुंब में ही मनाए जाते हैं और बच्चे दादा दादी, काका या अन्य बड़ों की गोद में खेलकर शैतानियां करते हैं और इस प्रकार सहजता से ही उनमें पारिवारिक संस्कार विकसित हो रहे हैं। एक सुखी परिवार का होना हम सबके लिए और समाज के लिए परम आवश्यक है।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम वंदना।

वंदना सुन रहे हैं आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। लीजिए अब सुनिए शबनम चतुर्वेदी की आवाज में कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना।

0: इस देशभक्ति गीत के साथ ही वंदना कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे वंदना आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

अपनी चतुरंगिणी सेना तथा अयोध्या से आए पुरजनों सहित भरत श्री राम सीता तथा लक्ष्मण की पर्णकुटी के मार्ग पर पैदल अग्रसर हो रहे हैं। मार्ग में मिलने वाले कोल, भील, वानप्रस्थियों तथा विरक्त सन्यासियों से उनका एक ही प्रश्न है, श्री राम का निवास किस वन में है। मार्ग में एक रात्रि के विश्राम के बाद भरत अपने समाज सहित कामदगिरी पर्वत के समीप पहुंचे।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:40 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको रूबरू करवाते हैं कार्यक्रम विवरण से। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप जानेंगे आज दिनभर में प्रसारित होने वाले शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

दिल की जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से आप सुनेंगे ठीक सुबह 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 8:45 पर और सुगम संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह

हमारे केंद्र से प्रसारित फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 11:30 पर और रात्रि 10:20 पर।

कार्यक्रम मारीलो का प्रसारण समय रहेगा ठीक शाम 5:05 पर और कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे ठीक शाम 7:00।

गज धन गोधन और रतन धन खान, जाग जब आवे संतोष धन तो सब धन धूड़ समान। अब तुम

0: यहाँ प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है।
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट है।
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: मानव नाम दान तो दिया है, पर सारी बातों को मन भूल गया। क्यों भूला है? दुनिया के ऐसा आराम ठाक देखो, उज्जवल कपड़ा पहन तारे 500 पारी खाए, एक गुरु भक्ति सुमिरन बिना तो बंदा यमपुर जाए।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: इसलिए मानव ये झूठे सपना के सुकूर देके भूला हुआ सुबह और शाम परमात्मा को याद नहीं कर पा रहा है। संज्ञा सुमरण आरती भजन भरोसो दास, सुबह शाम परमात्मा का नाम ले और भजन का भरोसा रखे। मनसा वाशा कर्म नाथ सिमरे सतगुरु आप, गुरु के स्मरण करते रहें और भजन पे भरोसा करें। सतगुरु कहते हैं भजन

0: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: मन भजन करता है पर मन माया की ठाक में दीवाना बना हुआ है। आया है सो जाएंगे तो राजा रंग वजीर, कोहे सियाचन सड़सले तो कोहे बांध जंजीर। ये दीवाना मन।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए।
1: दुखित तन में उठत जवाला प्रगट दर्शन दीजिए, या विनती सुनो बलि जाहु सतगुरुए की वलन कीजिए। या विविधिये तन भाये व्याकुल तुम देखे जीव ना रहे, तपत तन में उठत जवाला कठिन दुख कैसे सहे। गुण अवगुण अपराधी अक्षमा करो अव

0: इस लोक पूजन के साथ ही कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 131.3 MHz पर। प्रातः के 7:20 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर सीमा भारद्वाज से वार्ता। वार्ता का विषय है महात्मा गांधी का जीवन दर्शन। आइए श्रोताओं सुनते हैं ये वार्ता।
1: गांधी चिंतन एक विचारधारा नहीं अपितु एक पूर्ण दर्शन है। गांधीवादी व्यवस्था का केंद्र अहिंसा एवं सत्य है। गांधी जी के सामाजिक दर्शन में भी इन दोनों बौद्धिक तत्वों की प्रधानता दिखाई देती है। बापू अहिंसा को सामाजिक सद्गुण मानते थे, इसलिए उन्होंने सत्य एवं अहिंसा की सोच पर आधारित एक सामाजिक संगठन सर्वोदय की बात कही। गांधी जी के विचार बहुमार्गी व व्यापकता से ओतप्रोत हैं। उनके चिंतन में मानवतावाद, उदारवाद, सर्वोदयवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद एवं अंतरराष्ट्रवाद की झलक स्वतः ही दिखाई देती है। बापू का सर्वोदयवाद एक ऐसे समाज की स्थापना चाहता है जिसमें सभी व्यक्तियों का उदय हो, जहां शोषण, विषमता, छुआछूत जैसे दोष न हो। सभी मनुष्यों को एक दूसरे के साथ सेवा भाव रखना चाहिए, जिससे कि समाज व राष्ट्र का उत्थान तथा विकास संभव हो सके। सर्वोदय का आधार अहिंसा होना चाहिए, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता व गरिमा संरक्षित रह सके। यदि हम मूल में जाएं, तो हम पाते हैं कि बापू की सर्वोदय की भावना में भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषताओं की प्रतीति होती है और वेदांत व गीता के साम्य का समन्वय दिखाई देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, अर्थात सर्वोदय के माध्यम से बापू मानव समाज का एक ऐसा सर्वांगीण विकास चाहते थे जिसमें मानवता का कल्याण व विकास आपसी समन्वय व सहयोग के द्वारा पूर्ण हो। सर्वोदय के लिए बापू ने कुछ नियमों एवं नैतिक मूल्यों का भी समर्थन किया और कहा कि इन नियमों तथा नैतिक बल के संयोग से ही व्यक्ति में व्यक्तित्व तथा समाज के अस्तित्व का उदय होगा। गांधी जी ने सत्यनिष्ठा और नैतिकता को जीवन की मूल आधारशिलाएं माना और कहा कि अहिंसा मानव के आचरण की एक मनोवृत्ति है तथा मानव हृदय की यह वह दिव्य ज्योति है जो सक्रिय शक्ति के रूप में कार्य करती है। बापू की विचारधारा साम्यवादी और समन्वयवादी थी। वे आदर्श को व्यवहारमय और व्यवहार को आदर्शमय बनाने के लिए प्रयासरत रहे। गांधी जी सभी धर्मों का आदर करते थे और सभी धर्म ग्रंथों के प्रेरणापुंज शाश्वत मूल्यों को मानवता की धरोहर समझते थे। आप सत्य, प्रेम, विश्व बंधुत्व और समभाव के माध्यम से मानवता को जोड़ना चाहते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व के संघ में 1928 में अपने भाषण में कहा कि सभी धर्म सच्चे हैं, मेरा धर्म मुझे वह सब प्रदान करता है जो मेरे

आत्मिक उत्थान के लिए आवश्यक है। गांधी जी मानते थे कि धर्म व्यक्ति का ईश्वर से एकाकार कराने में बहुत सहयोगी माध्यम है। बापू मानते हैं कि धर्म मत मतांतरों और अंधविश्वासों की संकीर्ण सीमाओं से परे व्यक्ति के दृष्टिकोण में उदारता और सहिष्णुता का उदय करता है। सभी धर्म शाश्वत सिद्धांतों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हैं। अपने धर्म को अच्छा मानना दूसरे धर्मों के प्रति विरोध का समर्थन नहीं है। सर्वधर्म संभाव बापू के धार्मिक व राजनैतिक विचारों का केंद्रीय बल है। भागवत गीता गांधी जी के लिए आध्यात्मिक निर्देशक व पथ प्रदर्शक की तरह थी। गांधी जी ने कर्म को ही विकास का आधार माना। कर्मण्येवाधी का रस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता के तत्व बोध के प्रभाव व प्रकाश में गांधी जी कर्मयोगी बने और आप गीता को सत्य जानने की अद्वितीय पुस्तक मानते थे। बापू अंधविश्वासी नहीं थे। वे व्यवहारिक ज्ञान, छुआछूत निवारण, शारीरिक श्रम, स्वदेशी सखाभाव जैसे विचारों के पोषक थे। गांधी जी ने अपनी मौलिक विशेषताओं के साथ राजनीतिक चिंतन का विश्लेषण किया और राष्ट्रपिता होने का गौरव प्राप्त किया। आपके चिंतन में एक और गौरवशाली अतीत की आधारशिला और दूसरी ओर आधुनिक सामयिक आवश्यकताओं और चुनौतियों के संतुलित समाधान का मिश्रण दिखाई देता है। महात्मा गांधी सत्य और सत्ता के मध्य एक सर्वशक्तिशाली सेतु के रूप में स्थापित हुए। बापू ने पलायनवाद का समर्थन नहीं किया। उन्होंने समस्याओं से संघर्ष करते हुए समाधान तक पहुंचने की बात कही। बापू ऐसे भारत के लिए कार्य करना चाहते थे जहां कोई भेदभाव नहीं हो और हर देशवासी गौरवपूर्ण जीवन जीते हुए यह अनुभव करे कि यह उसका अपना देश है, जहां सभी जाति के लोग पूर्ण सहयोग और अपनेपन से हमेशा साथ साथ रहेंगे। कोई किसी के हितों का हनन नहीं करेगा और न ही किसी को हताहत करेगा। गांधी जी स्वतंत्रता, स्वदेशी, स्वभाषा के उन्नायक समर्थक थे। उन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन को असहयोग, अहिंसा व सत्याग्रह जैसे कई कार्यक्रम देकर राजनीति के मंच पर एक अनूठी पहल की थी। यह पहल राजनीतिक विश्व पटल पर कई बार प्रासंगिक रही। गांधी जी मानते थे कि व्यक्ति ही समाज का केंद्र है। बापू के अनुसार राज्य एवं सरकार की शक्ति व्यक्ति ही है, अतः व्यक्ति को स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार होना चाहिए। लेकिन साथ ही व्यक्ति को यह स्मरण रहे कि मनुष्य सार रूप में सामाजिक प्राणी है, इसलिए व्यक्ति को समाजवाद और समाज के विश्वास की आवश्यकताओं को भी न्यायपूर्वक अभिनियोजित करना होगा। गांधी जी ने समाज व राष्ट्र का निर्माण करने के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम बनाए थे, जैसे सांप्रदायिक एकता, अछूतोद्धार, स्वदेशी को अपनाना, खादी, ग्राम सफाई, ग्रामीण कुटीर उद्योग, नई शिक्षा, नारी उद्धार, मद्यपान निषेध, साक्षरता, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम, आदिवासियों की सेवा आदि। आदिवासी संस्कृति के कई पहलू भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं, जैसे तनाव मुक्त स्वभाव, सादगी पूर्ण जीवन शैली, आनंदित सद्भाव, लोकगीत, नृत्य आदि। ये सभी पहलू भारतीय संस्कृति को और समृद्धि प्रदान करा सकते हैं और कराते भी हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास से भारत वापस आने के पश्चात बापू ने भारतीय अर्थव्यवस्था को समझते हुए अर्थव्यवस्था संबंधित विचारों को आर्थिक संरक्षण का केंद्र बनाया और स्वदेशी का बिगुल बजा दिया और कहा कि जीवित तंत्र अर्थात देशवासी के विरुद्ध मशीनी जड़ यंत्रों की प्रतिद्वंद्वता नहीं होनी चाहिए। हालांकि चरखा भी एक यंत्र है, लेकिन बापू ने इसे मैत्रेयी भाव से अपनाया और चरखे को राष्ट्र के दूसरे फेफड़े की संज्ञा दी। बापू सिलाई मशीन को भी इस मैत्रेयी भाव की श्रेणी में रखते थे।
हमारा कुटीर उद्योग एवं

हस्तशिल्प आज भी लोकप्रिय है। इसका प्रचार प्रसार देश की आर्थिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभा सकता है। ग्रामोद्योग से देश के पैसे का देश में चक्रण एक आर्थिक धुरी का निर्माण कर सकता है। गांधी जी नई शिक्षा के पक्षधर थे और वे मानते थे कि विद्यार्थी भारत के भविष्य की आशा है। बापू का ऐसा मानना था कि यदि देश का समाज हितार्थ जब जब कुछ अन्य कार्यक्रमों की और आवश्यकता होगी तो उन्हें भी अपनाया जाना होगा। बापू द्वारा बताए गए सभी कार्यक्रम तात्कालिक आवश्यकता से उत्प्रोत थे और ये आज भी समाज सुधार के लिए प्रासंगिक हैं। बापू का चिंतन संत महात्माओं की आध्यात्मिकता, नैतिकता, सर्वधार्मिकता एवं राजनीतिक सिद्धांतों का असाधारण मिश्रण था। आज का युग सोच एवं मानव मूल्यों की दृष्टि से परिवर्तनकारी रूपांतरकारी दौर में प्रवास कर रहा है, जहां अविश्वास, अपराध, अशांति, अनास्था और हिंसा का वातावरण है। ऐसे में मानव मूल्यों का विकृत स्वरूप कई प्रकार से समाज को आहत करता है और ऐसे में गांधी जी की आध्यात्मिक एवं सम्यक चेतना के स्पंदन ही मानवीय चिंतन को स्पंदित कर सकते हैं और धर्मधारित मूल्य आत्मानुशासित होकर सामूहिक चेतना के बल पर जन कल्याण कर सकते हैं।

0: हूँ मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूँ ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में। विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका

और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

इसी के साथ आज का हम ही रही प्यार के कार्यक्रम अब खत्म होता है। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के

आपके साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाली ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मिथ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार हैं। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजयघाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं।

0: मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूँ ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। इसके उपरांत श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। देश भर की 2,55,000 से अधिक ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएं तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं। इन ग्राम सभाओं में आम नागरिक और स्थानीय प्रतिनिधि एक साथ बैठकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और अपने गांव के विकास की प्राथमिकताओं को तय करेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: गुजरात में इस अवसर पर बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने खादी और पॉली वस्त्र के उत्पादन पर 30% विशेष बाजार प्रोत्साहन की घोषणा की है।
2: यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी के संकल्प को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस प्रोत्साहन सहायता का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को अधिकृत खादी बिक्री केंद्रों पर छूट के रूप में मिलेगा। आगामी त्योहारों के सीजन में स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रमुख शहरों में विशेष खादी प्रदर्शनी सह बिक्री मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाएं आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्य प्रवाह को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। मंत्रालय ने बताया कि ब्यूरो ने सुरक्षा मंजूरी के तरीके को आसान बना दिया है। अब सुरक्षा मंजूरी किसी विशिष्ट वर्ग या प्रक्रिया पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि विमानन संस्थाओं की

0: नौ पहचानेगी श्रेणियों पर लागू होगी। मंत्रालय ने बताया कि ये सुधार इसलिए भी आवश्यक हैं क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अवीब जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार ओमानी सह पायलट को कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मित मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और सेवा के निरंतर संकल्प से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में प्रस्तुत है ऐसा ही एक उदाहरण जिसमें इस सोच को पंबन पुल के जरिए धरातल पर उतारा गया।
2: रामेश्वरम में नया बना पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। इसका उद्घाटन पिछले साल 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
3: द न्यू पंबन ब्रिज टू रामेश्वरम ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन टुगेदर। ए टाउन दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड इज बीइंग कनेक्टेड बाय अ 21st सेंचुरी इंजीनियरिंग वंडर। फॉर मेनी डेकेड्स देयर वॉज ए डिमांड फॉर दिस ब्रिज। विथ योर ब्लेसिंग्स वी गॉट द प्रिविलेज ऑफ कम्प्लीटिंग दिस वर्क। पंबन ब्रिज सपोर्ट्स बोथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ ट्रैवल।
2: पुराना ऐतिहासिक पंबन पुल श्रीलंका के साथ व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए बनाया गया था। 1870 के दशक में शुरू हुए इस पुल का निर्माण लगभग 2 किलोमीटर तक फैला था जिसमें 143 पिलर थे और इसे 1914 में चालू किया गया था। नए पुल के वर्टिकल लिफ्ट में 72.5 मीटर का सेंट्रल स्पैन है जो समुद्र में जहाजों के गुजरने के लिए 17 से 22 मीटर ऊपर उठ सकता है। आकाशवाणी से बातचीत में मदुरै डिवीजन के रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पुल के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए 3000 टन से ज्यादा लोहे का इस्तेमाल किया गया था। IIT मद्रास और बॉम्बे के विशेषज्ञों ने नवंबर 2024 में इसके डिजाइन की जांच की थी। इस पुल से अरब सागर का शानदार नजारा भी दिखता है। खाड़ी के ऊपर बना यह सबसे लंबा पुल 1988 तक रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग था। पुराना पंबन पुल उन बड़े चक्रवातों से भी बच गया था जिन्होंने धनुषकोडी को नष्ट कर दिया था। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री चौहान पोंडा में एक कार्यक्रम में किसानों और आम नागरिकों से संवाद करेंगे।
4: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा में गोवा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत करेंगे। इस पहल के तहत गोवा में उत्पादित कृषि उपज की ब्रांडिंग और पैकेजिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने गोवा के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें पहचान दिलाने के उद्देश्य से गोवा फ्रेश ब्रांड विकसित किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य भर के किसानों और महिलाओं को केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। इस दौरान कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, किसानों के कल्याण, ग्रामीण आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे और वहां समीक्षा बैठक करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास से पूरा किया जाना चाहिए। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गोबर धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही।
5: सरकार ने योजना ऐसी बनाई है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक नया इकोसिस्टम बनाए।

0: जिसके द्वारा जो सीबीजी प्लांट लगाना चाहते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सहायता मिलेगी 2 करोड़ की। क्रेडिट गारंटी भी है एमएसएमई के लिए, और अगर आप महिला एंटरप्राइज है आपका तो उसकी 20 करोड़ की जगह 25 करोड़ की गारंटी होगी।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से युद्ध समाप्त करने का मुद्दा उठाते हैं। श्री पुतिन ने कहा कि भले ही भारत का रुख इस मामले में तटस्थ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के जरिए शीघ्र शांति स्थापित करने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोत की भारतीय टीम में विश्व चैंपियन और 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया पर रोमांचक जीत दर्ज की। ये भारत का एशियाई खेलों में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक है। इस पदक के साथ ही भारत अब तक 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 67 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगले वर्ष होने वाले क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा। प्रतियोगिता में 14 टीमों के कुल 57 मैच खेले जाएंगे। भारत का पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
2: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई के विमान में भारतीय पायलट स्मित मच्छार के अदम्य साहस की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने शौर्य गाथा शीर्षक से दिया है कॉकपिट में जानलेवा हमले के बावजूद नहीं टूटा हौसला, भारतीय पायलट स्मित मच्छार की सर्वत्र सराहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले 9/11 जैसी साजिश नाकाम की। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है भारतीय पायलट स्मित को पूरी दुनिया ने किया सलाम, जनसत्ता के अनुसार फ्लाई दुबई विमान गिराने के प्रयास की जांच शुरू। दैनिक जागरण का शीर्षक है परीक्षा तंत्र में बदलाव जरूरी, यूपीएससी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, सुभाष चंद्र बोस ने संस्कृत में दी थी सिविल सेवा परीक्षा। अमर उजाला के अनुसार मोदी ने कहा अब सरकार माई बाप नहीं, नागरिक देवो भव। पंजाब केसरी ने वित्त मंत्रालय का बयान दिया है वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत बनी भारतीय अर्थव्यवस्था, दूसरी तिमाही में 7.3% वृद्धि का अनुमान, जीएसटी संग्रह 2,03,000 करोड़ रुपए के पार, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 7 माह के उच्च स्तर पर। लोकसत्ता की सुर्खी है महानदी विवाद पर दिल्ली में बड़ा मंथन, समाधान की राह में बनी सहमति, गृह मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक। राजस्थान पत्रिका ने तरंग शक्ति 2026 शीर्षक से दिया है तेजस संग उड़ान, फ्रांसीसी मेजर जनरल बोले याद आया मिराज 2000। जोधपुर एयरबेस में भारत और फ्रांस के एयरक्रू ने साझा किए ऑपरेशनल अनुभव, रफाल की हवा में ईंधन भरने की प्रक्रिया भी देखी। एशियाई खेलों पर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है ग्रीको रोमन कुश्ती में 64 साल बाद रजत पदक, कभी दूध बेचते थे पानीपत के सिवाच, आज चांदी से चमके। सेलिंग में प्रिंस और मनु ने जीता रजत, बाढ़ में पिता को खोया, अब पानी पर ही रचा इतिहास। पत्र के अनुसार हॉकी में पाकिस्तान को हराकर भारत की नजरें गोल्ड पर, क्रिकेट में पाक से होगा फाइनल मुकाबला।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन, नागर विमानन मंत्रालय ने सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की, सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा, बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती, भारत की स्मित के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार, और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8:15 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ दिल से।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल पर आपका अपना कार्यक्रम कुछ दिल से। मैं हूं आपकी दोस्त रेडियो होस्ट हीना जैन, स्वागत करती हूं आप सभी का इस कार्यक्रम में। दोस्तों, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने समय से बहुत आगे चलते हैं। वे चले जाते हैं लेकिन उनके विचार पीढ़ियों तक हमारे साथ चलते रहते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, स्वराज और सत्याग्रह को अपने जीवन और सार्वजनिक संघर्ष का आधार बनाया। आज पूरा देश उनकी जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या गांधी जी को याद करना सिर्फ उनकी तस्वीर पर माला चढ़ाना है या फिर उनके किसी एक विचार को अपने जीवन में उतारना भी है? क्योंकि गांधी जी की सबसे बड़ी सीख शायद यही थी कि बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं, खुद से होती है। तो आइए आज गांधी जयंती के अवसर पर बात करते हैं उस इंसान की जिसने दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि बिना हिंसा के भी अन्याय का सामना किया जा सकता है। आज बात करते हैं सत्य की, अहिंसा की, सादगी की और इंसानियत की। आज हम बात करेंगे कुछ दिल से में हमारे प्यारे बापू की। सबसे पहले सुनते हैं देशभक्ति और उम्मीद से भरा ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, गांधी जी को हमने तस्वीर में देखा है, गोल चश्मा, हाथ में लाठी, सफेद धोती और चेहरे पर शांति। लेकिन गांधी जी की असली पहचान उनके पहनावे में नहीं थी, उनकी असली पहचान थी उनके विचारों में। उन्होंने सत्य को सिर्फ बोलने की चीज नहीं माना, बल्कि अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। उन्होंने अहिंसा को सिर्फ हिंसा का अभाव नहीं, बल्कि संघर्ष का एक नैतिक मार्ग माना। उनका सत्याग्रह अन्याय के सामने झुकने के बजाय सत्य और अहिंसा के सहारे प्रतिरोध की भावना से जुड़ा था, और शायद यही कारण है कि गांधी जी की सोच भारत की सीमाओं से बाहर भी पहुंची। जिसने सत्य को अपना हथियार बनाया, जिसने अहिंसा से संसार को समझाया, वो शरीर से भले चला गया, लेकिन विचारों में आज भी नजर आया। व्यक्ति चला जाता है, विचार जीवित रहते हैं।

दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि सच बोलना चाहिए, लेकिन सच बोलना हर परिस्थिति में आसान नहीं होता। कभी सच बोलने से हमारा नुकसान हो सकता है, कभी किसी को बुरा लग सकता है, कभी हमें अकेला भी खड़ा होना पड़ सकता है। लेकिन गांधी जी का जीवन हमें यह सोचने का अवसर देता है कि सत्य केवल शब्द नहीं, एक जीवन पद्धति भी हो सकता है। सच बोलना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपने भीतर भी ईमानदार होना, खुद से पूछना, क्या मैं वही हूं जो दुनिया को दिखाई देता हूं? क्या मेरे शब्द और मेरे कर्म एक जैसे हैं? क्योंकि सच्चाई की शुरुआत दुनिया से नहीं, अपने आप से होती है। सच की राह थोड़ी कठिन सही, लेकिन मन को सुकून देती है। झूठ पल भर की राह दे सकता है, सच्चाई जिंदगी भर की नींद देती है। सच बोलना साहस है और सच जीना चरित्र। आइए दोस्तों, सुनते हैं एक और मधुर संगीत।

दोस्तों, गांधी जी का जीवन सादगी से भी जुड़ा हुआ था। उन्होंने चरखे और खादी को स्वावलंबन और श्रम की गरिमा के प्रतीक के रूप में महत्व दिया। आज हमारी जिंदगी बहुत तेज हो गई है। हमारे पास चीजें ज्यादा है लेकिन समय कम है, सुविधाएं ज्यादा है लेकिन संतोष शायद कम। ऐसे समय में गांधी जी की सादगी हमें याद दिलाती है, हर चीज पाने की जरूरत नहीं, कुछ चीजों की कद्र करना भी जरूरी है। और श्रम चाहे हाथ से किया जाए या दिमाग से, हर ईमानदार काम सम्मान के योग्य है। सादगी में भी एक शान होती है, मेहनत में ही असली पहचान होती है। जो अपने कर्म को सम्मान देता है उसकी जिंदगी खुद एक मिसाल होती है।

दोस्तों, अहिंसा इस शब्द को हम बहुत आसानी से बोल देते हैं, लेकिन अहिंसा का अर्थ सिर्फ किसी को चोट न पहुंचाना ही नहीं है। कभी हमारे शब्द भी चोट पहुंचाते हैं, कभी हमारा गुस्सा किसी का मन तोड़ देता है, कभी हमारी कठोरता किसी को अंदर तक दुखी कर देती है। इसलिए अहिंसा की शुरुआत हमारी भाषा से भी हो सकती है। किसी से असहमति हो तो अपमान क्यों, गुस्सा आए तो कटु शब्द क्यों, किसी ने गलती की हो तो उसे सुधारने का अवसर क्यों न दे। गांधी जी की अहिंसा का संदेश आज की दुनिया में भी शांति, सहअस्तित्व और संवाद की याद दिलाता है। 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया जाना इसी वैश्विक महत्व को दर्शाता है। हाथों से नहीं, शब्दों से भी वार होता है। कभी चुप रहना भी एक बहुत बड़ा उपकार होता है। जितना है जीतना है अगर दिल किसी का, तो प्रेम से बढ़कर कहां कोई हथियार होता है। अहिंसा की शुरुआत दुनिया बदलने से नहीं, अपना व्यवहार बदलने से होती है। यही संदेश गांधी जी अपने अहिंसा में कहते हैं। आइए दोस्तों, सुनते हैं एक और मधुर सा गीत।

जीवन को देखने का एक अवसर देता है। क्या हम थोड़ा और सच्चे हो सकते हैं, थोड़ा और शांत, थोड़ा और संवेदनशील, थोड़ा और सरल और थोड़ा और ज्यादा इंसान। शायद यही गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आइए आज कोई बहुत बड़ा संकल्प भले ही ना ले, बस एक छोटा सा संकल्प जरूर ले। अपने शब्दों में सत्य, अपने व्यवहार में अहिंसा, अपने कर्मों में ईमानदारी और अपने मन में इंसानियत रखेंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत दुनिया से नहीं, हम से होती है। इसी खूबसूरत विचार के साथ मैं हिना जैन अब लेती हूँ आप सभी से इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे नए दिन नई बातों के साथ। तब तक सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल पर आपका अपना कार्यक्रम कुछ दिल से।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिल से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

0: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है।
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
5: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा।

समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर आज देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली के राजघाट और शास्त्री की समाधि विजय घाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं हो रही हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी संघर्षों के बीच गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से अधिक प्रासंगिक है। राष्ट्रपति ने नागरिकों से सर्वोदय के आदर्शों के अनुरूप विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। इधर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर में सचिवालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री गांधी सर्किल पहुंचे, जहां पर उन्होंने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भरतपुर में गांधी जयंती के अवसर पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अजमेर और ब्यावर में संगोष्ठी और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बाड़मेर में इस मौके पर गांधी जी के प्रिय भजनों की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सवाईमाधोपुर में गुलाब बाग स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि इन विशेष ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान 2026-27 सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के तहत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। इधर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आज विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं में नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधिकारी ग्रामीणों को नए कानूनों के तहत मिलने वाले अधिकारों, पारदर्शी प्रक्रियाओं और सुरक्षा से जुड़े बदलावों के बारे में बतलाएंगे। इससे पुलिस और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास पर जोर देकर उपलब्धता और संधारणीयता के माध्यम से पूरी की जानी चाहिए। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गोवर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य पशुओं के गोबर, कृषि अवशेष पराली और अन्य जैविक अपशिष्टों को संपीड़ित बायोगैस तथा जैविक खाद में बदलना है। श्री पुरी ने कहा कि संपीड़ित बायोगैस भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि ये जैविक संसाधनों को स्वच्छ घरेलू ऊर्जा में परिवर्तित करने के साथ ही जैविक खाद के उत्पादन और ग्रामीण क्षेत्रों में नए आर्थिक अवसर पैदा कर सकती है।
1: सरकार ने योजना ऐसी बनाई है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक नया इकोसिस्टम बना, जिसके द्वारा जो सीबीजी प्लांट लगाना चाहते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सहायता मिलेगी। 2 करोड़ की क्रेडिट गारंटी भी है एमएसएमई के लिए, और अगर आप महिला एंटरप्राइज है आपका तो उसकी

0: 20 करोड़ की जगह 25 करोड़ की गारंटी होगी।
1: केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता एक वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सभी पीढ़ियों की सहभागिता से ही मजबूत और संवेदनशील समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि युवाओं के पास नई ऊर्जा और विचार है तो वरिष्ठ पीढ़ी के पास अनुभव और जीवन की गहरी समझ है। उन्होंने कहा कि युवा ऊर्जा और वरिष्ठ जनों का अनुभव साथ चलें तो समाज की प्रगति और राष्ट्र की शक्ति तथा अधिक मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने कल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वृद्धजनों से संवाद के दौरान ये बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन के 50,94,831 लाभार्थियों को कुल 684 करोड़ रुपए से अधिक की राशि DBT के जरिए हस्तांतरित की। राज्य में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजना के तहत पोर्टल अपडेट करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। पहले ये 30 सितंबर निर्धारित की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक ललित कुमार ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन और अन्य जानकारी अपडेट करने के लिए अब 1 महीने का समय और मिल सकेगा। राजधानी जयपुर में आज से आपनों जयपुर हरित संगम अभियान के तहत एक पेड़ पूर्वजों के नाम कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसका शुभारंभ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जवाहर सर्किल से करेंगी। अभियान में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, संस्कार, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी को रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर रहेगा। अभियान के तहत पूर्वजों की स्मृति में पौधारोपण किया जाएगा। इस अवसर पर सांसद मंजू शर्मा और महापौर सुनील कोठारी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश में मौसम में बदलाव लगातार जारी है। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के साथ ही राज्य के अधिकांश जिलों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं रात के तापमान में हल्की गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। पहले और दूसरे सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में सामान्य से कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। उदयपुर में आज से सांसद स्वदेशी इंडस्ट्रियल एक्सपो की शुरुआत होगी। RCA मैदान में शुरू होने जा रहे इस एक्सपो का उद्घाटन जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी करेंगे। इस कार्यक्रम में युवाओं को समाज और नवाचार से जोड़ने के लिए रोजाना विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक्सपो में कल सड़क सुरक्षा और नागरिक जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत युवाओं को यातायात नियमों और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में सांसद डॉ. मन्नालाल रावत और शहर विधायक ताराचंद जैन भी मौजूद रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज देशभर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आज देशभर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन, ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 684 करोड़ रुपए से अधिक पेंशन राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की। और प्रदेश के मौसम में बदलाव जारी, दिन के तापमान में बढ़ोतरी, रात का पारा गिरा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे।

भी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9:10 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हरिहरन की आवाज में गाई कुछ गजलें।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: को विमलेश का नमस्कार और गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: और अजीत का भी नमस्कार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं आते। जब समय आता है तो समझ नहीं होती और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। इसलिए मनुष्य को सद्विवेक से अपना जीवन जीना चाहिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोग पूरा परिवार एक साथ सुनते हैं। ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी हमें सुनने को मिला है। प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई।
1: अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंत तीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
0: जय जोहार बंदगी उमंग टीम को। विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 25 अगस्त को सरितपुर की कहानी सुनाया, हमें बहुत प्रेरणादायक लगा। प्रकृति की रक्षा करने की सीख मिली। विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 28 अगस्त को भी हमने कार्यक्रम सुना, भारत की सबसे पहले महिला पायलट सरला ठकराल जी के बारे में रियल स्टोरी, हमें बहुत प्रेरणादायक लगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी का।
0: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
1: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदारे जी का।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
1: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: उमंग कार्यक्रम का हर अंक एक से बढ़कर एक होता है, ये कार्यक्रम हम जरूर सुनते हैं। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम हिमालय कैसे बना, अवसर को पहचानिए और उड़न परी पीटी उषा, ये सभी कार्यक्रम सुने बेहद पसंद आए। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल, अरावली पर्वत की कहानी, सुखो मांझरी गांव की कहानी और अन्य कार्यक्रम सुने वो भी पसंद आए। ये सभी कार्यक्रम शिक्षाप्रद और जानकारी से भरपूर लगे, आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज 2 अक्टूबर है यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस। उमंग कार्यक्रम की ओर से उन्हें शत शत नमन। आइए करते हैं शुरुआत उनके जीवन में घटित एक महत्वपूर्ण घटना से जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया।
0: लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या कभी किसी के साथ हुआ अपमान उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है?
1: श्रोताओ, होता तो ये है कि अपमान तो अक्सर इंसान को तोड़ देता है
0: जी,
1: तो कोई भला उससे ताकत कैसे पा सकता है?
0: यही तो आज की कहानी है जो हम आपके लिए गांधी जयंती के अवसर पर खास तौर से लेकर आए हैं। दिन था 31 मई 1893 और स्थान था दक्षिण अफ्रीका का पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन।
1: एक युवा भारतीय वकील ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था, वे अपने स्थान पर बैठे थे और यात्रा कर रहे थे।
0: स्टेशन पर बहुत से यात्री ट्रेन में चढ़े, उनमें एक श्वेत यात्री भी था। उस श्वेत यात्री को एक अश्वेत व्यक्ति को प्रथम क्लास में बैठे देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने आपत्ति की कि एक भारतीय प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कैसे बैठ सकता है।
1: गांधी जी ने अपना टिकट दिखाया, उनके पास पूरा अधिकार था कि वे प्रथम श्रेणी में यात्रा करें।
0: लेकिन टिकट देखने के बावजूद उन्हें डिब्बा छोड़ने के लिए कहा गया। शोर बढ़ता जा रहा था और बहुत से श्वेत यात्री गांधी जी के वहां रहने के कारण आपत्ति जता रहे थे।
1: लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अडिग रहे, उन्होंने अपना अधिकार छोड़ने से विनम्रता पूर्वक साफ इनकार कर दिया
0: जी।
1: उन्हें बलपूर्वक ट्रेन से नीचे उतार दिया गया और बाहर थी कड़ाके की ठंड वाली रात।
0: गांधी जी का सामान भी उनके साथ बाहर था, वे स्टेशन पर अकेले बैठे रहे। जरा सोचिए श्रोता मित्रों, उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा।
1: हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं, एक युवा वकील जिसके पास वैध टिकट था, फिर भी केवल नस्लीय भेदभाव के कारण उसे ट्रेन से उतार दिया गया था। वह रात उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक रही होगी।
0: उस रात उन्होंने अपने जीवन की भावी दिशा पर विचार किया। उस रात गांधी जी के भीतर कोई नया संकल्प जन्म ले रहा था, जिसे आज हम सत्य और अहिंसा के रूप में जानते हैं। इसी संकल्प का स्वरूप था सत्याग्रह।
1: सचमुच कितनी अद्भुत बात, एक रेलवे स्टेशन, एक ठंडी रात, एक अपमान और उसी से एक महान संकल्प का पैदा होना।

0: तो अजीत जी, गांधी जयंती के अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए आज की सीख क्या है?
1: विमलेश जी, मुझे लगता है सीख बहुत सरल है। और सीख ये है कि जब परिस्थितियां आपको गिराएं तो वहीं पड़े मत रहिए।
0: जी,
1: उठिए, सोचिए और अपने दुख को एक अच्छे संकल्प में बदल दीजिए।
0: दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि किसी के गलत व्यवहार का जवाब हम अपने गलत व्यवहार से न दें।
1: बिल्कुल, यही तो इस घटना की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
0: तो श्रोताओ, 31 मई 1893 की वो रात गांधी जी के लिए केवल एक कठिन रात ही नहीं थी,
1: लेकिन वो रात उनके जीवन की दिशा को बदलने वाली रात भी थी।
0: जी हाँ, कभी कभी जीवन की सबसे अंधेरी रात ही हमारे भीतर की एक नई सुबह को जन्म देती है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है यादें बापू गांधी की।
0: इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंगों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है और उनके जीवन के दर्शन की भी सरल वाक्यों के द्वारा जानकारी दी गई है।

0: शहर को ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखे कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का देखने का सोने का सब साफ, गलियां साफ, और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ।
1: आइए सुने उस्ताद अमजद अली खां को।

तो यानी ये एक आत्मा है शब्दों की। हाँ बच्चों, ये आपने सुना, इसको कहा जाता है रामधुन। तो हमारे जो राष्ट्रपिता थे, कौन थे? महात्मा गांधी जी। तो उनके साथ इसका बड़ा भारी एसोसिएशन है और उनको बहुत पसंद था ये। मेरे ख्याल से सबसे मशहूर गाना या भजन या सॉन्ग, इससे मशहूर कोई चीज नहीं हिंदुस्तान में। अब ये इंटरनेशनल ख्याति इसको प्राप्त हो चुकी है कि अब जो

हमारे बाहर के बीट ग्रुप जो भी हैं, पॉप सिंगर्स जो भी हैं, वो भी इसको गाते हैं, लेकिन उनका प्रोनंसिएशन बदल जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो नकल करते हैं। रामधुन महात्मा गांधी जी को बहुत पसंद था ये, और ये आप सबको पता होना चाहिए।

यादें बापू गांधी की। अब प्रस्तुत है एक झलक हामिदुल्ला अफसर के जीवन के कुछ यादगार पलों की, वो पल जो उन्होंने गांधी जी के साथ बिताए।

0: सन 1921 का जिक्र है। मैं LLB का तालिब इल्म था। गांधी जी मेरठ में तशरीफ लाए। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था। आखिर मेरी आरजू बराई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल गया।
1: नमस्ते बापू।
2: नमस्ते
3: गांधी। नमस्ते।
4: नमस्ते।
5: हमारी खुशनसीबी आप मेरठ आए।
0: बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया,
6: ये अचकन देशी क्यों नहीं पहनते?
0: मैंने अर्ज किया, 3-4 देसी चीजें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ, क्या ये काफी नहीं? गांधी जी ने बड़े जोर से कहकह लगाया और फरमाया,
6: अच्छा अच्छा, तब तो आपके लिए देशी कपड़ा पहनना और भी आसान है, एक ही देशी चीज का तो इजाफा होगा।
0: उसके बाद मुतअद्दिद बार कई कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीजों में अपनी उसी 5वीं चीज का ख्याल आ जाता। ।1945 का जमाना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिड़ला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उसी साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघिए और पेवंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गत्ता। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीजों पर गौर करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनसे उसका किराया ना लिया जाए। शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपए के वादे भी हो गए थे। एक दिन ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
6: देखो हामिद, जब ये इमारत बन जाएगी तब इन बेचारे गरीब पहाड़ी मजदूरों के यहाँ ठहरने की जगह तो हो ही जाएगी।
5: जी बापू।
6: देखो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनसे किराया न लिया जाए।
1: जी बापू, हम ध्यान रखेंगे।
6: अच्छा, अब सोचो इस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
7: कुछ खास होना चाहिए।
5: मजदूर रहेंगे उसमें,
1: मेहनत करने वाले।
7: बापू, धर्म का काम है ये तो।
5: भाई क्यों ना इसका नाम धर्मशाला रखा जाए।
6: धर्मशाला, हाँ ठीक है, धर्मशाला।
0: आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। मैंने अर्ज किया, अब उस इमारत का नाम

0: आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते? एक और साहब वहां बैठे हुए थे, बोले,
1: भाई गरीब खाना तो अपने घर को ही कहते हैं।
0: मैंने कहा, जी हाँ कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकिसारी की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फर्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के मानी गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं।
2: बहुत खूब, मुझे तो ये नाम पसंद आया।
1: हाँ, तो ये नाम ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है। हाँ, बिल्कुल।
0: गांधी जी को ये नाम पसंद आया। एक दफा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। ये बीए पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोजाना झाड़ू दिया करें।

0: गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आश्रम में नेक चलने और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उंस था और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साल लड़की उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी।
1: ये लो, अरे लो,
2: मुझे भी लीमू दो ना,
1: ये लो
2: चाहिए।
0: वो उस लड़की के साथ खेलने लगा।
1: ये लो।
0: खेलते खेलते उसे थका दिया, लेकिन लीमू नहीं दिया। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल में ये लीमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था। उस लड़की को कैसे दे दिया जाता। जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करे। आखिर उसे एक तरकीब सूझी।
1: ये मैंने फेंका नदी में और लीमू गया साबरमती में।
2: गया?
1: हाँ, वो गया। अरे रो मत।
2: मैं लीमू को नदी से निकाल ला।
1: अरे नहीं, नहीं।
2: वो किनारे पर ही तो होगा ना।
1: अरे नहीं बेटा, लीमू नदी में डूब गया है, अब तुम उसे निकाल नहीं पाओगी।
2: गया?
1: हाँ, गया लीमू।
0: मगर असल में ऐसा नहीं था। उस नौजवान ने लीमू को अपनी जेब में रख लिया था। बात आई गई हुई। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए,
1: मेरा रुमाल किस जेब में है?
0: उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ लीमू भी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा।
2: अरे लीमू, ये लीमू तो आपके पास ही है।
1: अरे वो
2: आश्रम में रहकर झूठ बोला आपने।
1: अरे
2: मैं ये बात पापू को जरूर बताऊंगी।
1: अरे नहीं
2: पापू।
1: नहीं बेटा, मेरी बात
2: नहीं,
1: तो सुन।
2: नहीं पापू।
1: नहीं, अरे सुन तो, पापू से मत बोल। अरे
2: पापू।
1: नहीं नहीं, अरे
2: पापू।
1: अरे, अरे सुन मेरी, अरे सुन तो।
0: ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया,
2: उन्होंने झूठ बोला, आश्रम में रहकर झूठ बोला।
3: हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और उन्होंने क्यों झूठ बोला।
2: ठीक है बापू।
0: शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा,
3: अच्छा बताओ क्या बात थी?
1: बापू ये सब बस एक मजाक था।
3: देखो आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ न बोलो।
1: जी बापू, मैं समझ गया, मैं ख्याल रखूंगा।

कोई आँखों से तो सुनता नहीं है, आँखों से देखता है, कानों से सुनता है। इसलिए आँखों को तो सचमुच बंद करना चाहिए और कानों को खुले रखना चाहिए, अदब रखकर बैठ जाना चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा सुंदर लगता है कि आदमी का जी चाहता है कि जो अपने दिलों की बात है वो सुनाए।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम यादें बापू गांधी की, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका स्थित आश्रम के बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि गांधी जी की दिनचर्या कैसी थी और आश्रम वासियों के साथ उनका कैसा सद्भाव था।
0: साथियों नमस्कार, हम सब गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी को बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा भी जाता है। कोई उन्हें बापू कहता है, तो कोई महात्मा, तो कोई राष्ट्रपिता। गांधी जी ने देश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो उनके दो आश्रम थे, फीनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म, और जब वे भारत आए तो उनका आश्रम बना साबरमती। और हाँ, आपको एक बड़ी दिलचस्प जानकारी भी दे दें, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी के फीनिक्स आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है और आज गांधी जी का आश्रम टॉल्स्टॉय फार्म भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित गांधी स्थलों में से एक है। तो आइए चलते हैं गांधी जी के आश्रम में, और सबसे पहले चलते हैं आश्रम के रसोई घर में।
2: अरे बापू जी के आने का संग्राम करने वाले हैं। हाँ हाँ, टमाटर काट लो। हाँ हाँ, और मैं ये मिर्ची काट लूँ।
3: अरे जल्दी जल्दी सब्जी काटो चंपा, आश्रम में भोजन का समय हो रहा है।
2: अरे जल्दी जल्दी में मैं तो एक बात भूल ही गई।
3: क्या?
2: वो सब्जी मैंने बगैर धोए ही काट दी।
3: अरे चंपा, बापूजी को अगर पता चला कि तुमने बिना धोए सब्जी और फल काट लिए तो फिर बहुत डांट पड़ेगी।
2: ठीक कह रहे हो। अरे हरिया, वो देखो छत पर मकड़ी का जाला भी लगा है। बापूजी के आने का समय हो रहा है और यहाँ पर सफाई भी अभी करनी बाकी है। इससे पहले कि वो आए हम जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं।
3: ठीक है चंपा, ठीक।
4: बापूजी के आने का समय हो रहा है।
3: मुझे आलू दे दो, मैं जल्दी काट लेता हूँ।
2: अरे ठीक है, मैं ये बाकी जो सब्जियां इनको धो लेती हूँ। प्रणाम बापू।
3: नमस्कार बापू।
4: प्रणाम बापू।
5: प्रणाम प्रणाम। ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
3: बाबू जी वो सब्जी काट रहे थे हम लोग।
2: बापू सब्जियां काट रहे थे।
5: अभी अभी मुझे पता चला कि तुमने सब्जियां बिना धोए ही काट दी हैं।
2: वो बापू थोड़ी जल्दी थी और भोजन का भी समय हो रहा है, इसलिए बगैर धोए ही, क्षमा कीजिए।
5: देखो चंपा, ध्यान रखना, सब्जी और फलों को कभी भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए और न ही पकाना चाहिए। आगे से ध्यान रखना, समझ गई तुम?
2: जी बापू।
5: अच्छा जाओ।
2: जी।
5: अब तुम लोग जाकर अपना अपना काम करो।
3: जी।
2: चलो चलते हैं।
3: जी।
0: तो साथियों, अभी हम थे आश्रम के रसोई घर में। आइए अब सुनते हैं गांधी जी के आश्रम की एक और घटना के बारे में। हुआ यूं कि एक बार आश्रम में ही रहने वाली एक बीमार स्त्री को कुछ केले दिए गए। उसने जब केलों को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उन केलों पर काले काले चकत्ते पड़े हुए थे, तो उस स्त्री ने इसकी शिकायत बापू से की।
4: बापू बापू ये देखिए।
5: अरे हाँ बिमला, आओ कहो कैसे आना हुआ?
4: बापू केलों पर कितने काले काले चकत्ते पड़े हुए हैं। दूसरों को तो ऐसे केले नहीं दिए, ये पक्षपात नहीं तो और क्या है?
5: देखो बिमला, ये जो केलों पर

0: चकते काले चकते देख रही हो ना
1: जी,
0: इसका मतलब ये है कि ये केले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तुम्हें पेट की समस्या है ना?
1: हाँ।
0: है ना? हाँ, मैंने ही उन्हें कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से पके हुए केले दें। सोनू ने ऐसे दे दिए। उन्होंने तुमसे कोई पक्षपात नहीं किया विमला।
1: जी बापू।
0: हाँ, समझ गई ना?
1: जी।
0: जाओ, अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी।
1: जी बापू, धन्यवाद।
2: साथियों, यह सुनकर विमला बहुत लज्जित हुई और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ।

0: काटते थे और बर्तन धोने का भी काम किया करते थे। एक दिन की बात है,
1: अरे बापू ये बर्तन तो धुल गया है।
2: अरे सुधीर नहीं, अभी ठीक से कहाँ धुला है, अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है।
1: हाँ?
2: अभी तो इसे और चमकाना है।
1: ओ
2: देखो इसे और चमकाना है। ये लो अब देखो, अब ये अच्छी तरह साफ हो गया है और
1: चमकने भी लगा।
2: हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ध्यान रखो जिस भोजन को हम खाते हैं उसे हमेशा साफ बर्तनों में ही खाना चाहिए, समझे सुधीर?
1: हाँ जी बापूजी।
2: हाँ शाबाश।
0: तो साथियों हमने आज गांधी जी के आश्रम में जाकर क्या सीखा? तो हमने सीखा कि अपना काम स्वयं करें और किसी दूसरे से न तो उम्मीद रखें और न दूसरे से वह काम करवाएं। और हम सबको अपनी व्यक्तिगत और आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों यदि आप गांधी जी के जीवन से संबंधित कोई भी किस्सा जानते हैं तो अपने मित्रों से अवश्य साझा करें। तो श्रोताओं अभी आपने सुना कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: जगबंधु,
0: चेतना,
3: अर्शद,
0: सौम्या,
3: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयू यादव के साथ
3: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 10 बजने को है। आइए श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आप सुन रहे हैं।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सबसे पहले तो ये टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 0222867 0288, यानी 02-2867-02-88। दूसरा टेलीफोन नंबर है 0224002-4662, यानी 02-2400-2462। ये दोनों बड़े काम के नंबर हैं, क्योंकि इन्हें जब आप सोमवार को दिन में 11 बजे डायल करते हैं तो हम विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से कहते हैं हेलो फरमाइश, और फिर आपसे करते हैं बातें और पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। तो शुरू करते हैं आज के हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सिलसिला ये बताते हुए कि रिकॉर्डिंग सोमवार को होती है दिन में 11 बजे से। आज का पहला कॉल ये रहा। हेलो फरमाइश
1: जी। यूनुस जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ, रामनगर गुना मध्य प्रदेश से।
0: नरेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम इन दिनों में आपको अच्छे लगे हैं?
1: इन दिनों में अच्छे लगे हैं सबसे पहले तो यही है हेलो फरमाइश, और आपने फिर से शुरू किया है सखी सहेली का जो हेलो सहेली कार्यक्रम, वो भी लाजवाब है, पसंद आ रहा है। और जो पत्रों पर आधारित मन चाहे गीत फिर से शुरू हुआ, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम तो विविध भारती में बहुत सारे हैं और ज्ञान और मनोरंजन का खजाना है विविध भारती।
0: विविध भारती अब अपनी यात्रा के 69 बरस पूरे करते हुए 70वें बरस में प्रवेश कर रही है 3 अक्टूबर को। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बस यही कहना चाहता हूँ कि विविध भारती ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और विविध भारती से सीखकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और विविध भारती के जो कार्यक्रम होते हैं वो मनोरंजन तो उनमें होता ही है, लेकिन ज्ञान से भरपूर होते हैं।
0: जी बहुत शुक्रिया। बताएं गुना शहर की क्या स्थिति है, बारिश वारिश खत्म हुई है?
1: इस बार बारिश तो कम हुई है सर, लेकिन हाँ फसल तो अब पककर तैयार हो गई है और कट रही है, कहीं कहीं कटने को भी तैयार है। और मक्का की फसल ज्यादातर होती है, पहले सोयाबीन की फसल होती थी, लेकिन क्या है कि पिछले कुछ सालों से सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा नहीं हो पा रहा है, तो फिर किसान भाई मक्का की फसल लगा रहे।
0: अच्छा, अब बताइए आप कौन सी फरमाइश लेकर आज हाजिर है?
1: जी फरमाइश है मुकेश और लता जी की आवाज में शोर फिल्म का गाना है एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी में।
0: जिंदगी का दर्शन छिपा हुआ है इस गाने में, संतोष आनंद के बोल हैं ये। चलिए बहुत शुभकामनाएं, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार यूनुस जी।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं बीकानेर गंगा शहर से उत्तम सोनी बोल रहा हूँ सर।
0: अरे वाह उत्तम जी, उत्तम हुआ कि आपका कॉल लग गया।
1: जी सर, और पहली बार आपसे बात हो रही है।
0: जी बिल्कुल,
1: मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है सर।
0: जी जी जी, मुझे बताएं कि ये जो गंगा शहर है ये कहाँ है और ये गंगानगर से कितना अलग है?
1: ये गंगानगर तो अलग जिला है सर।
0: अच्छा।
1: और अपना जो गंगा शहर है ना, ये बीकानेर का ही उपनगर है, बीकानेर का ही एरिया है गंगा शहर।
0: अच्छा, क्या बात है। और बीकानेर तो भाई बहुत ही अलबेला शहर है।
1: बिल्कुल सर, हमारे शहर के खाने पीने की चीजें बहुत फेमस हैं।
0: बिल्कुल बाकायदा, और वहाँ की अपनी एक संस्कृति है।
1: बिल्कुल है, पुराना शहर है सर।
0: जी
1: पकौड़ी, खाने पीने की सारी वस्तुएं बहुत ज्यादा फेमस है सर हमारे यहाँ की, नमकीन।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में मशहूर है। अभी इतनी सारी बीकानेर की बातें हो रही थी तो एक कोई लोकगीत नहीं सुनाएंगे तो फिर ये कॉल तो सुना सुना हो जाएगा।
1: जी सर, मेरी आवाज तो वैसे खास नहीं है,
0: फिर भी कोशिश कर लीजिए।
1: बन्ना रे भागा में झूला गालिया।
0: अच्छा बहुत ही मशहूर है ये ना। हाँ बिल्कुल,
1: राजस्थानी सॉन्ग बहुत फेमस है सर यहाँ के।
0: बिल्कुल बहुत ज्यादा, और वहाँ के कई गायक जो हैं वो बड़े मशहूर हुए हैं।
1: बिल्कुल हुए हैं सर।
0: आप मुझे बताएं कि आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप?
1: तोबा कैसे है नादान घुंगरू पायल के।
0: ओहो क्या बात है, बढ़िया गाने की फरमाइश की है आपने। तो चलिए बातों का सिलसिला खत्म करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना बीकानेर में।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, हम नारायण कुमार पटेल बजाज धमकरिया प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, क्या बात है। बताइए, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना हमको जो है हीर राजा का, ये दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं।
0: इतना ज्यादा निराश क्यों हो रहे हैं भाई? ये दुनिया ये महफिल काम की नहीं, आवाज भी थकी हुई लग रही है।
1: मुझे अच्छा लगता है मोहम्मद रफी का गाना सुनने में, अच्छा लगता है, निराश नहीं हो रहे हैं।
0: अरे भैया, हम तो घबरा गए थे कि आप इतना आराम से थके हुए बोल रहे हैं ये दुनिया ये महफिल काम की नहीं। हम तो अभी आपको समझाने वाले थे।
1: नहीं नहीं सर, समझाने वाले नहीं थे, इधर थोड़ा हम अपना गांव तरफ में भी खाली थे।
0: अच्छा,
1: वो आप लगाने लगे तो इस टाइम आप ही से बात हो रही थी, हमने सोचा कि फोन लगाएं आपसे, बहुत बड़ी ख्वाहिश थी बात करने के लिए। हम 1995 से रेडियो सुन रहे हैं, पहले रेडियो सुनते थे, मोबाइल ऐप पे सुनते हैं।
0: अच्छा, ये बताइए, खेत वेत सब जगह चलता है विविध भारती फिर?
1: हाँ सर, एकदम क्लियर, चाहे जहाँ जाओ। इस समय हम धान के खेत में टहल रहे हैं, धान फूट गया है।
0: अच्छा,
1: आंधी तूफान आया जिससे कुछ धान गिर गए हैं, नुकसान हो गया है।
0: जी जी, समझ रहे हैं, मौसम खराब हो गया ना अचानक, इसलिए। अच्छा, हमें बताएं, विविध भारती इतने ध्यान से इतने सालों से आप सुनते रहे, तो वक्त के साथ जो बदलाव आए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है?
1: जी, बहुत बढ़िया बदलाव आया, क्योंकि हम उस जमाना जानते हैं जब रेडियो शॉर्ट वेव ज्यादा था, कुछ आवाजें क्लियर नहीं आती थी, सतरा की आवाज जो है धीमी हो जाती थी, तेज होती थी। फिर उसके बाद 2:30 बजे तक वो शॉर्ट वेव पे ये प्रसारण बंद रहता था, FM पे चलता था हमारे यहाँ। फिर वो FM जो है दो बैंड के रेडियो होते थे, शॉर्ट वेव मीडियम वेव, उसमें एक प्लेट 100 रुपए एक तब लगती, तब 40 रुपए मजदूरी थी, तो 100 रुपए की प्लेट लगा दिया करते थे, तो वो स्विच रहता था, उसको स्विच ऑन कर दो एरियल लगा रहता था, ऊपर कर दो तो 7 क्लियर FM है हमारे यहाँ प्रयागराज, 14.3 MHz सुनाई दे रहा था। फिर उसके बाद एक बॉक्स आने लगा, उसमें स्पीकर और FM सेट रहता, बिजली बल जो डेली बचता था वो कोई गोमती में दुकान में कमरे में लगाए रखते थे, और पढ़ने वाले बच्चे भी कमरे में लगाए, तो हम रेडियो सुनते थे। फिर उसके बाद धीरे हम कच्चा 2 में थे तब से नहीं सुन रहे हैं, जब से नहीं हमको संभाला है हमने।
0: अलग अलग तरह के कार्यक्रम हमारे आते हैं, तो उनमें से कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपको ज्यादा पसंद रहे हैं?
1: जी, आज के फनकार हो गया, हेलो फरमाइश, उसके बाद जो है हमारे मेहमान, सेहतनामा हो गया है, एक सखी सहेली आता, अब तो मन चाहे गीत भी शुरू हो गया है जिसमें हम पत्र डाल भी चुके हैं।
0: अच्छा, बढ़िया।
1: हाँ जी, और एक आपका जिज्ञासा जो था वो तो एकदम समझो मजा अच्छा आ जाता है सुनकर।
0: अरे बहुत शुक्रिया, तो फिर अब हमको समझ में आ गया कि आप ठीक ठाक हैं, मतलब सिर्फ गाना ही था, ऐसा कोई मन की हालत ऐसी नहीं है?
1: गाना ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, हम अपने आप में खुश रहते हैं।
0: हाँ बस ऐसे ही जोश में रहना है ना, भले गाना अपन ये वाला सुन लेंगे। ठीक है, सुनाते हैं आपको ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, लेकिन काम की तो है ना
1: सर।

0: हेलो फरमाइश।
1: सर, मेरा नाम विशाल यादव है और मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा विशाल जी, सब ठीक है?
1: हाँ, बढ़िया सर।
0: और इंदौर की क्या हालचाल है?
1: इंदौर के बढ़िया, मौसम अभी खुशनुमा है और थोड़ी बारिश अभी बंद है।
0: अच्छा, हमने तो सुना था खूब बारिश हुई पिछले दिनों इंदौर में।
1: हाँ, पिछले महीनों में हुई थी, पर अब नहीं हो रही है। थोड़ी बारिश की थोड़ी प्रॉब्लम है इधर।
0: अच्छा, और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: सर, मैं रेडीमेड के सिले का काम करता हूँ इंदौर में, और बढ़िया चल रहा है।
0: और विविध भारती के कार्यक्रम सुनते रहते हैं?
1: हाँ बिल्कुल सर, आपके तो खास करके।
0: अच्छा, ये बताइए कि आपकी फेवरेट सिंगर कौन है?
1: मेरी फेवरेट सिंगर लता जी है और आशा जी।
0: क्या बात है, तो उनके गानों की फरमाइशें आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम में करते रहते हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और लता जी का तो जन्म ही इंदौर में हुआ था भाई।
1: हाँ, इंदौर में हुआ था, हम जानते हैं ना। उनके सराफी मतलब गाने सुनते रहते हैं, और जैसे कुछ उनके कार्यक्रम वगैरह भी आते हैं वो भी
0: हाँ,
1: सुनते हैं।
0: इंदौर का जो फूड कल्चर है वो तो बड़ा कमाल है। तो इन दिनों जो
1: हाँ
0: है
1: सर।
0: वो कौन कौन से व्यंजनों का मजा लिया जा रहा है?
1: सर, हमारे यहाँ पे सराफा फेमस है, तो अभी जैसे अभी मौसम के हिसाब से भुट्टे का केस वगैरह अच्छा चलता है।
0: और
1: हाँ,
0: वो
1: और
0: कचौड़ी,
1: बिल्कुल यहाँ पे कचौड़ी और समोसे, ये चीज तो फेमस ही है सर यहाँ पर।
0: बिल्कुल, जैसे
1: ये
0: इंदौर को
1: सराफा,
0: याद
1: ये
0: करो तो
1: शक्कर
0: अपना
1: दुकान
0: एक
1: करके।
0: फूड कल्चर याद आता है ना।
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ खाने पीने की बहुत फेमस चीजें हैं यहाँ पर।
0: कोई एंड नहीं है खाने पीने का।
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो ये
1: ये सर
0: बारिश के
1: है।
0: मौसम में दाल बाफले के मजे लिए जा रहे हैं?
1: हाँ लिए जाए सर, ये भी हमारे सराफे में बहुत फेमस है।
0: अच्छा, तो इंदौर वासी तो निकल पड़ते होंगे सराफे की तरफ जब मन चाहे।
1: हाँ बिल्कुल, रात को 4 बजे तक चालू रहता है सर।
0: बहुत सही।
1: ये गाना सुनना है सर मुझे,
0: कौन सा?
1: राजा और रंक मूवी का, मेरा नाम है चमेली, ये लता जी की
0: ओके,
1: आवाज
0: क्या
1: में।
0: बात है। तो चलिए फिर आपको सुनवाते हैं राजा और रंक फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर जी, मैं आरिफ खान मंसूरी बोल रहा था, भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: आरिफ खान मंसूरी साहब, आपकी बहुत फरमाइशें आती हैं।
1: सर आपसे मेरी 15 साल पहले बात हुई थी सर।
0: अरे नहीं, यहाँ नहीं आती हैं, वो फेसबुक पे आती हैं, चिट्ठियों में आती हैं।
1: बाकी तो सब में आती हैं, और मैंने आपसे बहुत साल पहले बात हुई थी।
0: अच्छा, ऐसा है। हाँ
1: सर,
0: भोपाल के किस इलाके में हैं आप?
1: सर भोपाल के कोलार इलाके में सर हम।
0: अच्छा अच्छा, बताइए क्या हालचाल है आपके?
1: सर बढ़िया है, मैं टेलर हूँ
0: जी।
1: और आरती से मैं 2005 से जुड़ा हुआ हूँ
0: जी।
1: और 2005 और 2010 के बीच में मैंने मुंबई में 150-200 फोन लगाए होंगे सर, कम से कम।
0: अरे बाप रे, ये तो रिकॉर्ड हो गया भाई।
1: और जितने भी आरजे थे उस टाइम के, कमल शर्मा जी हों, शहनाज जी हों, चाहे ममता जी हों, जितने भी आरजे थे सबसे मेरी बात हो चुकी थी।
0: और मेरे से?
1: और सर आपसे 2-3 बार आपसे बात हुई थी सर मेरी।
0: अच्छा
1: सर, क्या है कि मैं जैसे आपसे आज मेरी बात हो रही है तो मैं डायरी में नोट होकर रख लेता हूँ, तो मेरे पास वो 2005 से और 2010 तक मैंने फोन लगाया, वो डायरी में मेरे पास सब नोट कर लिखा हुआ है सर।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया है। आप बताएं कि एक पुराना भोपाल हुआ करता था, एक पूरा कल्चर भोपाल का 30-40 साल पहले जिस तरह का था, क्या वो आज खो गया है?
1: सर अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है सर, पुराने भोपाल भी अब बहुत डेवलपमेंट हो गया है, नए भोपाल भी जो बन गया है, और ये कोलार इलाका भी पहले भोपाल में नहीं आता था, अभी 5 साल से आ रहा है।
0: नहीं, लेकिन जो तहजीब थी भोपाल की, जो पुराने घर,
1: सर तहजीब तो सर भोपाल की वही रहेगी, क्योंकि जो बुजुर्गों सीखते हैं वो बच्चे करते हैं, अमल में लाते हैं।
0: बिल्कुल, एक पूरा शायरी का मिजाज और वो बात करने का अपना एक तरीका, भोपाल का पान।
1: जी सर, जी सर,
0: वो जलवे कायम है।
1: हाँ सर, जलवे कायम है, वो पान की गुमटियाँ भी कायम है और नमक वाली चाय भी कायम है और वो बिल्कुल रौनक भी कायम है, मगर वो ज्यादातर पुराने भोपाल में पाई जाती है सर। वो
0: बिल्कुल, वो क्या कहते थे, तालों में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया।
1: जी जी सर,
0: क्या बात है
1: सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: तो बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
1: फिल्म का नाम है मेरे हम सफर, और गाने के बोले किसी राह में किसी मोड़ पर यूँ चलना देना यूँ छोड़कर।
0: कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मुकेश की आवाज। आपके लिए ये गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मेरे हम सफर।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार
1: सर, मैं गांव लिहे डिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश सोहन बात कर रहा हूँ।
0: जी जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर, आप कैसे हैं सर?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, आप सभी से बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हाँ सर, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, फोन कॉल नहीं लग रहा था, बहुत परेशान हो रहा था सर। अब जैसा शुरुआत हुआ था उसके बाद फोन ही नहीं लगा था मेरा।
0: बताइए, इतने दिनों बाद फोन लगाए, तो बताइए आपके इलाके की क्या हालचाल है भाई?
1: सर, इलाके की हालचाल तो बहुत गर्मी है और बहुत धूप है, मतलब बारिश नहीं हो रही है, पर खेत में फसल को पानी भर रहा है, कपास को।
0: जी, कुछ जगहों पर बहुत बारिश हो रही है, कुछ जगहों पर बारिश ही नहीं हो रही, क्या माजरा है ये?
1: हाँ सर, मैं भी सुन रहा हूँ कि मतलब जगह जगह ये रेडियो के कार्यक्रम सुनते रहते हैं ना, तो कुछ जगह बताते हैं कि मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में बारिश क्यों नहीं हो रही सर?
0: हाँ, देखिए ना, मौसम किस तरह से बदल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना?
1: सही बात है सर, परेशान हो रहे हम लोग कि यहाँ पे खेत में सब मोटर से पानी चला रहे हैं और ऊपर से बारिश नहीं हो रही है।
0: जी जी अच्छा, मुझे ये बताइए कि विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सर, विविध भारती के कार्यक्रम मुझे सबसे ज्यादा हेलो फरमाइश और सखी सहेली, हेलो सहेली और जो पत्र आधारित के कार्यक्रम शुरू हुआ ना, तो
0: जी
1: वो भी बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा हमारा जो फेवरेट प्रोग्राम है हेलो फरमाइश।
0: अच्छा, सखी सहेली तो महिलाओं का कार्यक्रम है,
1: तो भी अच्छा लगता है सर सुनने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो गाने की फरमाइश?
1: गाने की फरमाइश सर, फिल्म का नाम है सरगम और गाने का बोल है पर्वत के उस पार।
0: चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते सर, यूनुस खान जी।
0: नमस्ते भैया।
1: मेरा नाम रामेश्वर अकवार है, मैं ग्राम भगवता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर जी।
0: अरे क्या बात है, छतरपुर से बोल रहे, क्या हाल चाल भैया?
1: बढ़िया है सर, अभी एक्सीडेंट हो गया था, 2 दिन वहाँ पड़े रहे बिस्तर में।
0: क्या हो गया एक्सीडेंट, कैसे हो गया?
1: सर बस टकरा गई थी उससे, बस और उसका हो गया ट्रक का।
0: तो आप काय में थे, बस में कि ट्रक में?
1: बस में थी सर, डिपो में, यहाँ पे हमीरपुर में।
0: ए दद्दा रेसो, सब ठीक ठाक है,
1: हाँ
0: सलामती
1: सर,
0: है?
1: सर सर फट गया था सर, अभी 2 दिन महीने से हाथ फ्रैक्चर है, अभी बिस्तर में पड़े हैं सर
0: ए दद्दा रे, तो बहुत ही बुरा हुआ। आजकल
1: जी
0: लोग
1: सर।
0: गाड़ियां वाड़ियां ठीक से नहीं चला रहे मालक,
1: हाँ हाँ सर, ऐसा भी है।
0: है ना? हम सब लोगों से जे कहेंगे कि सड़क पे निकलें तो थोड़ी अच्छे से गाड़ी चलाएं। और का
1: जी सर, आपसे दूसरी बार बात हो रही है मेरी
0: दूसरी बार, हमें तो याद नहीं है।
1: सर। अभी हुई थी ना, जब आप पूछ रहे थे अमिया लग गई आम में कि नहीं लगी।
0: अरे हो, अमिया अमिया, गर्मी के मौसम में बात हुई।
1: हाँ जी सर, हुई थी।
0: अच्छा जी, बताइए कि छतरपुर के क्या हालचाल? आधा बारिश हो गई?
1: हाँ हाँ सर,
0: अच्छा,
1: सर वो खेत हमारे तालाब में है ना, इसलिए डूब जाते हैं। ज्यादा बारिश तो नहीं हुई, मतलब ठीक ठाक हो गई।
0: अच्छा तो का उगाते हैं अपन इन दिनों में खेत में, का चल रहा हो?
1: सर सोयाबीन, उड़दा और मूंग।
0: अच्छा उड़दा भी उग जाती है?
1: जी सर,
0: अच्छा, जो हमारे श्रोता बुंदेली नहीं जाना तो उनको बता दें, उड़दा माने उड़द की दाल।
1: जी सर, उड़द।
0: हाँ, नहीं तो उड़दा लोग समझ ही नहीं पाए हैं।
1: जी सर, आप तो बुंदेलखंडी जानते हैं अच्छे से।
0: नहीं थोड़ी थोड़ी जाना थे भैया, हम सोई बुंदेलखंडी आए।
1: सर आप बताते रहते हैं ना, भोपाल में सागर में रहे हैं तो आप तो जानते ही होंगे।
0: हाँ थोड़ी थोड़ी, हाँ अपन बुंदेलखंडी आए थोड़े थोड़े।
1: जी सर,
0: सो आज कौन से गाने की फरमाइश आ रही जे बताओ।
1: सर हम वो वाला सॉन्ग सुनना चाहते हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
0: चलिए पूरी कर रहे आपकी फरमाइश, छतरपुर में आपके लाने सुनवा रहे जे गाना।
2: हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ?

किधर को जाता ही तंदाना, क्यों पास न आता ही तंदाना, क्या मारी ये बाता तंदाना, दिल तोड़ी ये घाता तंदाना। तो मैं किधर को जाता ही तंदाना, क्यों पास न आता ही तंदाना, क्या मारी ये बाता तंदाना, दिल तोड़ी ये घाता तंदाना।

पाखा नारंगी की पाखा पाता चूझा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

मेहमान गरीब है तंदान, सूरज से अजीब है तंदान, पर फिर भी नसीब है तंदान, ये तेरे हरीब है तंदाना। मेहमान गरीब है तंदान, सूरज से अजीब है तंदान, पर फिर भी नसीब है तंदान, ये

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर, ग्राम बिछिया जिला विदिशा से कैलाश राजपूत बोल रहा हूँ सर।
0: कैलाश जी कैसे हैं?
1: बस सर एकदम मस्त है सर। यूनुस जी आपकी आवाज तो हमारे दिलों में बसी है, बिल्कुल आपकी आवाज सुनते हैं तो समझ जाते हैं यूनुस जी आ गए हमारे।
0: अरे क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पुराने श्रोता हैं आप विविध भारती के।
1: बिल्कुल सर आपने सही पहचाना, मैं कम से कम 30 साल हो चुके हैं विविध भारती से जुड़े जुड़े।
0: इन 30 सालों में विविध भारती कितनी बदली है कैलाश जी?
1: प्रोग्राम तो सर एक सफर का एक लाजवाब है सर विविध भारती के, और लगातार विविध भारती हम सुनते हैं, एकदम देश की सुरी धड़कन विविध भारती कहते हैं वो बिल्कुल सच है बात।
0: और देखिए 3 अक्टूबर को विविध भारती अपने 70वें साल में प्रवेश करेगी, इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं आप?
1: बस सर इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे बस सर, बस सभी लोग यूं ही विविध भारती सुनते रहे, मनोरंजन तो है ही और साथ में ज्ञान भी मिलता है सर इससे, विविध भारती से बहुत अच्छा लगता है साथ में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं कैलाशी?
1: जी सर आज सुनना चाहेंगे फिल्म मन का है नशा, ये प्यार का नशा है, क्योंकि विविध भारती का नशा जो है ना बहुत है हमको, और वर्षों से सुनते चले आ रहा है और अच्छा लगता है ये।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, सुनिए ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम खेड़े टांडे से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ आपसे।
0: वसीम भाई कैसे हैं?
1: अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, ईश्वर की कृपा है और आपकी दुआएं सर।
0: आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट रामपुर है ना, इससे बहुत सारी चीजें याद आ गई।
1: जी सर,
0: फिल्मों में पहले दिखाते थे रामपुरी।
1: जी, रामपुरी चाकू के नाम से जाना जाता है सर।
0: हाँ।
1: ये और ये इंडस्ट्रियल एरिया है रामपुर।
0: अच्छा,
1: मतलब सर यहाँ पे धानों की खेती, गन्ना, गेहूँ होता सर।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही पुराना इलाका है, वहाँ की तहजीब बहुत अलग है।
1: जी सर, सर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एमए कर रखा पॉलिटिकल साइंस से।
0: अच्छा,
1: और जब जब समय मिलता है सर आपके प्रोग्राम सुनते हैं। विविध भारती से सर बहुत पुराना नाता है और एक लंबे अंतराल के बाद आपसे हेलो फरमाइश में बात हो रही है, तो अपनी खुशी सर मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता कि इतनी खुशी हो रही है सर मुझे।
0: आपकी आवाज में आपकी खुशी छलक रही है।
1: जी सर, और आपकी आवाज सुन लेते हैं तो सर आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम अच्छे से पेश करते हैं सर, बहुत खुशी होती है सर आपकी आवाज सुन के सर, बस कुछ बयां नहीं कर सकते कि इतनी खुशी महसूस हो रही है सर आज।
0: शुक्रिया भाई, बताएं किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: सर मूवी का नाम है अंदाज और उसमें एक सॉन्ग है किसी से तुम प्यार करो फिर इजहार करो, इसके बोले।
0: जी बिल्कुल।
1: और जी सर आपके लिए दो लाइन है।
0: इरशाद,
1: कि काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, लम्हे लम्हे की खुशी लिख दूं सर आपकी जिंदगी के लिए।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब आपको सुनवा रहे हैं अंदाज फिल्म का ये गाना रामपुर में।

0: हेलो फरमाइश।
1: बहुत दिनों से बात करने चाह रहा हूँ तो आपसे आज बात हो रही है सर
0: जी। नाम क्या है आपका?
1: मैं इस्माइल पात्रूर शरीफ तालुका मजलेगांव जिला बीड़ से बात कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ सर, आपकी दुआ से, अल्लाह के फजल से।
0: और बताएं, विविध भारती के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
1: बहुत अच्छे लग रहे सर, सब गाने सुनता हूँ सर मैं आपके कार्यक्रम के।
0: जी जी, बहुत बहुत
1: सर। और शेर कहना चाहता हूँ सर मैं।
0: इरशाद।
1: फूलों में हंसी गुलाब है, फूलों में हंसी गुलाब है, पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है। अगर हमसे कोई पूछे विविध भारती के बारे में तो हम कहेंगे वो बहुत बहुत लाजवाब है।
0: वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: कातिलों में कातिल सर।
0: अरे बाप रे, कातिलों का कातिल, कौन सा गाना?
1: ये अल्लाह को खबर, ये मौला को खबर, बहुत अच्छा गाना है सर, मोहम्मद रफी की आवाज में सर।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खेटांडे से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ सर।
0: जी बताइए कैसे हैं आप?
1: सर एकदम अच्छे हैं, आप बताइए सर आप कैसे?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। विविध भारती का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम बताइए कौन सा है आपकी नजर में?
1: सर मेरी नजर में सबसे अच्छा प्रोग्राम तो देखिए सर फोन इन प्रोग्राम है ये।
0: अच्छा,
1: इसके अलावा जो आप मैसेज के आधार पर जो सॉन्ग सुनवाते हैं वो, और रात में जो भोले बिस्तर गीत, और ये पिटारा के अंतर्गत जो प्रोग्राम आते हैं सर,
0: हाँ जी,
1: ये सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं सर।
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरह की बात आपने कही, विविध भारती 3 अक्टूबर को अपनी सालगिरह मना रहा है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: सर देखिए विविध भारती हमारे दिलों पर राज करता चला आ रहा है इस जमाने से
0: जी,
1: और सर यही ऐसी जो प्रोग्राम चल रहे हैं और ऐसे चलते रहे और हम इससे जुड़े रहे, हम सुनते रहे, आप हमारा मनोरंजन करते रहे सर, इससे ज्यादा बेहतर हमारे लिए और कुछ नहीं।
0: आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी और गाने के बोले कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
0: वाह भाई वाह,
1: तरह के गाने के बोले सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही गाने के बोल बताए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी हो रही है आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। कितना

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग होती है सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 0222867088 यानी 02228670288, दूसरा नंबर है 0224002466 यानी 40024662। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से। और अब ये इल्तिजा कि जिन श्रोताओं के कॉल्स आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनसे ये निवेदन है कि अगले 2 महीने तक हमें फोन न करें, ताकि हमारे नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। चलने से पहले आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलीकर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राघवेंद्र सिंह नेगी। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: रंग अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 11 बज चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में गाई कुछ गजलें।

0: सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

में रंगती बसंती से लिया ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे गाया था दलेर मेहंदी ने। फिल्मी संगीत की अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म एयरलिफ्ट से। इस गीत को अपनी आवाज दी है केके ने और धुन बनाई है अमाल मलिक ने।

फिल्म संगीत की प्रस्तुति आप सुन रहे थे फिल्म सत्याग्रह से। गीत को गाया था राजीव शिवम व अन्य साथी कलाकारों ने। संगीत निर्देशन किया था सलीम सुलेमान ने। फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म स्वदेश से। जावेद अख्तर की बोल ए आर रहमान का संगीत निर्देशन व गायकी।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 103 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बज चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कई सांसद, संसद के वरिष्ठ अधिकारी और विद्यार्थियों ने भी दोनों महान नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान तक आगे बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक उपचार के बाद अब उन्हें अबू धाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 11 मेट्रो स्टेशन अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली स्टेशन शामिल हैं।

0: हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस, INA, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर मेट्रो की इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जिए को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। रिकर्व मिक्स्ड टीम तीरंदाजी में भारत ने रजत पदक जीता। कुमकुम महोद और धीरज बोमा देवरा की जोड़ी ने चीन से 3-5 से हारने के बाद रजत पदक हासिल किया। भारत की नेत्रा कुमानन ने एशियाई खेलों में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल ने ओलंपिक चैंपियन को हराकर एशियाई खेलों के 65 किलोग्राम फाइनल में जगह पक्की की। भारत पदक तालिका में 70 पदक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 24 रजत और 34 कांस्य पदक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है

0: मान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज अभिनेत्री आशा पारेख के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं।

संगीत लव इन टोक्यो फिल्म के इस गीत में। आपको बता दें, आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पत्रकार की बातचीत की ये एक लंबी श्रृंखला है, जिसकी आज 13वीं कड़ी आप सुन सकते हैं। और रात 8 बजे हवा महल में सुनेगा रूपक महान आत्मा, लेखन और निर्देशन गुरनीत रामल मीत का। इस वक्त विविध भारती पर यादों की महफिल कार्यक्रम सुन रहे हैं, और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अभिनेत्री आशा पारेख के जन्मदिन पर आज उन्हीं की फिल्मों के गीत इस कार्यक्रम में शामिल हैं।

ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां।

0: तीसरी मंजिल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार में होना,
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच।
3: अगर तुम मिल जाओ,
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिल

जानिए मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिन जलता हुआ चिराग है।

लता मंगेशकर की आवाज में जिद्दी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। असर जयपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत, यादों की महफिल कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मेरे सनम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द, ओपी नैयर की तर्ज।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही

बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्य। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज इस कार्यक्रम में अभिनेत्री आशा पारेख की अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: फिर वही दिल लाया हूँ। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: शंकर जयकिशन की तर्ज पर ये गीत आप सुन रहे थे असर जयपुरी के बोल लता मंगेशकर की आवाज फिल्म कन्यादान।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में।

0: रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिल

दो बदन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। रवि की तर्ज शकील बदायूनी के बोल। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज आनंद बख्शी के बोल के साथ। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें आया सावन झूम के। इस फिल्म से गीत सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बता देते हैं आज की इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे हैं वो शब्द जिनसे गीत सुनवाए जाएंगे आज के इस कार्यक्रम में। तो आज की इबारत है, गम दर्द तन्हाई ये भी तो जीवन का हिस्सा है। कोई रात की तन्हाई में आवाज न देने की बात कहता है तो कोई दर्द हद से गुजरने पर गाने लगता है। दुख दर्द को जीने और उससे लड़ने के सभी के अपने अपने तरीके होते हैं। दर्द हमेशा दुख भी कहां देते हैं। दर्द दिल की बातें यूं ही तो आशिक नहीं किया करते। मिलने की खुशी के साथ भी तो जुदाई का गम जुड़ा ही होता है। सुनहरे सपनों के टूट जाने का डर भी तो मन में यूं ही समाता है। हर खुशी एक डर साथ लिए आती है कि वो कहीं खो ना जाए, बीत ना जाए। जब कोई खूबसूरत याद या खुशी बीत जाती है तो हम उसके लौट आने की कामना भी करने लगते हैं। बीते हुए दिन क्या कभी वापस आए हैं? खुशी को बचाए रखने की चाह में हमने वो पल भी तो डर डर के ही बिताए हैं। वही दुख के हर पल को हमने भरपूर जिया है। हर आने वाला पल जाने वाला है ये जानते हुए भी हर दुख को ज्यादा से ज्यादा जीते हैं और खुशी के लम्हे को डरकर। क्या आपका भी यही है नजरिया? दुख दर्द और गम आए तो आप कैसे करते हैं उसका सामना? क्या है आपके जीवन का मूल मंत्र? जरा हमें भी बताना। ये है आज की भारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे हैं कई शब्द जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। और आपने बहुत सी बातें लिखकर भेजनी भी शुरू कर दी है। साथ ही साथ हमारे साथियों ने गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नमन किया है उन महापुरुषों को। हम भी विविध भारती परिवार की ओर से नमन करते हैं उन पुरुषों को, महापुरुषों को। और साथ ही सुरीला सफर कार्यक्रम शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। और आपकी बातें तो हम तक पहुंच ही रही, लेकिन एक बात जो हम जानना चाहते हैं वो ये कि किस बात पर सबसे ज्यादा दुख आपको होता है ये हमें बताइए। और तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। बताइए किसकी आवाज में गीत है।

दिल भी तेरा हम भी तेरे इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। हमने आवाज ही किसकी पहचानने के लिए कहा था और आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब हमारी गलती ना हो उस समय यदि कोई गलत ठहराने लगे तो बड़ा दुख होता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जन्म से लेकर नदी होने तक किसी न किसी को बिछड़ने का डर, जब दर्द हद से गुजर जाए तो परिस्थिति हो या इंसान को तोड़ देती है और सारे दुख दर्द को गले लगाकर खुद को मजबूत बनाकर इंसान जीने लगता है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, हम बताते हैं कि उन्होंने क्या बताया है हमें गम और दर्द के बारे में और किस तरह से वो उससे निजात पाते हैं। हमारे एक साथी कहने गम आने वाली खुशियों की आहट देता है, दर्द जख्म के ठीक होने की राह देता है, तन्हाइयों का तो क्या जनाब वो खुद को खुद से मिला देता है। गम दर्द और तन्हाई आने वाली खुशियों का गुलदस्ता हो सकता है। आने वाले पल पर भरोसा रखिए, कुछ भी स्थायी नहीं होता। क्या ही खूबसूरत बात हमारे साथियों ने लिखी। हमारे एक और साथी लिख रहे हैं कि इन दिनों मेरा इन्हीं से पाला पड़ा है, दर्द गम और तन्हाई कह रहे हैं। तो हमारे आज का ये कार्यक्रम सांत्वना का एक रूप होगा, अब इंतजार है दिन के एक बजने की। तो भाई हम इन्हें बिल्कुल सांत्वना तो देते हैं, साथ ही ये भी कहते हैं कि जैसा कि हमारे साथी ने लिखा कि कोई भी वक्त ठहरता नहीं, बीत ही जाता है। वहीं हमारे एक और साथी कहने कि संसार के रचयिता ने हर इंसान के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है कि उसके जीवन में सुख और दुख आते ही है, चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सुपरस्टार हो या क्लब बॉय, हर इंसान को सिर्फ सुख ही सुख मिले तो कौन परमात्मा को याद करेगा। इसलिए दुख के समय सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर को ही याद करना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुमिरन सुख में करे तो दुख काहे को होए। ये बात भी इन्होंने अपने साथ में लिखी है। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि जीवन में दुख और दर्द तो मौसम की तरह आते जाते रहते हैं, इसलिए हमें दुख दर्द तन्हाई और गम की परवाह न करते हुए उस पल को आनंदमय बनाकर जीना चाहिए, क्योंकि जैसे कड़ी धूप के बाद सुकून देने वाली छांव आती है ऐसे ही हर दुख और दर्द हमेशा के लिए नहीं होते, इसलिए हमें सुकून भरे उस पल का इंतजार करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है, हमारे साथ ही लिख रहे हैं। और हमें ये भी बताइए कि किस तरह से आप अपने गम से हाथापाई नहीं कह सकते।

अपने गम से किस तरह से आप निजात पाते हैं? क्या पूरे वक्त, कई लोगों की आदत होती है कि वो पूरे वक्त दुख में डूब जाते हैं पूरी तरह, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जब भी बड़े से बड़ा दुख भी आए तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो आप किस में समझते हैं खुद को इन दोनों ही कैटेगरी में से? और हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और किसी ने इसे लिखा।

आशा भोसले की आवाज में हम साया फिल्म का गीत सुन रहे थे, जिसे लिखा शेवन रिजवी ने, ओपी नैयर का संगीत। बिल्कुल सही जवाब आपने हमें दिया। हमारे एक साथी कहने के दुख दर्द में विविध भारती हमारा साथी रहता है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गम भी मिला, दर्द भी मिला, तन्हाई भी मिली, जिंदगी की राह में हर रंग की परछाई भी मिली, हमने मुस्कुराकर हर जख्म को सीने से लगा लिया, तभी तो इस सफर में हमें खुद से मुलाकात भी मिली। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गमों की बातें जब हो रही है तो कह रहे हैं कि खुशी और दुख हमारी जिंदगी रूपी सिक्के के दो पहलू हैं, एक आता है दूसरा चला जाता है, लेकिन दुख आने पर लोग निराश हो जाते हैं।

0: मेरा मानना है कि दुख इंसान को सबसे अच्छा साथी होता है। दुख हमें बहुत कुछ सिखाता है और अपने पराये की पहचान भी करवाता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक बार अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा वक्त की दीवार पर ऐसा कुछ लिखो कि खुशी के समय पढ़ूं तो मैं दुखी हो जाऊं और दुख के वक्त पढ़ूं तो खुश हो जाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने लिखा ये दिन भी गुजर जाएंगे, मतलब जीवन में कोई भी चीज शाश्वत नहीं होती, रात के बाद सुबह आती ही है। दर्द दुख और तन्हाई भी हमारे लिए एक नई ऊर्जा उम्मीद और आशा लेकर आती है। खुशी तलाशने पर जिंदगी यकीनन खूबसूरत हो जाती है। वहीं हमारे साथी कहने की जिंदगी में हर पल को खुशी से जी लेना चाहिए क्योंकि वक्त के साथ लोग भी बदल जाते हैं पर कुछ यादें आखिर तक साथ निभाती है और एक ऐसी ही याद बनने वाली है कल विविध भारती के सालगिरह के जश्न पर। तो सुनते हैं एक संदेश।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आमी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

विविध भारती के इस जश्न में तो आप शामिल हो सकते हैं हमारे साथ फेसबुक लाइव के जरिए, क्योंकि कल फेसबुक लाइव के जरिए हमारे सभी श्रोताओं को हम शामिल करेंगे इस जश्न में। और साथ ही आप पूछ सकते हैं अपने सवाल लाइव भी, जिन्हें शामिल किया जाएगा कार्यक्रम में, जैसा कि हम रोजाना सुरीला सफर कार्यक्रम में ही करते हैं। लेकिन कल मौका खास है, क्योंकि कल सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये मौका आपको मिलता रहेगा। और हमारे साथ कई सितारे होंगे, जैसे कि इला अरुण और तिग्मांशु धूलिया और साथ ही अनु मलिक भी, तो इनसे भी आप पूछ सकते हैं अपने सवाल। क्या पता आपके सवाल शामिल हो जाए, उनका जवाब दें आपके ये चहेते सितारे। फिलहाल विविध भारती पर सुरीला सफर कार्यक्रम जारी है और हमारे एक साथी ने लिखा कि आज 2 अक्टूबर केवल तारीख नहीं बल्कि भारत के दो महान सपूतों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों को याद करने का दिन है। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, जो दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश देता है। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी और अहिंसा का मार्ग हमारे जीवन को भी बेहतर बनाने की प्रेरणा बन देता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और इन महापुरुषों की जो सीख है, उन्हें अगर हम अपने जीवन में ले आए तो सुख और दुख हमारे जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं लाते हैं और हम एक संयमित जीवन जीना सीख जाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब दिल को सतावे गम, तब छेड़ सखी सरगम, सात सुरों में बड़ा ही दम है, बहते आंसू जाए थम, छेड़ कोई सरगम। ये गाना सुनने पर जब आप बहुत तकलीफ में है तो सचमुच गाना दिल को बेहद सुकून देता है। सुर की मधुरता उनके शब्द आपको जख्मों पर मरहम के समान लगते हैं और आप उसमें खो जाते हैं। सारी नकारात्मकता आपकी आंसुओं के साथ बह निकलती है और आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। तो भाई, ऐसा ही एक सकारात्मक गीत हम आपको सुनवाते हैं। आपको ये बताना है कि इस फिल्म का ये गीत है, किसने लिखा, आवाज तो आप पहचान ही लेंगे।

समझौता फिल्म का ये गीत इंदिवर के बोल, कल्याण चौहान जी का संगीत, आवाज किशोर कुमार की। हमारे एक साथी कह रहे हैं, जब कोई वादा करके मुकर जाता है तो मुझे दुख होता है, आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, स्पष्ट रूप से इनकार क्यों नहीं कर देते। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियां उनकी भी ऐसी होती हैं कि वो एक वादा तो करते हैं लेकिन बाद में उसे निभा नहीं पाते, तो वो बातें, वैसे आपका कहना तो ये सही है कि अगर वो बातें करते हैं तो उन्हें सीधे सीधे आपको बता देना चाहिए कि भाई ये कुछ परिस्थितियों की वजह से हम उसे नहीं निभा पा रहे। हमारे एक साथी कह रहे हैं, केवल धैर्य से काम लेते हैं, दुख सुख हर परिस्थिति में, सुख में अति उत्साह नहीं दिखाते, पता है कुछ समय बाद दुख तो आएगा ही, लेकिन ये भी सही नहीं है कहीं ना कहीं, जो भी अगर उस वक्त हमारे साथ सुख है तो उसका भी आनंद लेना चाहिए, और अगर दुख है तो धैर्य और संयम से ये सोचते हुए कि ये दिन बीत जाएंगे और हम आगे जरूर आगे बढ़ते जाएंगे, खुद को हौसला देकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि सुख में हम ज्यादा सुखी ना हो कि भाई ये दिन बीत जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो वो एक डर ही हुआ कि हम अपने सुख को ठीक से नहीं जी रहे, उसका आनंद नहीं ले रहे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे रात की तन्हाई में आवाज देकर मेरी नींद खराब अगर कोई कर देता है तो फिर सोने की कोशिश करता हूं, फिर मुझे नींद आती है और दुख से छुटकारा मिल जाता है। इस तरह के मजाहिया कमेंट भी हमारे साथी कर रहे हैं और शायद इसी तरह वो अपने जीवन में एक हंसी मजाक का हल्का फुल्का माहौल बनाए रखते हैं, और फिर ऐसे वक्त में तो दुख बिल्कुल भी आसपास नहीं पटकता, क्योंकि लोगों के लिए भी वो एक चहेते मित्र बन जाते हैं जहां पर वो अपनी इन बातों से लोगों का जो मन है वो हल्का रखते हैं। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि दुख जीवन की पहचान होता है, और हमारे एक और साथी हैं वो कहने के गम, दर्द और तन्हाई, इन सबको साधना बड़ा कठिन काम है। वर्तमान में रहते हैं तो बीते समय का हम पछतावा ही करते रह जाते हैं, आज के समय को गंवाते हुए भविष्य की चिंता में हम डूबे रहते हैं और सोचते हैं हम समय के साथ चल रहे हैं, मगर दिन यूं ही बीतते चले जाते हैं। बस जिस क्षण हम समय की टंकार पहचान लेते हैं तब सब ठीक हो जाता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी में खुशी है तो गम भी है, खुशी स्थायी नहीं होती और ना ही गम, इसलिए खुशी को दिल से अपनाने की जरूरत है, डर से मन अशांत होने लगता है, दुख दर्द तन्हाई बिछड़ना ये जीवन

0: का हिस्सा है और इसे भी धैर्य से समझना चाहिए और इसका सामना करना चाहिए, आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन में इतने दर्द मिले हैं कि उनको याद करके सिर्फ आंसू निकल आते हैं, बट इन दर्द से, इन गमों से जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो उस हौसले को याद किया कीजिए तो आपके चेहरे पर जरूर एक मुस्कान आएगी, ऐसा हमें लगता है। हमारे एक और साथी कहते हैं, जिंदगी में गम, दर्द और तन्हाई से भागने के बजाय इन्हें स्वीकार करना ही जीवन जीने की कला है। और आगे वो कहते हैं कि जैसा कि मशहूर पंक्तियों में कहा गया, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के गम भुलाना जिंदगी है। ये तीनों रात के उस अंधेरे की तरह है जहां जिसके बाद आने वाली सुबह और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। यदि आप इस समय ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो इसे एक पड़ाव माने, मंजिल नहीं। बिल्कुल सही बात आपने लिखी और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, लेकिन पहले सुनाते हैं कल के कार्यक्रम के लिए जुड़ा एक संदेश और उसके बाद कार्यक्रम में गीत।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और बात गमों की, दुखों की और साथ में इनसे निपटने की जो तैयारी होती है वो कैसी होती है उस पर हो रही है। हमारे एक साथी कह रहे हैं, मुझे सोशल मीडिया में दुख होता है जब मैं किसी के कई पोस्ट को लाइक और कमेंट करता, अगर वो मेरे पोस्ट पर कमेंट तो दूर, लाइक करना भी गवारा नहीं समझते और टेक्स्ट कमेंट को टेक्स्ट में जवाब न देकर सिर्फ लाइक करके छोड़ देते हैं। तो और साथ ही ये कहते हैं कि दुखों को कम करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम सोशल मीडिया है, व्यस्त रहे दुख टकरा टकरा कर भाग जाएगा। भाई यहाँ हम ये कह सकते हैं कि आप अगर किसी के पोस्ट को कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और वो आपकी पोस्ट को कमेंट या लाइक नहीं करते हैं तो यहाँ आपको ये सोचना चाहिए कि आपने लाइक और कमेंट तो अपनी मर्जी से की है, किसी ये लेन देन तो नहीं है। अगर आपको किसी की पोस्ट या कमेंट अच्छी लगती है और आप उसे लाइक करते हैं तो वो आपका काम है, आपने उस काम को खत्म कर दिया, तो कर्म आपने कर लिया। लेकिन उसके लिए किसी फल की चिंता ना करें, क्योंकि हो सकता है उन्हें वो कमेंट आपकी जो है या पोस्ट जो आपकी है वो लाइक करने लायक ना लग रही हो या उन्हें लग रहा हो कि मैं बाद में लाइक करूंगा, व्यस्त हूं, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अगर अपना दिल जलाना है तो भाई ये तो बड़ी बुरी बात है, क्योंकि फिर सोशल मीडिया आपके लिए दुख का बड़ा कारण बन सकता है। लेकिन आप अपना कर्म करते जाइए, आपको जो अच्छा लगता है उसे लाइक कीजिए, कुछ कहने का मन करता है तो कमेंट कीजिए और बड़ी ही आसानी से आप इस चीज से उबर जाएंगे और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने में आपका मन भी लग जाएगा। हमारे साथी कह रहे हैं कि जीवन के दो पहलू हैं, एक गम एक खुशी, ये दोनों समय में विविध भारती हर पल साथ रहती है। इस बात की हमें बहुत खुशी है। अकेलेपन का सबसे बड़ा साथी है, जीवन में कुछ भी नहीं ठहरता, जो आया है सो जाएगा, गम हो या खुशी कुछ नहीं रुकता, आने वाला पल जाने वाला है। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं आगे की बात कि वो कह रहे हैं कि कुछ लोग बिना जाने बहुत टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ तो ऐसे हैं हर समय बुरा ही बोलते हैं, बुरा तो सुनकर बहुत बुरा लगता है पर अब केवल चुप रहते, ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, भाई चुप रहना ही यहाँ सही है। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई हर कोई महात्मा गांधी नहीं बन सकता, इस बात से हम भी सहमत हैं। हम महापुरुषों के बारे में जब पढ़ते हैं, जानते हैं तो हम उनके जैसे ही या उन्हीं की तरह हम पूरी तरह से नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा जीवन और व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है, लेकिन उनकी जो सीख है उसे लेकर हम अपने जीवन और व्यक्तित्व को कुछ बदल सकते हैं, अच्छा और सकारात्मक कर सकते हैं, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। और फिलहाल हमारी कोशिश है कि कार्यक्रम में एक गीत आपको सुनवा दें। बताइए किस फिल्म का गीत है, लिखा किसने है।

दिलेक मंदिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत और हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कहने कि आमतौर पर हम खुद का घर तो बहुत साफ सुथरा रखते हैं, पर सार्वजनिक स्थान जैसे कि स्टेशन, एसटी स्टैंड, बस, रेल, रास्ते, सार्वजनिक स्वच्छता घरों को हम लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं। इस बात का अफसोस होता है और दुख होता है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि दुख और बादल एक जैसे होते हैं, जब तक बरसते नहीं तब तक हल्के नहीं होते। जीवन के दायरे में अनेक बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ जाता है जब गम, दर्द और तन्हाई का एक साथ सामना होता है। कुछ पीड़ाएं इतनी वेदना देती हैं कि अश्रु की धार भी अपने साथ नहीं बहा पाती, बस हृदय के किसी कोने में चुपचाप ठहर जाती है। जीवन ऐसा ही सारा खेल मानव मन की कल्पना का है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में असफल होता है तो वो अपने में क्रोध से युक्त स्वयं को पाता है, जो दुख का मूल कारण होता है। यदि ऐसे ही माहौल में ये गीत मस्तिष्क में आ जाए फिर कहने ही क्या कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि जब गलती नहीं होती और कोई इल्जाम लगाए तो दुख होता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बात जीने की चली है तो मेरी जिंदगी के 44वें साल तो खुशियों में बीते, तब हमें गमों का आभास भी नहीं था, इसलिए इसकी जरा भी परवाह नहीं की। ये वक्त भी बदल जाएगा। अब जब वक्त एकदम पलट गया तो गमों की परवाह हो रही है। यही परवाह उस समय किए होते तो ये गम इतना तकलीफ न देते।

तो फिर एक इंतजार लिए जा रहे हैं कि वक्त फिर बदलेगा। अब कब बदलेगा यही पता नहीं, तो जरूर बदलेगा वक्त आपका भी, हम ये कहते हैं, क्योंकि वक्त की तो ये आदत ही होती है, बदलता ही है और बीतता ही है। कभी भी दुख के जो वक्त है वो पूरी तरह उसी तरह नहीं रहता, बस जरूरत है कि हम उससे बाहर निकलें। तो आप हमें ये बताइए कि अगर कभी आपको दुख हुआ तो आप क्या करते हैं? गम और दुख भरे गीत सुनकर और दुख में डूब जाते हैं, या सकारात्मक गीत सुनकर अपने मन को बदलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं? आप क्या करते हैं? क्या दुख में बैठे रहते हैं, दुख को आत्मसात कर लेते हैं, या सुख की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, मन को बदलने की कोशिश करते हैं? ये आप हमें बताइए। तब तक हम आपको एक ऐसा ही गीत सुनवाते हैं जो आपको दुख से सुख की ओर ले जाए। फिल्म का नाम बताइएगा।

0: मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत को फिल्म गीत के लिए फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती है दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल

0: होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और हम बातें कर रहे हैं कि अगर हमें दुख होता है तो हम क्या करते हैं, किस तरह से उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि व्यक्ति को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि दुख आए उसके बाद सुख आए, दुखी वाले दिनों को नहीं बोलना चाहिए, उससे प्रेरणा मिलती है। जब दुख होता है तो अपने एक पुराने मित्र को याद कर लेती हूँ, उसकी अच्छाई को याद करके मन को शांति मिलती है, ऐसा हमारे एक साथी कह रहे हैं। एक और साथी ये कह रहे हैं, जब किसी दुख या दर्द से मेरी मुलाकात होती है तो मैं उसे किसी के साथ साझा करने के बजाय एक काम करता हूँ। गांव से थोड़ी दूर पर एक खूबसूरत सा तालाब है, वहां तालाब के किनारे बैठता हूँ, फिर अकेले जी भर कर रोता हूँ। उसके बाद हमारे गांव में बेसहारा राह भटके हुए बच्चों के लिए एक रिमांड होम बना है, उन बच्चों के लिए कुछ मिठाई ले जाता हूँ, उन बच्चों को मेरा गाया गीत सुनना अच्छा लगता है, उन्हें गाने सुनाता हूँ, किशोरदा के गाने, और ये सब चक्कर में मेरा दुख दर्द मुझसे किनारा कर लेते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ईश्वर करे विविध भारती श्रोता परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन में सदैव खुशियां ही खुशियां रहे, दुख भरे दिन कभी ना आए, ऐसी कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दुख और सुख बने ही रहते हैं जीवन में, ऐसा भी हम कहना चाहते हैं। आप ये जरूर कह सकते हैं कि आप सभी के साथ से हमारे जो भी दुख है दर्द है वो सब हम से दूर हो जाते हैं। वहीं मेरे साथी कह रहे हैं कि श्रोतागण आज के गीत बहुत ही अच्छे हैं, मैं बहुत बार दुखी होती हूँ तो दर्द भरे गीत सुनती हूँ, अगर कुछ खुशी हो तो खुशी वाले गीत सुनती हूँ, बचपन से ही विविध भारती सुनने आई हूँ। वहीं मेरे साथी कह रहे हैं कि कुछ पल के लिए दुखी होता हूँ फिर सोचता हूँ कि मेरे दुख से होने से किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या दुनिया बदल जाएगी। भाई इस सोच की बजाय आप ये सोच सकते हैं कि ज्यादा देर दुखी रहने से मुझे क्या फायदा होगा, क्या मैं इससे बदल सकता हूँ दुखी रहकर, तो बिल्कुल भी नहीं। फिर आपको एक हौसला मिलेगा कि आपको आगे बढ़ना है और खुद के इस दुख को दूर करना है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं दुख से संबंधित बात कहते हुए कि कई दुख मैंने झेले हैं, अब तक जीवन में उन दुखों को मैं सहन भी कर लेता हूं, परंतु जब मैं किसी अपने को या रिश्तेदार को या मिलने वाले को संसार से परलोक के लिए बिछड़ते देखता हूं तो ये दुख मेरे लिए असहनीय हो जाता है, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाता, फिर भी परमपिता परमेश्वर की इच्छा मानकर दुख सहते हुए अपने आप को शांत करना ही पड़ता है। वहीं हमारे एक साथी ने अंग्रेजी में कमेंट किया है जिन्हें हम हिंदी में सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुख दर्द ये सब जो भी हैं वो अनुभव हैं, एक ऐसे अनुभव हैं जो हमारे खुशी और आनंद के पलों को और ज्यादा अच्छा कर देते हैं और ज्यादा मीठा बना देते हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि सुख और दुख रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव, और आगे उन्होंने लिखा जीवन चक्र में कोई चीज शाश्वत नहीं है, बंद मुट्ठी आए थे खुले हाथ जाना है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, मैं आज राजकोट आया हूँ, पल दो पल समय मिला तो लिख लिया, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि खुश इंसान कहीं नहीं रह सकता, अगर वो दिन भर खुश रहने के नए नए तरीके खोज ले तो खुश रह सकता है, जैसा कि विविध भारती पर गीत सुनकर और ऐसी कई चीजों में आप खुश रहने का तरीका खोज सकते हैं। तो भाई देखिए, पहले आपने ही कहा कि खुश रहने के चाहे तो कहीं खुश नहीं रह सकता, फिर आपने ही तरीका बताया कि किस तरह से खुश रह सकते हैं, तो भाई खोजा जाए तो सारी चीजें संभव है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दर्द की आग में जलना ही होता है, जलना ही नहीं होता है, गम से आगे भी कोई रास्ता होता है, आंख छलके तो इस बहाने इसे बहने दो, मत रोको, बोझ सीने को का रोने से ही कम होता है, वक्त मरहम है हर एक जख्म का ये याद रखो, शब जितनी भी हो काली सवेरा होता है, अपने खुद को संभालो, जरा ठहरो, देखो हर अंधेरे के पीछे एक चिराग होता है। भाई क्या बेहतरीन बात आपने लिखी, और वाकई ऐसा होता है कि जब भी वक्त में ऐसा कभी भी ऐसा लगता है कि बहुत गम है तो वो दूर हो ही जाता है। वहीं हमारे साथी ने कहा कि जिंदगी में गम आए हैं खुशियां भी, मैंने बस इतना सीखा कि दुख को दिल पर बोझ बनाकर नहीं एक अनुभव बनाकर जीना चाहिए, और जब खुशी मिले तो उसे कल की चिंता में नहीं आज की मुस्कान में जी लेना चाहिए, हर दर्द हमें कुछ सिखाकर जाता है और हर खुशी एक खूबसूरत याद दी जाती है, इसलिए अब गम से शिकायत नहीं और खुशियों से कोई डर नहीं, जो पल मिला है उसे पूरे दिल से जी लेना चाहिए, शायद यही जिंदगी है, गम आए तो थोड़ा रो भी लें, खुशी आए तो खुलकर हंस भी लें, आखिर दोनों ही जिंदगी के रंग है, मेरा मानना है कि हर पल को स्वीकार करके मुस्कुराते रहना ही जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। भाई क्या ये खूबसूरत बातें आप लिखकर भेज रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा ही गीत आपको सुनवाए, वैसे आप में से बहुत से लोगों के लिस्ट में ये गीत शामिल है, बताइएगा किसने लिखा है।
1: तो दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को फिर

दोस्ती फिल्म का ये गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा और आपने बिल्कुल सही जवाब हमें दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि दुख का रोना रोकर लोगों की हमदर्दी हासिल करना कतई सही नहीं होता। ऐसे लोगों से समाज ऊब जाता है। जो लोग मेहनत से दुखों को जीत लेते हैं उन्हें समाज से मान सम्मान मिलता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा कोई दुख कभी नहीं हुआ जिसे मैं कुछ बयां करूं, छोटे मोटे दुख तो आते जाते ही रहते हैं। भाई क्या कहने आपके, ऐसा विचार मन में जब रहता है तो सारे दुखों से हम पार हो जाते हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि दुख दर्द से कौन नहीं वाकिफ है, सिक्के के दो पहलू की तरह गम और खुशी भी आते जाते रहते हैं। जो लोग एहसान फरामोश होते हैं उससे मुझे बहुत दुख पहुंचता है, हंसते हंसते जीना चाहिए। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन सुख दुख का संगम है, एक जाता है दूसरा आता है। मैंने कोशिश यही रहती है कि जीवन में संतुलन बनाकर जिया जाए, सही यही सीख मैं अपने बच्चों को भी देता हूं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जीवन में अगर संतुलन कोई बना लेता है तो उसके बाद दुख और सुख हो, चाहे कोई भी कैसा भी एक माहौल हो, कैसा भी भाव हो, हम संतुलित ढंग से रहते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से जीते हैं। वैसे हमने अपने साथियों के जो लिस्ट है उसमें एक गीत देखा था जिसका जिक्र तो अभी कोई कर ही नहीं रहा, लेकिन हम तो

देख चुके हैं वो लिस्ट में गीत और हमारी लिस्ट में भी शुरुआत से वो गीत शामिल था, तो क्यों ना वो गीत आपको सुनवाए, क्योंकि एक जश्न भरा गीत है वो। तो चलिए बताइएगा कि इस गीत में संगीत किसका है।

कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाती, लेकिन उन्होंने कमेंट किया है और वो कार्यक्रम सुन रही हैं, तो इसका मतलब कि वो इस कार्यक्रम में तो शामिल ही हैं। तो किसी न किसी तरह से आप हमारे कार्यक्रम में बिल्कुल शामिल रहते हैं। जिस तरह से शामिल कर रहे हैं हम कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, और आपको बताना है कि फिल्मी पर्दे पर किस पर फिल्माया जाता है, फिल्माया हुआ दिखाया गया है ये गीत।

कर्ज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत से सजा था। हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्हें दुख होता है जब वो

तो ये पल भी जाने वाला है। गोलमाल फिल्म के इस गीत में नायक अमोल पालेकर नजर आते हैं और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि कल विविध भारती के जश्न में आप सभी से मुलाकात होगी। फेसबुक पेज पर लाइव बने रहिएगा हमारे साथ। सुरीला सफर कार्यक्रम आज का बस यही समाप्त करते हैं।

कोश मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस हिंदी अनुवादक जयंत पात्रीकर प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक आज सुनिए इस श्रृंखला की 48वीं कड़ी।

संविधान समिति के समक्ष नए सिरे से प्रदर्शन के समय मास्टर कृष्ण राव ने वंदे मातरम की अलग अलग प्रकार से धुन रिकॉर्ड की थी। मार्चिंग सॉन्ग, ध्वजारोहण, ध्वज वंदन, ध्वज अवरोहण के समय राष्ट्रगीत के रूप में बजाने के लिए कुछ निश्चित सेकंड की ध्वनि रिकॉर्डिंग पाश्चात्य पद्धति से रिकॉर्ड की थी, लेकिन उसी के साथ झिंझोटी राग की मूल संगीत रचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया था। संसद में मास्टर कृष्ण राव ने ये ध्वनि रिकॉर्डिंग और प्रत्यक्ष अपने गायन से वंदे मातरम के प्रदर्शन

0: प्रदर्शन अत्यंत प्रभावी हुए। अधिकांश संसद सदस्यों को ये संगीत रचना और वंदे मातरम का राष्ट्रगीत के रूप में स्थान स्वीकार्य था, परंतु दुर्भाग्य का आघात एक बार फिर यहाँ वंदे मातरम पर हुआ। प्रदर्शन प्रस्तुत होने के बाद पंडित नेहरू ने मास्टर की प्रशंसा की। वंदे मातरम को हम राष्ट्रगीत के समान स्थान देंगे, ऐसा भी कहा। 24 जनवरी 1950 की संविधान समिति की बैठक में कोई मतदान न होते हुए उस पर की चर्चा को टालकर संविधान समिति के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने जन गण मन को राष्ट्रगीत का स्थान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के समान दर्जा दिए जाने की घोषणा की। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा वक्तव्य दिया।
1: जन गण मन इन शब्दों से बना गीत और संगीत भारत का राष्ट्रगीत है। इस गीत के शब्दों में सरकार को समय पड़ने पर आवश्यक बदलाव करने का अधिकार रहेगा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर का सम्मान दिया जाएगा और उसकी प्रतिष्ठा वैसी ही रहेगी। मुझे लगता है इससे सदस्यों को संतोष होगा। इस वक्तव्य के कारण जनगण मन को नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगीत और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी गई। मास्टर कृष्ण राव कुछ निराशा के साथ पुणे लौटे, पर उस निराशा में भी इस बात का संतोष था कि वंदे मातरम को नजरअंदाज नहीं किया गया। मास्टर कृष्ण राव का वंदे मातरम का अभियान वहीं समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद भी विभिन्न सभा समारोहों में वे वंदे मातरम गाते रहे। शास्त्रीय संगीत की महफिल का समापन करते समय भी वे आग्रहपूर्वक वंदे मातरम का गायन करते थे। 1952 में चीन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से गए कलाकारों में मास्टर कृष्ण राव, ज्योत्सना भोए, हीराबाई बड़ोदेकर जैसे नामी कलाकार थे। पेकिंग यानी आज के बीजिंग में हुए कार्यक्रम के अंत में इन सभी कलाकारों ने वंदे मातरम का गायन किया था। मास्टर कृष्ण राव के बाद

0: मास्टर कृष्णराव की तरह वीडी अंबेकर ने भी वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाने के लिए प्रयास जारी रखे थे। नागपुर के वीडी अंबेकर संगीत विशेषज्ञ तो थे ही, पर स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। 1927 में गो बैक साइमन के नारे लगाने पर लाठीचार्ज झेला। 42 के आंदोलन में भी उन्होंने भेष बदलकर गुप्त पत्रिकाएं बांटने का काम किया। प्रभात फेरियों में शामिल हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, नची केलकर, साने गुरुजी, भाई परमानंद जैसे कई लोगों के सामने उन्होंने अपनी खंबावती राग में की गई रचना सुनाई थी। केंद्रीय प्रसारण मंत्री काका साहेब गाड़गिल ने अंबेकर को दिल्ली बुलाया और संविधान समिति के सामने प्रस्तुति का अवसर दिया। मुख्य सचेतक सत्यनारायण सिंह, पीसी रे, पट्टा भी सीतारामैया, आचार्य कृपलानी और संविधान समिति की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर उपस्थित थे। नमूने के तौर पर बनाई गई अलग अलग अवसरों पर बजाने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई ध्वनि रिकॉर्डिंग बजाकर दिखाई गई। उस पर डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर अपनी जगह से खड़े होकर बोले,
1: I will be the first man to purchase the record if you sing it in the same tune which you have sung just now. Very impressive.
0: आगे यही मिश्र खंबावती राग की रचना वरिष्ठ गायिका गान तपस्विनी मोगुबाई कुर्डिकर की आवाज में रिकॉर्ड की गई। मोगुबाई की आवाज में ये राष्ट्रगीत की गंभीरता को बनाए रखने वाली सुंदर रचना है।

0: दिलीप कुमार रॉय, वीडी अंभईकर, मास्टर कृष्ण राव के संगीतमय प्रयासों से वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के समान दर्जा मिलने में निश्चित रूप से मदद हुई। वंदे मातरम ने जैसे राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इतिहास रचा, वैसा ही इतिहास इस गीत की संगीत यात्रा का भी है।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे।

वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 48वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रेकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रेकर और मंदाकिनी जोशी। वंदे मातरम की दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स मिलिंद सबनीस जी के संग्रह से साभार। तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मौसम विज्ञान ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कमजोर पड़ने की संभावना। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाई ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 12 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या बढ़कर 72 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बातचीत के दौरान भावुक कैप्टन स्मिथ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का फोन आने पर अपनी खुशी और गर्व का अनुभव किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस के विदेश, व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिये के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ बैठक में श्री गोयल ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत की प्रगति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अनुपम मिश्र।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति

0: के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर भी मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने विजयघाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किये। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई अन्य मंत्रियों, सांसदों तथा विद्यार्थियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12-13 वर्षों में खादी ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं।
1: खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आज खादी के देश भर में फैशन शो हो रहे हैं। युवा मोदी जैकेट पहन रहा है, मोदी कुर्ता पहन रहा है। युवा हमारी खादी की कॉस्मेटिक खरीद रहा है, खादी के ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद रहा है। खादी की कुर्ती हो, जैकेट हो, वो उत्पाद जो कभी गांव गलियों से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना जलवा पूरे देश में बिखेर रही है। पिछले 12-13 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी कई गुना बढ़ी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज थिरू के कामराज की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि थिरू के कामराज ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा और आम जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको अटल सुरंग के माध्यम से इस दृष्टि को साकार रूप देने का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
2: विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे के नीचे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निर्मित अटल टनल आधुनिक इंजीनियरिंग और सीमा सड़क संगठन की तकनीकी क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण

0: उदाहरण है। देश की महत्वपूर्ण आधारभूत और सामरिक परियोजनाओं में शामिल अटल टनल, जहां प्रदेश के कुल्लू व जनजातीय जिला लाहौल स्पीति को वर्ष भर हर मौसम में जोड़े रखती है, वहीं आज हिमाचल प्रदेश के विकास, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 9 किलोमीटर से अधिक लंबी अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था। इस पर करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। अटल टनल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव आया है। लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलांग निवासी सोनम जांगपो ने बताया कि अटल टनल स्थानीय लोगों के लिए परिवहन, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इस ऐतिहासिक सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
1: अटल टनल जो खुलने से पहले हमें रोहतांग टॉप होके कुल्लू मनाली जाना पड़ता था, जिससे हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे ही टनल खुला, उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं भी हम इजिली, इमरजेंसी कभी भी कुछ भी रहता है, हम इमीडिएट 1-2 घंटे के अंदर कुल्लू पहुंच जाते हैं। हमारे जो फसलें हैं, जो किसान बागवान भाई है, उन सभी के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: अटल टनल रोहतांग के बनने से जहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं इसके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों, खासतौर पर लेह लद्दाख के लिए वर्ष भर आवागमन और अधिक सुगम हो गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में पंजाब के हॉकी ओलंपियन राजेंद्र सिंह सीनियर के प्रयासों की सराहना की थी। एक रिपोर्ट।
3: ओलंपियन राजेंद्र सिंह 1980 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जिसे इंडिया ने राजेंद्र सिंह द्वारा 3 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान से जीता था और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वह 1990 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई से जुड़े और अपना कोचिंग करियर शुरू किया। उनके समय में सब जूनियर और जूनियर हॉकी टीमों ने कई नेशनल अवार्ड जीते। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि राउंड ग्लास अकादमी पंजाब में 60 हॉकी अकादमियां चला रही है, जिसमें 6 से 8 साल की उम्र के लड़कियों समेत 3,000 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेल की बारीकियां सीख रहे हैं।
4: मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मन की बात में मेरा जिक्र किया और मुझे मेरे काम की सराहना की। मैं पिछले 5 वर्षों से राउंड ग्लास स्पोर्ट्स अकेडमी के साथ युवाओं को हॉकी को आगे ले जाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरणादायी शब्द सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और साथी कोचेस ओलंपियन को भी प्रेरणा दें।
3: उन्होंने भारत के लिए मजबूत हॉकी टीम बनाने के लिए काबिलियत वाले युवाओं को कोचिंग देते रहने का भरोसा दिया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाउ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। हालांकि पुरुष रिकर्व टीम को फाइनल में दक्षिण कोरिया से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों की सेपक टकरा के सेमीफाइनल में भारत को जापान से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत पदक तालिका में 72 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है।
2: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे कमर जलाल आबादी के बोल। हावड़ा ब्रिज फिल्म के इस गीत को संगीत से सजाया ओपी नैयर ने।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्य। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
0: विविध भारती।

0: मुकेश की आवाज में आशिक फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की तर्ज बोल शैलेंद्र के। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।
1: तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल से

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में माया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द, सलील चौधरी का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प।

0: छोटी सी
1: किशोर कुमार को आप सुन रहे थे रंगोली फिल्म के इस गीत में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: छोटे नवाब फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, राहुल देव बर्मन का संगीत, शैलेंद्र के बोल।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: प्रोफेसर फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में हमराही फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को चंचल वर्मा का नमस्कार। सखियों, बड़ी शिद्दत से जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और लगातार प्रयत्न करते हैं तो कई बार हमें कामयाबी मिलती है, लेकिन कभी कभार हम थोड़े निराश भी हो जाते हैं। लेकिन हमारी हर कोशिश हमें सबक जरूर देती है कि हमें हारना नहीं है, बल्कि इन कोशिशों को जारी रखना है। कामयाबी तो तभी मिलेगी। तो आज भी हमारी सखियां अपने दिल की बात हमसे कहना चाहती हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि उनका कॉल लग जाए। देखते हैं सबसे पहले किस सखी का कॉल हमारे कार्यक्रम में जुड़ गया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सखी हमसे जुड़ी है इस समय फोन कॉल पर।
1: मोहिनी बैगा बात कर रही हूँ।
0: मोहिनी जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं तो प्रदेश शहडोल से लगाई हूँ।
0: शहडोल से
1: जी, बहुत सालों के बाद कॉल लगा है मैम। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती से बात हो रही है।
0: जी, बहुत सी सखियां हैं जो इस समय कोशिश करती रहती हैं कि उनका कॉल लग जाए, लेकिन इतनी सारी सखियां क्योंकि एक साथ में कोशिश कर रही होती हैं तो लाइनें व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन हमें भी इस बात की खुशी है कि आज आपका कॉल कनेक्ट हुआ है। बताइए, अपने बारे में कुछ बताना चाहती हैं हमें?
1: कि नहीं मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ, घर के काम करती हूँ। मध्य प्रदेश में बहुत सारा देखने के लिए चीज है।
0: आपके घर में और कौन कौन है?
1: मम्मी पापा है, भाई बहन है।
0: बताइए, विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली, हेलो फरमाइश, मन चाहे गीत और उजाले उनकी यादों की और आज की मेहमान
0: जी,
1: बहुत सारे कार्यक्रम है जो मैं पसंद करती हूँ।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुस्कान फिल्म का गाना सुनना है, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन ही गुजरता रात नहीं होती।
0: तो मोहिनी जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत जो है मुस्कान फिल्म से। आनंद लीजिए इस गीत का।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सखी, बताइए आप कहाँ से बोल रही हैं और क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम निर्मला गिरी है। हम मयूरभंज उड़ीसा बारीपदा से बोल रहे हैं।
0: अपने बारे में कुछ बताइए निर्मला जी, आप क्या करती हैं?
1: हम तो हाउस वाइफ हैं, लेकिन कभी कभी सिलाई का मशीन है, सिलाई कर लेते हैं। पति है जो लाइन का कंट्रैक्टरी करते हैं,
0: जी
1: और एक बच्ची है 8 क्लास में, CBSE में पढ़ती है 8 क्लास।
0: जी
1: लेकिन हमारा एक दोस्त है राउरकेला शक्ति नगर में,
0: जी
1: तो उसको हम बहुत याद करते हैं, लेकिन उसका नंबर नंबर कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन हम हर वक्त उसको याद करते हैं। वो रेडियो सुनना वो सहेली ने मुझे सिखाया। तब उसका घर हम जाते थे, माना
0: जी
1: कि हमसे वो सीनियर था, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़ते थे, वो दोस्ती थी। वो हमको रेडियो सुनना सिखाया, और हेलो सहेली सब कुछ सिखाया। उसको हम बहुत याद करते हैं, लेकिन उसका नंबर नंबर कुछ नहीं है। हमारा एक ही सपना था कि वो भी रेडियो सुनती है, उसके पास वो मेरा याद पहुंचाना था। तो उसको हम बहुत याद करते हैं, लेकिन उसके नाम से गीत सिर्फ तुमका एक मुलाकात जरूरी है सोनम, उसको सुनाना।
0: निर्मला जी, आप बहुत भावुक हो रही हैं अपनी दोस्त को याद करके, और उन्होंने ही आपको रेडियो सुनना सिखाया, आपको बताया सुनने हैं कौन कौन से कार्यक्रम, तो वो भी जरूर आपका कार्यक्रम सुन रही होंगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अगर आपकी आवाज वो सुनेंगी तो वो आपको जरूर संपर्क करने की कोशिश करेंगी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको आपकी दोस्त जिसे आप बहुत याद करती हैं, तहे दिल से याद कर रही हैं, वो आपको मिल जाए। और आज जो गीत आप सुनना चाहती हैं, ये भी आपने समर्पित किया है अपनी उसी दोस्त के नाम।
1: हाँ जी,
0: आपको सुनवाते हैं सिर्फ तुम फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत जो आपने समर्पित किया है अपनी दोस्त को।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
1: ग्राम कल्याणी घर से कामिनी पटेल।
0: कामिनी पटेल बात कर रही हैं
1: जी मैम।

0: अपने बारे में कुछ बताइए।
1: सुनाई मुझे नहीं करती हूँ, वो सखी सहेली कार्यक्रम सुनती है
0: जी। आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं कामिनी जी?
1: मैम जी, ऊर्जा काले कावा।
0: गदर फिल्म का गाना आपको सुनना है, ऊर्जा काले कावा
1: जी।
0: आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर सखियों का मनपसंद कार्यक्रम हेलो सहेली और शुरू करते हैं सखियों के फोन कॉल का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ जुड़ी है हम जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइए और आपने कहाँ से कॉल किया है ये भी बताइए।
1: जी मेरा नाम रूही है, मैंने पंजाब से फोन किया है।
0: पंजाब के कौन से शहर में आप रहती हैं रूही जी?
1: जी मैं मोहाली में रहती हूँ।
0: मोहाली के बारे में कुछ बताइए, कैसा शहर है?
1: जी बहुत अच्छा शहर है पंजाब का है
0: जी।
1: चंडीगढ़ के पास लगता है।
0: और चंडीगढ़ के आसपास जो भी शहर हैं वहाँ पंजाब में तो वैसे भी ठंड बहुत पड़ती है और अब मौसम में जब बदलाव आने की शुरुआत हो रही है तो बताएं
1: जी
0: क्या ठंड
1: हाँ
0: पड़ने की शुरुआत हो रही है अभी?
1: हाँ जी जी मौसम एक दो दिनों में ही बदला है, बहुत अच्छा हो गया है, ना
0: जी।
1: गर्मी ना सर्दी।
0: तो अभी ये जो गुलाबी सी ठंडक आने लगी है ये बड़ा
1: जी
0: खुशगवार मौसम हो रहा है वहाँ का।
1: जी मैम हाँ जी
0: और आप क्या करती हैं रूही जी?
1: जी मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और अभी फ्री पीरियड है।
0: अच्छा, तो फ्री पीरियड है इसलिए आपको मौका मिल गया कि आपने
1: हाँ
0: हमसे,
1: मौका मिल गया और आज मैंने पहली बार ही ट्राई किया है और मेरा फोन लग गया।
0: ये तो बहुत ही बड़ी खुशनसीबी की बात है। कई सखियां
1: जी
0: बहुत समय तक इंतजार करती रहती हैं और क्योंकि
1: बिल्कुल
0: लाइनें व्यस्त होती हैं तो उनका फोन नहीं लग पाता,
1: बिल्कुल
0: तो आपको
1: जी
0: इसके लिए हम बधाई देना चाहेंगे कि पहले प्रयास में ही आपका कॉल लग गया है।
1: हाँ जी शुक्रिया जी। मैं
0: और
1: तो बहुत फैन हूँ जी विविध भारती की, बचपन से ही,
0: जी,
1: जब हम पढ़ते थे और आज हम पढ़ाने लग गए हैं तब से ही।
0: तो पढ़ते समय भी और आज पढ़ाते समय भी रेडियो
1: बिल्कुल
0: का
1: जी
0: साथ
1: पढ़ते
0: बना हुआ
1: समय
0: है।
1: जी प्रैक्टिकल फाइल बनाते थे तब तक मेरे मम्मी जागते थे और ये हवा महल छाया गीत तो मेरे मोस्ट फेवरेट थे उस टाइम भी
0: और आज कौन से कार्यक्रम हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करती हैं?
1: जी। तो यही और रोज सुरीला सफर चला सुन नहीं पाते स्कूल के टाइम में, बट सखी
0: जी,
1: सहेली घर पहुंचते ही सुन लेती हूँ।
0: तो जिस दिन छुट्टी होती है स्कूल की उस दिन आप सुरीला सफर भी सुन लेती होंगी?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। और यहाँ भी जाकर रेस्ट हो फिर तो हम सुन ही लेते हैं, आधा प्रोग्राम तो सुन ही लेते हैं।
0: तो जब स्कूल में आप होती हैं तो मोबाइल पर सुनती हैं?
1: जी जी बिल्कुल, अभी भी मोबाइल पे ही सुनती हूँ।
0: आप कितने समय से स्कूल में पढ़ाने का काम कर रही हैं?
1: हो गए 10 साल तो हो ही गए
0: तो पढ़ाना कैसा लगता है आपको?
1: जी, मुश्किल ही है। इंटरेस्टिंग भी है, मुश्किल ही है।
0: बिल्कुल। और अपने इंटरेस्ट का अगर हम कोई काम करते हैं तो कितना भी मुश्किल हो उसमें मजा जरूर आता है।
1: जी मजा जरूर आता है, बच्चों में जी लग जाता है।
0: और बच्चे भी कई बार अपनी बातों से हमें कुछ ना कुछ सिखा देते हैं
1: जी मेरे
0: चीज।
1: मम्मी आपके बहुत फैन हैं, बचपन से सुनते आए हैं, उन्हीं
0: जी
1: की बदौलत ही हम ये विविध भारती सुन सुन के बड़े हुए हैं।
0: जी और स्कूल में जब हम पढ़ाते हैं तो एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा सीखने को मिलती है वो होता है धैर्य।
1: जी
0: छोटे बच्चों को पढ़ाते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है।
1: जी बिल्कुल
0: तो रूही जी बताइए आज कौन सा गीत आपको सुनवाएं?
1: जी। आप लता जी का सुना दीजिए, मिला है किसी का झुमका, परख फिल्म से।
0: परख फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, मिला है किसी का झुमका।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो
0: नमस्ते।
1: दीदी। जिला सागर एमपी मध्य प्रदेश ग्राम कनेरा निखर से सुलोचना कुर्मी बात कर रही हूँ दीदी।
0: सुलोचना जी,
1: जी दीदी, पहली बार कॉल लगा तो दीदी बहुत खुशी हो रही है। दीदी हमारे यहाँ से बहुत सी सखिया कॉल करती है दीदी। क्या
0: जितनी खुशी
1: दीदी?
0: आपको है उतनी खुशी हमें भी है। तो बताइए सुलोचना जी, आप क्या करती हैं?
1: दीदी घर पे रहते हैं दीदी, घर का काम करते हैं दीदी। मम्मी पापा हैं हमारे, तो वो दीदी खेती किसानी करते हैं, हम तो दीदी घर में काम करते हैं। जितना भी बनता है अपने मम्मी पापा का साथ देते हैं दीदी। पढ़ाई तो हमने नहीं कर पाई दीदी ज्यादा ज्यादा। आज दीदी 10वीं तक हमने पढ़ाई की, उसके बाद क्या हुआ दीदी, हमारे साथ एक मतलब यहाँ पंडापुरा में पढ़ते थे दीदी हम सागर में।
0: जी
1: तो दीदी हमारी 1 साल जो तबीयत डाउन हुई थी, तो फिर दीदी हमारे पापा मम्मी ने फिर भेजा ही नहीं दीदी स्कूल।
0: तो इसके अलावा अगर आप चाहती हैं तो घर पर रहकर भी पत्राचार माध्यम से आप अपनी परीक्षाएं दे सकती हैं और अपनी शिक्षा
1: जी
0: पूरी कर सकती हैं। अभी तो ऐसे
1: हाँ
0: बहुत
1: जी
0: सारे माध्यम हैं जिसमें स्कूल और कॉलेज जाए बिना आप शिक्षा अपनी पूरी कर सकती हैं।
1: जी दीदी करेंगे दीदी, अगर बनेगा प्रयास तो प्रयास तो करेंगे दीदी हम।
0: जी, और आपके क्या क्या शौक हैं सुलोचना?
1: दीदी जी हमें रेडियो सुनने का बहुत शौक है दीदी। बचपन में हमारे मम्मी पापा सुनते थे, जब आपके गए यहाँ से वो कार्यक्रम आता था दीदी, एक वो सुनती थी बहुत SMS की बहाने भी किया इसके तरह ने 12 बजे आता था वो,
0: हाँ
1: तो दीदी वो सुनते थे। वो दीदी सती सहेली तो हमारी हमारे गांव पे हमारी मम्मी और बहुत सी सखियां मतलब साथ में बैठ के सुनती है दीदी।
0: अच्छा, तो सुलोचना जी, आपको गानों के कार्यक्रम ज्यादा पसंद आते हैं या किसी और तरह के एक प्रोग्राम सुनती हैं?
1: दीदी हमें तो सखियों की बातें अच्छी लगती है, गाना तो लगती है दीदी। जैसे ये हेलो सहेली है, सखी सहेलियों में जो आप लोग दो दीदी आती है वो अच्छी अच्छी बातें बताती है पकवान के बारे में, कैसे बना कुछ भी मतलब ये जानकारी देती है आप लोग।
0: आप सिर्फ सुनती हैं या कुछ बनाती भी हैं उन पकवानों में से?
1: दीदी बनाते भी है दीदी, हम बना लेते हैं
0: जी अच्छा, अब बताइए कि आज गाना कौन सा सुनवा दें आपको?
1: दीदी। मूवी का नाम है वीरजारा
0: जी
1: और गाने के बोल है ऐसा देश है मेरा।
0: जी आपको सुनवाते हैं वीर ज़ारा फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए आप कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे।
1: जी मैम, मैं पूनम बात कर रही हूँ कानपुर उत्तर प्रदेश से। मैम कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ पूनम जी, आप कैसी हैं।
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। आज आपसे बहुत समय बाद, और यूँ कहेंगे कि बहुत अरसे बाद बात हो रही है, और पहली बार बात हो रही है इस कार्यक्रम में।
0: तो इस कार्यक्रम में आज पहली बार आप बात कर रही हैं, बहुत अरसे बाद आपका फोन लगा है। इस बात की जितनी खुशी आपको होती है हमें भी उतनी ही खुशी होती है। अपने बारे में कुछ बताइए पूनम
1: जी मैम, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और चंचल मैम, मैंने आपको सुना है, विविध
0: जी।
1: भारती में, और बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति रहती है। और मैम, मैं ऑनलाइन जॉब करते हैं, और मेरा जॉब भी रहता है, और आप रेडियो से मैं जुड़ी रहती हूँ। गीत संगीत से बहुत ज्यादा मेरा जुड़ाव है
0: तो आज कौन सा
1: जी
0: गीत सुनना चाहती हैं पूनम जी।
1: मैम। आज की सुनाइएगा, तेरे चाहत के सिवा और कोई मेरी चाहत नहीं, ये गाना अनुराधा पौडवाल जी के बाद में सुनना है। और मैम, हेलो सहेली कार्यक्रम, हेलो फरमाइश और जय माला, और विविध भारती के सभी कार्यक्रम से मैं जुड़ी रहती हूँ, और मैं जरूर से सुनती हूँ, क्योंकि मुझे विविध भारती सुनना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो जब आप जैसे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है पूनम जी, और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और हम फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, बड़ी चहक है आपकी आवाज में, आप खुश हैं फोन लग गया तो आपका?
1: हाँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज चंचल जी से मेरी बात हो रही है, मेरी खुशकिस्मती है और शुक्रिया उस रॉक का भी जिसने मुझे आज मौका दिया आपसे बात करने का। मैं बहुत ज्यादा इस टाइम अपने आप में बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं सालों से ट्राई कर रही हूँ। मैं श्रीनगर कश्मीर से बोल रही हूँ, मेरा नाम है खालिदा। तो आज बहुत सालों से ट्राई कर रही थी इस प्रोग्राम में, तो शुक्रिया रॉक का भी।
0: तो खालिदा जी, आपका ये पहली बार कॉल लगा है आज?
1: जी पहली बार इस प्रोग्राम में कॉल लगा है।
0: और कश्मीर जहाँ से आपने कॉल किया है, ये वो शहर है जिसे जन्नत भी कहते हैं?
1: हाँ जन्नत भी कहते हैं और जन्नत है भी क्योंकि जो भी कश्मीर आता है चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी स्टेट से हो, इंडिया के किसी भी कोने से हो, तो जब भी कश्मीर को ही पहुंचता है यहाँ से जाने का फिर दिल और मन भी नहीं करता है।
0: और ये वो जगह है जहाँ हर समय पर्यटक आते जाते रहते हैं, तो बहुत चहल पहल रहती है यहाँ पर।
1: हाँ बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है और साथ साथ अगर सखी सहेली का संग हो और विविध भारती का संग हो तो फिर तो क्या ही बात है।
0: क्या बात है खालिदा जी, हमें भी ऐसे श्रोताओं का साथ बहुत अच्छा लगता है जो बड़ी शिद्दत से सभी प्रोग्रामों को सुनते भी हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। तो आप बताइए, आपके पसंद के कौन कौन से कार्यक्रम हैं?
1: विविध भारती पे जो आता है, आपकी फरमाइश आता है या जयमाला आता है, पिटारा आता है या सुबह फोन इन प्रोग्राम कुछ भी आए ना इसमें तो हम सब सुनते हैं। और जो भी ईमेल जैसे कभी कभी इसके प्रोग्राम आता है तो वो भी सब सुनते हैं। जयमाला सुनती हूँ, रोज में सुनती हूँ और जो सखी सहेली है भी इसका भी इंतजार करती हूँ और पिटारा में जो आपकी फरमाइश आता है वो भी सुनती हूँ।
0: अच्छा, ये तो हुई रेडियो सुनने की बात है, रेडियो सुनने के अलावा आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या है?
1: जी मैं टेलरिंग के साथ करती हूँ और यहाँ पे कश्मीर में ज्यादा कढ़ाई होती है। जो पश्मीने की शाल होते हैं ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है तो यहाँ पे वही ज्यादा काम होता है।
0: और वो कढ़ाइयाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं और उसके चाहे शॉल हो, चाहे हम सलवार सूट पहने, दुपट्टे पहने, सभी चीजें बहुत नायाब लगती हैं, तो वो कढ़ाई का काम करती हैं आप?
1: हाँ कढ़ाई भी करती हूँ और टेलरिंग के साथ भी थोड़ा सा करती हूँ लेकिन ज्यादातर यहाँ पे कढ़ाई भी होती है। तो यहाँ की जो लड़कियाँ है अगर पढ़े भी लेकिन कढ़ाई साथ साथ उनका शौक भी होता है और कमाई के लिए वो भी जरूरी है।
0: जी बिल्कुल, और इसीलिए इस काम की मांग बहुत ज्यादा है क्योंकि पर्यटक जब आते हैं तो कश्मीरी कढ़ाई के कपड़े खरीदना पसंद करते हैं, तो इसीलिए बाजारों में भी उसकी मांग बहुत ज्यादा रहती है। आपकी बातें भी उतनी ही खूबसूरत हैं। और बताइए कि आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हमें सुनना है मेरी जंग, इस मूवी का वो सॉन्ग है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
0: तो बहुत खूबसूरत गीत आपने पसंद किया है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए। कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: अभिलाषा यादव है मेरा नाम।
0: अभिलाषा जी, कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: मैं जयपुर से बात कर रही हूँ आपसे।
0: अपने शहर के बारे में और अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: तो मेरा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जयपुर राजस्थान से
0: जी
1: है। मैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करती हूँ मेडिकल डिपार्टमेंट में।
0: नर्सिंग ऑफिसर आप हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ी हैं, तो
1: जी
0: किस तरह का काम रहता है, अपने काम के बारे में बताइए हमें।
1: ऑल टाइम हमें 24 आवर्स की सर्विसेज होती हैं कि जब भी कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें जाना भी पड़ता है। पर अभी मैं 24/7 में केवल एक टाइम की ही ड्यूटी करती हूँ क्योंकि मेरी डिस्पेंसरी ड्यूटीज हैं अभी फिलहाल।
0: तो इसमें आपकी शिफ्ट ड्यूटीज होती हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक ही समय आपका नियत समय है, उसमें ही आप
1: हाँ जी
0: काम कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: फिर आप रेडियो सुनने के लिए भी समय निकाल पाती हैं।
1: बिल्कुल, मैं दोपहर में शाम को मेरा मन होता है उस अकॉर्डिंग मैं अपना शेड्यूल चेक कर लेती हूँ कि भाई कब मुझे क्या सुनना है, तो मैं सेट कर लेती हूँ उस अकॉर्डिंग अपना टाइम।
0: और नर्सिंग फील्ड से आप कब से जुड़ी हैं?
1: करीब 2007 से। हाँ
0: यानी कि करीब करीब 20 साल होने आए हैं आपको इस काम में,
1: जी हाँ
0: तो अच्छा खासा अनुभव है आपका, और जॉब ने आपको बहुत कुछ सीख भी दी होगी।
1: बिल्कुल, हमारा वर्क ही ऐसा है कि हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हर बार अलग तरीके का पेशेंट होता है, हर बार अलग तरह से केयर करनी होती है, तो
0: जी
1: बहुत सी चीजें नई चीजें भी सिखा के जाती है हमें। और हमारा जो प्रोफेशन है वो लर्निंग प्रोफेशन ही है।
0: जी ये सेवा भाव का काम है, और अगर आप सेवा भाव से करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं, तो जिन परिवारों के मरीजों की आप देखभाल करते हैं, वहां से आपको दुआएं भी बहुत
1: वो
0: मिलते
1: हमें बहुत,
0: होंगे।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें बहुत दुआएं देके जाते हैं जब वो बिल्कुल ठीक होके जाते हैं, क्योंकि वो हमें ऐसे समझते हैं जैसे डॉक्टर उनके लिए भगवान है। उसी तरह से हम जब उन्हें अपनी सर्विसेज देते हैं तो उनको यही फीलिंग आती है, वो खूब हमें ब्लेसिंग्स देके जाते
0: तो
1: हैं।
0: बड़ा अच्छा काम है आपका। और बताइए अभिलाषा जी, आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: आप हमें ताल मूवी से गाना है इश्क बिना क्या जीना है, और ये सुनवाएं।
0: तो ताल फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आपकी

0: हेलो सहेली।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्ते, बताइए हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर कौन सी सखी जुड़ी है?
1: जी मैम, रिंकू देवी बात कर रही हूँ। मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील ठाठी गांव कंठी से।
0: तो आपके बहुत खूबसूरत शहर से आपने फोन किया है। अपने शहर के बारे में बताइए और अपने बारे में भी कुछ बताइए।
1: पहाड़ी एरिया है यहाँ पर, तो मतलब गर्मियों में भी बड़ा अच्छा मौसम रहता है और यहाँ पर लोग आते हैं मतलब घूमने के लिए, क्योंकि अच्छा इलाका है यहाँ का और यहाँ पर मतलब की गर्मी कम लगती है।
0: गर्मी का तो एहसास होता ही नहीं है पहाड़ी क्षेत्रों में। और
1: जी
0: अब
1: बिल्कुल
0: जो
1: मैम।
0: मौसम आने वाला है वो तो बर्फबारी का और बहुत कड़ाके की ठंड का मौसम आने वाला है।
1: जी बिल्कुल मैम, अब तो थोड़ी थोड़ी सर्दी आने लगी है, सुबह शाम थोड़ी सर्दी लगती है इधर।
0: तो रिंकू जी आप क्या करती हैं?
1: जी मैम मैं घर का ही काम करती हूँ।
0: घर के कामों में भी आपकी पसंद का काम कौन सा होता है?
1: जी मैम मुझे तो सबसे ज्यादा मतलब कैसे घर में मैं किचन में काम करना मुझे अच्छा लगता है।

0: तो बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम गाना मैंने दोस्ती फिल्म का सुनना है, राई मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। और ये सभी को ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ, मतलब सभी अपनी सहेलियों को बहुत शुभकामना, और आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं।
0: तो आपकी जो सभी सहेलियां हैं उनको भी हम ये गाना सुनवाते हैं और हमारे सभी सुनने वाले इस गीत को पसंद करेंगे। सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सखी, कौन बात कर रही हैं?
1: मैं आशा चौहान बोल रही हूँ, गुजरात राजकोट से।
0: गुजरात राजकोट से। तो आस्था जी, अब जो मौसम आने वाला है वो गरबे का मौसम है। आज से बस 9-10 दिन बाद गरबा शुरू हो जाएगा और गुजरात में तो बहुत धूम रहती है, तो
1: बिल्कुल।
0: आपको गरबा करना अच्छा लगता है?
1: नहीं, मुझे देखना अच्छा लगता है।
0: तो
1: मैं हमेशा से डांस पर्सन नहीं रही हूँ,
0: जी
1: मैं स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ।
0: जी
1: मैं साहित्य पसंद किया है मैंने हमेशा, और मैंने कविताएं भी लिखती हूँ, और मुझे डांस देखना अच्छा लगता है, कल्चरल प्रोग्राम। और मैं भारत के हर कल्चर को बहुत पसंद करती हूँ, और मुझे भारत के अंदर ही घूमना पसंद है, सारे स्टेट्स के कल्चरल एक्टिविटीज देखना, वहाँ का खाना खाना, वहाँ के नज़ारे देखना, और बस साहित्य से जुड़ी हूँ इसलिए कुदरत को देखना अच्छा लगता है ज्यादा।
0: और ये जो देश प्रेम का भाव है आपके अंदर, ये बहुत सुंदर है। तो आपने बताया कि आप साहित्य से जुड़ी हैं, आप लिखती भी हैं। अपनी लिखी कोई कुछ पंक्तियां आपको अगर याद हैं, कोई कविता याद है तो हमारे साथ साझा करना चाहिए।

0: हेंगी?
1: हाँ जरूर, मैंने दो कविताएं चुनकर रखी है। जब मैंने सोचा फोन लग जाएगा तो मैं आपको सुनाऊंगी। एक कविता है हम हिंदुस्तानी, उसका नाम रखा है मैंने,
0: जी
1: और वो कविता इस तरह से है, शहर को गांव बना दो। क्योंकि आजकल शहर बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी कुदरत को लेकर आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग और सब, तो उसके ऊपर कविता लिखिए। शहर को गांव बना दो, पेड़ों की बौछार लगा दो, पानी की फुहार बहा दो, शहर को गांव बना दो, खेती की हरियाली बिछा दो, चिड़िया का अंबार लगा दो, मौसम का हाल बता दो, बाइक नहीं साइकिल चला दो, शहर को गांव बना दो। मैं इसके बाद ये बोलना चाहती हूँ कि मैं खुद साइकिल चलाती हूँ, 55 ईयर्स की उम्र है मेरी।
0: और साइकिल चलाने से एक फायदा तो ये है कि प्रदूषण जो है वो कम हो जाता है और आपकी सेहत है वो भी बरकरार रहती है। और जैसा अभी आपने कविता सुनाई कि शहरों को गांव बना दो, तो वाकई अगर ऐसा हो सके तो जो खुशहाली है वो फिर से लौट आएगी और जो प्रदूषण है वो बहुत हद तक कम हो सकेगा।
1: बिल्कुल, लेकिन 80% लोग जो नहीं सोच पाते या सोचते नहीं है, क्योंकि ज्ञान की कमी है और शिक्षा की कमी है थोड़ी सी, उनको भी सोचने की जरूरत है। तो इस दुनिया में कुछ भी खराब नहीं होगा हम अगर सब समझ जाएंगे।
0: और आप जैसे जागरूक लोग जब तक हैं तो एक ही इंसान आगे और चार लोगों को जागरूक कर सकता है। और आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी। हम चाहेंगे कि आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाएं, तो बताइए आपकी पसंद क्या है।
1: मेरी पसंद का जीवन मृत्यु पिक्चर का कोई भी गाना आप सुना दीजिएगा, झिलमिल सितारों वाला सुना दीजिएगा। मेरी दूसरी कविता जो मैंने निकाल रखी थी उसकी भी चार पंक्तियां सुना देना चाहती हूँ आपको।
0: जरूर सुनाइए।
1: धरा के हम सफर, उस कविता का नाम है, रखा है मैंने, समंदर को के मोती चुरा कर सीप बना दो। इंसान कुछ भी कर सकता है, सीप में से मोती निकलती है, लेकिन मोती में से भी सीप बना सकते हैं इंसान। ज्वेलर है वो बना सकते हैं, इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव करे कुदरत के लिए और इंसानियत के लिए और पशु पक्षियों के लिए भी, नेगेटिव ना करे। समंदर के मोती चुरा कर सीप बना दूं, कर्म क्षेत्र की राही हूँ मैं दीप बना दूं, उद्वेग मन के मीत बना दूं, हार नहीं जीत बना दूं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर आपने अपनी कविताएं सुनाई हैं। आपकी पंक्तियां, आपकी लेखनी बहुत खूबसूरत है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं, तो बस अच्छी अच्छी कविताएं लिखती रहिए और इसी तरह से रेडियो के माध्यम से इन्हें साझा करती रहिए। और आपको सुनवा रहे हैं जीवन मृत्यु, इस फिल्म का गीत जो आपने सुनना चाहा है।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और हर बार जब ये कार्यक्रम होता है तो कुछ नई सखियां हमारे साथ जुड़ती हैं और कुछ ऐसी सखियां जो हर थोड़े अंतराल पर हमें कॉल करती रहती हैं। तो जिन सखियों का कॉल आज भी नहीं लगा वे निराश ना हो, हो सकता है अगली बार आपका कॉल लग जाए, इसलिए कोशिश जरूर कीजिएगा। जिन सखियों ने हमसे बात की हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें ताकि नई सखियों को भी कॉल करने का मौका मिल सके। और हमारे पुरुष श्रोता, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार के दिन जब हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है उस समय वे कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 400-24662, एक अन्य नंबर है 28670288, मुंबई का SED कोड है 022। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662। दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 28670288, मुंबई का SED कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। स्वर है ममता सिंह का।
2: आज अचानक ठंड बढ़ गई है, गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करते हुए लॉन में आ गई है। लॉन के किनारे किनारे की घास अभी भी गीली है। क्यारियों में लगे फूलों और पौधों की पत्तियों पर ठहरी ओस की बूंदों पर पड़ती सूरज की किरणें मोती सी चमक रही हैं। धुएं जैसे उड़ते हुए बादल सूरज को ढक लेते हैं।

हैं। छिपा छिपी खेलती बदली और धूप उसे गुदगुदा रही है। मन भी धूप छाही हो रहा है। घास पर जैसे मोर पंख बिछ गए हों और उसकी आंखें जगर-मगर कर रही हों। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री एंटरटेनमेंट चैनल पर अप्रूव हो गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल जब मंच पर प्रणव सर

हर इंसान अपनी बेहद खुशनुमा बात किसी आत्मीय अपने घर वालों से शेयर करना चाहता है, लेकिन दिव्या अपनी खुशी का इजहार किससे करे? जब साइबर क्राइम जैसे विषय पर उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने की सलाह दी गई थी तो वो कितना घबराई थी। उफ, कितना खौफनाक विषय। एक बार तो उसने ना ही कर दिया था, लेकिन जब प्रणव सर ने उसे छोटी सी बाइट बनाने को कहा तो दोस्तों ने भी फोर्स किया तो उसने ये प्रोजेक्ट ले लिया, जबकि राइमा ने महिलाओं की सुरक्षा विषय पर बाइट बनाई थी। इरफान ने स्वच्छता अभियान को चुना। पूरी क्लास भर में साइबर क्राइम जैसे विषय पर दिव्या ने पायलट प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के दौरान दिव्या को कितनी दिक्कतें पेश आई थीं। क्राइम से जुड़े लोगों की पड़ताल करना, उनसे बातें करना, उन्हें कन्विंस्ड करना, फिर उन पर अपनी मनोवैज्ञानिक रिसर्च कर राय बनाकर लिखना। उफ, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। पुलिस स्टेशन जाकर चक्कर काटने पड़े थे। जब पहली बार पुलिस से इस संदर्भ में बातचीत करने की कोशिश की तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन दिव्या भी कहां हार मानने वाली थी। फ्रेंडशिप क्लब एडल्ट साइट पर जाकर

कर जूझती रही और अपना रिसर्च वर्क करती रही। अनगिनत कागज लिखे और फाड़े। एक बार तो उसे पुलिस वालों का विरोध भी सहना पड़ा। इस जद्दोजहद के बाद अपने दूसरे सब्जेक्ट की विधिवत पढ़ाई करना भी जारी रहा। आखिरकार दिव्या के अथक परिश्रम ने रंग लाया और पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ। उसके सपनों की किताब का पहला अध्याय लिखा गया और उसके नाम डॉक्यूमेंट्री

0: चाचे चिक चिक चिक चा सच हुए सपने तेरे।
1: शूटिंग में उसे बहुत सारी समस्याएं हुईं। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। शूटिंग के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट जब आते तो वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि कुछ ऐसा हो कि शूटिंग कैंसिल हो जाए, जबकि इस मुश्किल डॉक्यूमेंट्री को पूरा करने का उसने प्रण खुद ही किया था। सचमुच उसकी प्रार्थना सुन ली जाती, शूटिंग कैंसिल भी हो जाती। एसपी की शूटिंग के दौरान कुछ अलग तरह की समस्याएं होती, जैसे कि सवालों का चुनाव भी वो स्वयं ही करते थे। शुरुआती दिनों में तो मारे घबराहट और डर के रातों को नींद नहीं आती थी। मदद के लिए 5 टीचर्स का पैनल बना था, उसमें आपस में ही पॉलिटिक्स होती थी। हर टीचर खुद क्रेडिट लेना चाहता था। सही मायनों में तो प्रणव सर, जो उसके मेन गाइड हैं, उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या छोटा मोटा

बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कंपटीशन उसके लिए सजा थी। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन।

0: वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठकर कमरे में बंद हो गई थी। वॉल साइज विंडो पर लगे पर्दे झटके से खींचकर कमरे में अंधेरा कर एसी चलाकर चादर तान कर लेट गई थी।
1: 7 बजे यहाँ सूर्यास्त होता है, 8 बजे लोग दफ्तर से घर लौटकर शाम की चाय पीते हैं। ये कोई सोने का वक्त है। उठो दिव्या, दिव्या उठो।
0: कहते हुए पारो ने चादर खींचकर परे सरका दिया। वो सिराने बैठकर दिव्या को दुलराती हुई बोली,
1: भूख हड़ताल से तुम अपने मन की करवा लोगी।
0: दिव्या तमक कर उठ बैठी।
1: तो फिर तो क्या करूं मम्मी, क्या करूं कि मेरी डिमांड पूरी होगी? आखिर इस घर में जरा भी अपनी मर्जी के करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कॉलेज की 10 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं उस कैटवॉक शो में। मम्मा मैं अकेली नहीं हूं, उस शो में सिर्फ 1000 रुपए ही तो फीस है, आखिर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप लोग?
2: सवाल रुपए का नहीं है, ड्रेस का है, ड्रेस का। फैशन टीवी की नेकेड लड़कियों की तरह तुम भी पूरा बदन हिलाकर बिल्ली चाल चलोगी, हैं?
1: मम्मी बिल्ली चाल नहीं, कैटवॉक।
2: अरे तो कैटवॉक कर मिस वर्ल्ड मिस इंडिया बन जाओगी।
1: क्या कहेंगे हम लोग अपनी सोसाइटी वालों से?
0: सोसाइटी वाले अब दूर हो गए हैं ना, अब तो चौल की दुनिया से हम टावर में रहने आ गए हैं। अब भी सोसाइटी वालों का आखिर कैसा डर, कैसा खौफ?
1: मम्मी ये सिर्फ फैशन शो है, स्टेज पर कैटवॉक करना है।
2: अरे इस पर हमें प्राइज मिलेगा।
1: आजकल स्कूल कॉलेज में इस तरह के कॉम्पिटिशन होते रहते हैं।
0: पता है लास्ट ईयर रीना ने जीता था ये अवार्ड, उसे तो आप जानती है ना, कितनी अच्छी है रीना।
2: अरे बिटिया हमने हामी भर दी तो तेरे पापा नहीं मानेंगे। जैसे तैसे तेरे पापा को भी मना लिया ना, तो तेरे चाचा को खबर लग गई ना, तो वो पढ़ाई छुड़वा कर तेरी शादी करवा कर ही दम लेंगे। हाँ
1: अपने पापा को तो तू अच्छी तरह से जानती है ना, चाचा के खिलाफ एक को लफ्ज नहीं सुनते वो।
0: दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। ये ड्रेस मत पहनो, स्लीवलेस नहीं चलेगा, शॉर्ट्स मिनी स्कर्ट पहनना तो अलाउड ही नहीं था। सिर्फ कॉलेज जाते वक्त जीन्स और टॉप पहनने की बड़ी मुश्किल से इजाजत मिल सकी थी, लेकिन साथ में स्टॉल या दुपट्टा डालना जरूरी था। कॉलेज के शुरुआती दिनों में दिव्या घर से सलवार सूट पहनकर निकलती और रायमा के घर चेंज कर जीन्स टॉप पहनती और उसके बाद कॉलेज जाती। एक दिन चाची ने देख लिया तो खूब हंगामा हुआ।

पापा की हर बात मानने वाली मम्मी ने इस बार मर्म को समझा और उन्होंने वेस्टर्न पोशाक पर मुहर लगा दी थी, पर शर्त ये कि गला डीप नहीं होना चाहिए। कॉलेज जाते वक्त किसी लड़के से मेल जोल नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, किसी की बाइक पर लिफ्ट नहीं लेना जैसी नसीहतों की घुट्टी मम्मी रोज पिलाती थी। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना। एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। कभी कभी रायमा की बिंदास बातें उसे सही लगती थीं। सब कुछ अपनी मर्जी से करो, घर वाले कन्विंस्ड ना हो तो उनसे बहाने बनाओ। वो तो अक्सर लड़के लड़कियों के ग्रुप के साथ ट्रैकिंग पर चली जाती थी। उसके घर वाले राजी भी हो जाते थे। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं कि अभी भी गांव वाली मानसिकता उनके भीतर गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। अरे, समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। विचार, उसूल, ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। वक्त पर खाना खाना, पैसे कमाना, साल में एक आध बार कहीं परिवार के साथ घूमने जाना, यही शानो शौकत की जिंदगी है इनके लिए। उनके मुताबिक दिव्या को ये सब तो मिल रहा है। पारो दिव्या को समझाकर परेशान हो गई। दुखी होकर वो कमरे से चली गई। उनके जाते ही दिव्या उठी, अपने कटे बालों में बैकपिन लगाते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। आगे पीछे मुड़कर गर्दन टेढ़ी करके हर तरफ से अपने को निहारती हुई अपने ही रूप पर मुग्ध होती रही। रंग सांवला है तो क्या हुआ, रूप और फिगर तो है ना खूबसूरत और चार्मिंग। दिव्या ने वार्डरोब से अपनी टाइट फिट साइड कट मैक्सी निकालकर पहनी, हल्का मेकअप किया और इस तरह मटक कर हाथ हिलाकर बोलती रही जैसे टीवी की कोई वीजे हो। अगर मम्मी पापा राजी हो गए तो पक्का कॉलेज क्वीन का खिताब उसे ही मिलेगा। सोचते हुए आंखें मूंद कर थोड़ी देर के लिए दिव्या अपनी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल की कायद से बाहर निकलकर फैशन शो के भव्य स्टेज पर पहुंच गई थी, जहां सामने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स बैठे थे। दर्शकों का हुजूम था, तालियों की गड़गड़ाहट थी। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी, जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के महासागर में मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब। ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी।

कंग्रेचुलेशंस, अरे किन ख्यालों में खोई हो बार्बी डॉल। इरफान दिव्या से हाई फाई करते हुए बोला। दिव्या अपने कॉलेज के दिनों से छम से कूदकर वापस आ गई हॉस्टल के लॉन में, जहां सर्दी की नरम धूप का एक टुकड़ा दिव्या के नीले स्वेटर पर अटक गया था। क्यारियों में दुपहरिया खिलकर मुस्कुरा रही थी। हॉस्टल की दीवारों पर लटके बोगनविलिया रानी गुलाबी रंग से नहाकर और ताजा हो गए। दिव्या, यू आर वेरी लकी, तुम्हारा प्रोजेक्ट खूब खूब लाइक किया गया है। और पता है, रावत सर लास्ट मीटिंग में तुम्हारी और तुम्हारी बनाई डॉक्यूमेंट्री की चर्चा कर रहे थे और तारीफ भी कर रहे थे। दिव्या बुत बनी बैठी रही, कोई जवाब नहीं दिया उसने। दिव्या के मन में इस समय यादों का भूचाल सा आया हुआ है। हॉस्टल में आए 3 साल हो गए हैं, घर वालों को लेकर वो कभी भी इतनी व्यग्र नहीं हुई, पर आज मम्मी जैसे सामने हैं। सौम्या दी के नसीहतें सामने हैं। दिव्या स्मृतियों की रेतीली आंधी और तपिश से झुलस गई है। उड़ती हुई रेत से दिव्या अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेत की किरकिरी मुंह में भी भरी जा रही है और जैसे उसका पूरा बदन और मन रूखा हुआ जा रहा है। तपिश और दंश को छोड़ आई है घर पर वो, लेकिन हॉस्टल की जद्दोजहद भी कहां कम है। आर्थिक तंगी, पढ़ाई का प्रेशर, प्रोजेक्ट पूरा करने का तनाव और दबाव, रिश्तों के समीकरण, इस सब में निपट अकेले तालमेल बिठाना कितना कठिन हो गया है। एक समय था जब अपनी सारी जिम्मेदारी घर वालों पर थी, सारा दोष घर वालों पर मड़क देती थी, पर अब अपनी गलतियों की सजा खुद को ही देनी है, खुद को अपनी पीड़ा से भी निकालना है।

0: दिव्या खुद को तपते रेगिस्तान में पाती है जहां दूर तक वीराना है। मालूम है नियत दूरी तय करने पर उसे लोग मिलेंगे, शहर मिलेगा, पर उस दूरी तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और बहुत लंबा संघर्ष है। हॉस्टल के कलीग्स, दोस्तों और टीचर्स के साथ के बावजूद वो खुद को मरुस्थल में जैसे अकेला पाती है। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है, कामयाबी कई बार अपनों से भी दूर कर देती है।
1: व्हाट हैपेंड दिव्या, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो?
0: अरे अब तो डॉक्यूमेंट्री से भी पैसे आ जाएंगे ना, तुम्हारी कड़की के दिन भी अब खत्म होने वाले हैं। रिलैक्स, अब सिर्फ स्कॉलरशिप के भरोसे नहीं जीना होगा तुम्हें।
1: नहीं यार, खुश हूं, खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। आज पता है, आज मुझे घर वालों की बहुत तलब लगी है, मम्मी की बहुत याद आ रही है।

0: खैर छोड़ो। अरे तो तू उन्हें फोन करके बता दे कि तू बहुत खुश है, तुझे कितनी बड़ी कामयाबी मिली है, वो लोग भी खुश होंगे ना। नहीं नहीं इरफान, उनकी नाराजगी और बढ़ जाएगी। उन्हें पता नहीं है कि हम यहाँ रात रात भर बॉयज और गर्ल्स साथ साथ काम करते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं, एक दूसरे से हाई फाई करते हैं, लेकिन हम सब सिर्फ एक दोस्त हैं, रियल फ्रेंड्स। वे कभी नहीं समझेंगे मेरी प्रॉब्लम, कभी नहीं समझेंगे। पता है फाइनल एडिटिंग वाले दिन मैं, रायमा और प्रणव सर ने एक ही रूम शेयर किया था, बस थोड़ी देर के लिए झपकी ली थी बारी बारी से, उन्हें इन सब की भनक भी लग जाए ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मैं कौन सा उनके लिए जिंदा हूं, कहां जिंदा हूं मैं उनके लिए। उस दिन मम्मी ने मुझे कह दिया था तू हम सबके लिए मर चुकी है, मर चुकी है तू हम सबके लिए।
1: छोड़ ना यार, अब आगे की सोच। 2 महीने बाद फंक्शन है, ड्रामा का थीम तैयार हो गया है। इस बार एक ड्रामा और साथ में एक कोरस सॉन्ग भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है? हाँ यार, इट्स गुड आइडिया। पिछले साल का फंक्शन अप टू द मार्क नहीं था, इस बार हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो बस 2 साल और बिताकर यहां से सीधा मुंबई वापस लौटूंगी। मम्मी पापा से दूर आई हूं उन्हें नाराज करके, तो कुछ बनकर ही उनके पास जाऊंगी। मुझे तो टेलीविजन चैनल में काम करना है, बस इतना सा ख्वाब है। हाँ पर तुझे प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो सुना है तेरी बनाई वो साइबर क्राइम वाली डॉक्यूमेंट्री चैनल के लिए अप्रूव हो गई है, वो भी एंटरटेनमेंट चैनल के लिए।
0: हाँ यार, अभी तो सिर्फ अप्रूव हुई है ना, टेलीकास्ट नहीं हुई है। मेरी सीरियल्स जब कई चैनल पर टेलीकास्ट होंगे तब वो मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। वैसे एक चैनल ने हम सब की डॉक्यूमेंट्री का एक मोंटाज दिखाया था, रायमा बता रही थी मुझे।

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था, वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। बारहवीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। तीन भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था, सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे, जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला, हाँ आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला, अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही हैं। क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का, मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या सौम्या सौम्या, मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने, तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है, तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में। दी सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है, जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी, मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूँ। कभी तो मिलेगी कहीं।

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्शेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं? मां, वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हां, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहां लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है, मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना। समझ गई बच्ची? अब बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी। चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको? लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जरूरत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी। बेटी, कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा। हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग,

कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना, हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला, वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना, यही चाहती हैं आप। क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में, सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता, दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली। आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं, वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ। पर अब नहीं, मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, उबने लगी हूँ मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना। इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है, इसमें बुराई क्या है, लड़की लड़के सब बराबर है आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को मालशेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर, पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी, पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मालशेज घाट की गगन छूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उस समय पेड़ों के झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोज ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब से खिली थी, टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह उड़ना

गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से FM 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का मोहिनी चैनल है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

रात हम आपको जानकारी देंगे हमारी आज की सभा में शेष रहे और कल की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। तो आइए श्रोताओं, पहले आपको सुनाते हैं हमारी आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ पल में सुनेंगे ठीक 5:05 पर कार्यक्रम नारी लोक। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से शाम के 5:30 पर। हिंदी प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से शाम के 6:30 पर। राजस्थान में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर। शाम के 7:00 आप सुनेंगे चौपाल कार्यक्रम। जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम के 7:30 पर। समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:45 पर। रात्रि के 9:00 से आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

रात्रि के 10 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाइलाइट्स। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि के 10:20 पर।

لطفاً منبر. सुबह के 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। चिंतन आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से 6:05 पर। वंदन आप सुनेंगे 6:10 पर। रामचरितमानस गाना आप सुनेंगे 6:30 पर। कार्यक्रम कहती है बात आप सुनेंगे 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:50 पर। वातन आप सुनेंगे 7:20 पर।

विविध भारती कार्यक्रम सुनेंगे सुबह के 7:30 पर। समाचार प्रभात आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह के 8:00 से। कार्यक्रम को दिन से आप सुनेंगे 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर। सुबह के 9:00 से आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी भाषा में प्रादेशिक समाचार। हमारे केंद्र से सुगम संगीत आप सुनेंगे 9:10 पर।

विविध भारतीय कार्यक्रम सुनेंगे सुबह के 9:30 पर। हमारे केंद्र से सुगम संगीत आप सुनेंगे सुबह के 11 बजे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 11:30 पर। दोपहर के 12 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण एफएम बैंड 103.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का वह ही चैनल है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी लोक।

मैंने किसे कितना दिया है और बदले में मेरे हिस्से में क्या आया है या क्या मेरे जीवन में मुझे मिलना चाहिए। ये गिने बिना देते रहना सिर्फ प्रकृति से ही सीखा जाता है, क्योंकि प्रकृति ने निरंतर आज तक हमें देने का ही काम किया है। प्रकृति हमसे कुछ नहीं मांगती, मांगती है सिर्फ उसको अच्छा रखना। उसकी इसी खूबसूरत सहज भाव को हम करीब से समझ सकते हैं अपनी प्रकृति के पास जाकर। इन्हीं पंक्तियों के साथ नारीलो कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को अपनी बहन तस्लीम कौसर का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज 2 अक्टूबर यानी आज के दिवस को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। बहनों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे अपने पिता की चौथी पत्नी की अंतिम संतान थे। महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय

0: राष्ट्रीय आंदोलन का नेता माना जाता था। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिज्ञ और आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक प्रगति हासिल करने हेतु अहिंसक विरोध के अपने सिद्धांत के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। प्यार से सभी इन्हें बापू के नाम से भी जानते हैं। दोनों संयुक्त राष्ट्र ने भी वर्ष 2007 से गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। दोनों साथ ही साथ आपको बताते चलें कि 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। दोनों लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी हर साल 2 अक्टूबर को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री जी की याद में मनाई जाती है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके प्रमुख नारे की बात करें तो बहनों इनका प्रमुख नारा था जय जवान जय किसान। यह नारा उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया था। यह देश के सैनिकों के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। उन्हें वर्ष 1966 में मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह दिवस उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, देशभक्ति और देश के प्रति समर्पण को याद दिलाने का अवसर माना जाता है। दोनों इस दिन स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय और विभिन्न स्थानों पर इस दिन उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है और विभिन्न कार्यक्रमों का जैसे भाषण प्रतियोगिता और भी चित्रकार प्रतियोगिता, कई सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर इस दिवस को और भी यादगार मनाया जाता है। विशेष जानकारी गांधी जयंती और शास्त्री जयंती पर। और आइए बहनों आप सुनते हैं डॉक्टर भारती पहाड़िया से सपनों से बड़ा हो संकल्प विषय पर बातचीत।
1: सपनों से बड़ा हो संकल्प का अर्थ है केवल बड़े सपने देखना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए अपना दृढ़ निश्चय यानी अपने संकल्पों को बड़ा रखना, अपने सपनों को अधिक मजबूत बनाना होना चाहिए। तो बहनों आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर भारती पहाड़िया जी। तो सबसे पहले करते हैं इनका स्वागत। भारती जी नमस्कार।
2: नमस्कार
1: भारती जी, सबसे पहले तो आप दीजिए अपना परिचय कि आप क्या करती हैं, कहाँ पर कार्यरत हैं, हमारी बहनों को थोड़ी जानकारी दीजिए।
2: जी बिल्कुल, मैं भारती पहाड़िया, मैं घाटोल ब्लॉक के पड़ोली गोर्धन के प्राइमरी विद्यालय मेड़ापाड़ा में कार्यरत हूँ।
1: बिल्कुल, तो आज करते हैं भारती जी इसी विषय पर आपसे बातचीत कि सपनों से बड़ा हो संकल्प। तो भारती जी सबसे पहले तो आप हमारी बहनों को ये बताइए कि सपनों से बड़ा संकल्प किस तरह से होता है, इसका कोई संदेश है, ये हमें कोई संदेश देता है या हमें कुछ जानकारी देता है, इस बारे में आप हमारी बहनों को थोड़ा अवगत कराइए।
2: जी, सपने शुरुआत है। सपने देखना मंजिल की पहली सीढ़ी है जो आपको यह बताते हैं कि आपको जीवन में कहाँ पहुँचना है। संकल्प ताकत है, जब आपके संकल्प बड़े और पक्के होते हैं तो बड़ी से बड़ी रुकावटें भी छोटी लगने लगती है। मेहनत और पुरुषार्थ, जब मजबूत संकल्प आपको कड़ी मेहनत करने की अंदरूनी ताकत देता है जिससे सफलता की राह आसान हो जाती है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारी बहनों को दे रही हैं कि किस प्रकार हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अब हमारी बहनों को आप भारती जी ये भी बताइए कि अगर हम इसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, यानी अपने संकल्पों को हम या अपने सपनों को हम बड़ा करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में उतारने हेतु क्या क्या क्या कार्य करने चाहिए जीवन में।
2: जी, स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, अपने सपनों को एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य में बदलें। दूसरा, अटूट मेहनत करें, हर दिन अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी और मेहनत दिखाएं। चुनौतियों से न डरें, मुश्किल समय आने पर भी अपने संकल्प से पीछे न हटें।
1: बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि आप विद्यालय में कार्यरत हैं तो शायद आप बच्चों से दिन प्रतिदिन ये बात जरूर करते होंगे कि उन्हें भी अपने सपने बड़े रखने चाहिए, उन्हें भी जीवन पथ पर किस प्रकार अगर आगे बढ़ना है तो अपने संकल्पों को, अपने सपनों को बड़े रखकर चलेंगे तो अवश्य ही वो आगे उन्नति कर सकते हैं। तो इस बारे में आप हमारी बहनों को और भी कोई जानकारी देना चाहें तो भारती जी आप हमारी बहनों को बताएं।
2: मानव जीवन कल्पना और संभावनाओं से भरा हुआ है। हर व्यक्ति के भीतर इच्छाएं होती है जिन्हें हम सपने कहते हैं। सपने देखना जीवन की सजीवता का प्रमाण है।

0: हैं, वे हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन केवल सपने देखने से जीवन में सफलता नहीं मिलती है, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे संकल्प कहते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए संकल्पों को लेना चाहिए। जब तक हम दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तब तक शायद हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
0: इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति के सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, उसका संकल्प उन सपनों से भी बड़ा होना चाहिए। सपने और संकल्प में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। सपना केवल एक इच्छा है और जो हमें सोते या जागते हुए देखते हैं, इसमें कोई दायित्व या मेहनत जुड़ी नहीं होती। इसके विपरीत संकल्प एक दृढ़ निश्चय है। संकल्प का अर्थ है किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा करना। सपना यदि एक मार्ग दिखाता है तो संकल्प उस मार्ग पर आने वाली हर बाधा को पार करने की शक्ति देता है।
1: बिल्कुल,
0: जब हमारा संकल्प सपनों से बड़ा हो जाता है तब हमारे भीतर से बहाने समाप्त हो जाते हैं और प्रयास शुरू हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितने भी महान परिवर्तन हुए हैं वे केवल सपनों के कारण नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प के कारण हुए हैं। महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराने का सपना देखा, लेकिन उनका संकल्प इतना बड़ा था कि उन्होंने अहिंसा के बल पर ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक गरीब परिवार में जन्म लेकर भी देश के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने का सपना देखा और अटूट संकल्प से ही उसे पूरा किया। यदि संकल्प कमजोर होता तो उनके सपने भी केवल कल्पना बनकर रह जाते।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारी बहनों को दे रही हैं कि दृढ़ संकल्पी मनुष्य को छोटे से बड़ा बनाने और बहुत बड़ा इंसान बनाने में मदद करता है। तो आप भारती जी, हमारी बहनों को आप ये भी बताइए कि जब हम इन संकल्पों को पूरा करना चाहते हैं जीवन के अंदर, तो शायद हमारे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां भी आती है और उन कठिनाइयों का सामना करते ही हमें आगे बढ़ना होता है। तो हमारी बहनों को आप थोड़ी ये भी जानकारी दीजिए कि इस रास्ते पर चलते हुए हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
0: जब हम कोई बड़ा सपना देखते हैं तो रास्ते में मुश्किल, असफलताएं और निराशा आना स्वाभाविक है। ऐसे समय में केवल सपने हमारे काम नहीं आते बल्कि असफलताओं के थपेड़े खाकर सपने अक्सर टूट जाया करते हैं। लेकिन जिसके पास एक बड़ा संकल्प होता है वह हर असफलता को सीख मानकर दोबारा उठ खड़ा होता है। संकल्प व्यक्ति को धैर्यवान, साहसी और कर्मठ बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: यह हमें सिखाता है कि लक्ष्य चाहे कितना भी दूर क्यों न हो, निरंतर चलते रहने से उसे पाया जा सकता है।
1: बिल्कुल सही।
0: आज की युवा पीढ़ी के पास बड़े बड़े सपने हैं जो कि एक सकारात्मक बात है, लेकिन कमी अक्सर संकल्प की होती है। थोड़ी सी रुकावट आते ही युवा अपने रास्ते बदल लेते हैं। युवाओं को यह समझने की आवश्यकता है कि सपनों को पंख संकल्प से ही मिलते हैं। बिना संकल्प के सपने केवल एक सुंदर भ्रम है जो समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सपने हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, लेकिन संकल्प हमारी दशा तय करता है। यदि हम जीवन में कुछ असाधारण हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। हमें अपने सपनों को केवल सोच तक सीमित न रखकर उन्हें संकल्प का आधार बनाना होगा। जब हमारा संकल्प हमारे सपनों से बड़ा और अधिक होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक पाएगी।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी भारती जी पहाड़िया आपने हमारी बहनों को दी है और खासकर आपने एक बहुत अच्छा मैसेज हमारी बहनों को दिया है और आज की युवा पीढ़ी के लिए कि सपने तो बड़े होते ही हैं, सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, लेकिन कमी अक्सर संकल्प की होती है। थोड़ी सी रुकावट आते ही हम लोग घबरा जाते हैं और इस समय हमारे पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनों को ये बातचीत अच्छी लगेगी और अवश्य ही वो उसे अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद देते हैं भारती जी कि आज आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारी बहनों के साथ साझा की। नमस्कार,
0: धन्यवाद तस्लीम जी।
2: और आइए बहनों, रुक करते हैं चर्चा की ओर। विषय है सुख का एहसास अघोषित होता है। बहनों, क्या आप जानते हैं कि सुख बहुत निजी होता है, केवल खुद ही महसूस किया जा सकता है, या ये हो सकता है कि जिसने पाया वो कि मुझे इस कारण सुख प्राप्त हुआ, वही जान सकता है कि आखिर मनुष्य

जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे सुख की प्राप्ति किस प्रकार हुई। हम भला कर सकते हैं, किसी को मुस्कान दे सकते हैं, जिसकी जरूरत का पता हो उसकी मदद कर सकते हैं, बस इतना ही हमारे हिस्से का काम है। कोई हमसे सुखी होता है या खुश होता है या हमारे नियंत्रण में नहीं है। किसी के लिए हम तिनका भर पाए इसका एहसास स्वयं को खुशी दे सकता है, संतुष्टि नहीं। यह पूरी प्रक्रिया यानी किसी की मदद करने की कोशिश भी निजी प्रयास है। इसे अघोषित होना चाहिए और हो सके तो गुप्त भी। अगर मदद किए जाने का एहसास कराया जाए तो इसे अहंकार का द्योतक माना जाता है। तब कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होगा, कोई लेने वाला तो कोई दाता नहीं होगा। तब लेने वाले की शर्मिंदगी या संकोच मदद करने वाले के सुख को दर्प में नहीं बदलेगा। सुख और दुख दोनों की अनुभूतियां सबके लिए भिन्न भिन्न होती है। मदद वाले हाथ हमेशा कई हो सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए सबके सुख की अनुभूति अलग अलग होती है। कहते हैं कि सुख का रूप एक जबकि दुख के अनेक रूप हो सकते हैं। किसी को समझाने से, बात करने से दुख का एहसास कुछ पलों के लिए थम जाता है। सुख बढ़ता नहीं, उसे तो पूरे दिल से केवल अनुभूतित किया जा सकता है, उसका अनुभव ही किया जा सकता है, और यही इसकी शुद्धता और इसका सरल रूप माना जाता है। तो ये तो थी सुख का एहसास अघोषित होता है विषय पर हमारी चर्चा। और आइए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: सुनो, गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आइए फिर से करते हैं रुक चर्चा की ओर। विषय है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। बहनों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर यानी आज ही के दिन महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिवस शांति, सहिष्णुता, समाज और अहिंसा के सिद्धांतों को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण दिन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2000

0: साथ से अपने प्रस्ताव के माध्यम से 2 अक्टूबर को इस विशेष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को पूरी दुनिया को देना है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के महत्व की, तो यह दिवस विवादों और युद्धों को बातचीत, संवाद और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की प्रेरणा देता है। शांतिपूर्ण समाधान है यह समाज में हर व्यक्ति के अधिकारों और मानवीय गरिमा के प्रति आदर और सम्मान के भाव को दर्शाता है। साथ ही साथ यह विभिन्न समाजों और संस्कृतियों के बीच आपसी समाज मेल मिलाप और भाईचारे को भी मजबूत करता है। तो एक थी हमारी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर, और आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए अपनी बहन तस्लीम कौसर को इजाजत। नमस्कार।

अभिमानी लोक कार्यक्रम प्रसारित किया गया। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का मोहनी चैनल है। शाम के 5:30 होने को है। आइए सुनते हैं विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

कार्यक्रम तराने नए पुराने में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म कन्यादान से। इसे गाया है लता मंगेशकर ने। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।

आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आनंद। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

कार्यक्रम में अगला गाना किशोर कुमार की आवाज में सुनिए। फिल्म का नाम है प्यार का मौसम। गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिल

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।

सराहनीय नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे। समाचारों के बाद यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने श्री स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।
0: कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

पर्यटन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत की परिकल्पना में स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। श्री सोनोवाल ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के स्वच्छता अभियान संबंधी कार्यक्रम में यह बात कही। कार्यक्रम के दौरान मुंबई पोर्ट अथॉरिटी द्वारा संचालित जवाहर द्वीप मरीन ऑयल टर्मिनल को प्लास्टिक मुक्त ऑयल टर्मिनल घोषित किया गया। गोवा सरकार के सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पोंडा में आत्मनिर्भरता, कृषि और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गोवा में लगभग 6000 लखपति दीदियों को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता

प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में बागवानी को मजबूत करेगा और किसानों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। श्रीमती सीतारामन ने आज अन्नामय्या जिले के मदनपल्ले में रायलसीमा वैश्विक बागवानी केंद्र परियोजना और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। वित्त मंत्री ने किसानों को सहयोग देने और उनकी आय बढ़ाने के लिए

0: वेस्ट महाराष्ट्र मंच का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का आठवां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 30-35 कांस्य सहित 76 पदक लेकर आगे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक विजेता परवीन हुड्डा और सुजीत कलकल को उनकी जीत पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने ने पुराने में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुनिए ये संदेश।
2: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
3: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
2: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी
3: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
2: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: इस गाने के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का मोहनी चैनल है। शाम के 6:30 होने को है। आइए सुनते आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से पहले हिंदी और फिर राजस्थान प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरपंच गांव के विकास की धुरी, गांव के हर व्यक्ति का विश्वास कायम रखना उनकी जिम्मेदारी। सपनों की उड़ान सशक्त युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के युवाओं ने आज मुख्यमंत्री से संवाद किया, नशा मुक्त भारत की शपथ ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज विशेष ग्राम सभाओं के साथ स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित हुए। और एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम प्रदर्शन जारी, आज 6 और स्वर्ण पदकों पर जमाया कब्जा, अब तक 16 स्वर्ण किए हासिल। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरपंच गांव के विकास की धुरी है और सरकारी योजनाओं की जानकारी अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। आज जयपुर में पंचायती राज जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के गरीब, मजदूर और किसान की कोई भी समस्या छोटी नहीं होती, इसलिए पंचायत प्रतिनिधि को गांव के हर व्यक्ति का विश्वास कायम रखते हुए काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंच गांव की उम्मीद का पहला केंद्र है और गांधी जी के राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है।
1: सरपंच देश के विकास की धुरी है। जो भी चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो भी पैसा आएगा वो निकाय और ग्राम पंचायत के माध्यम से नीचे जमीन पर उतरेगा। गांव का व्यक्ति अपनी समस्या लेकर सबसे पहले अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि के पास जाता है और उसको बड़ी आशा और उम्मीद होती। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, क्योंकि आप सरपंच हैं, जो लोग आप पर विश्वास करते हैं हमें उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे समस्या छोटी हो चाहे वो बड़ी हो।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से आए सरपंचों, पंचायती राज जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया और सरपंचों ने अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज स्मार्ट मूल निवास प्रमाण पत्र सुविधा और खेलो राजस्थान पोर्टल का शुभारंभ किया। जयपुर के भवानी निकेतन कॉलेज में सपनों की उड़ान सशक्त युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने 3075 करोड़ रुपए के 668 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऊर्जावान युवा राष्ट्र की असली शक्ति है और इसे नशे की लत से बचाना सबकी साझा जिम्मेदारी है। श्री शर्मा ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए स्वस्थ और अनुशासित युवा का होना जरूरी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं और लोगों को नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाई और सभी को विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लिए मिलकर काम करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम के

0: विराट पत्रकारों से बातचीत में युवा और खेल मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि आज का युवा कल का भविष्य है और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज से तैयारी की जानी चाहिए।
1: जो अवसर राजस्थान में बढ़ रहे हैं हमारे युवाओं के लिए, जहां राजस्थान सरकार की नौकरियां हैं उसी के साथ साथ गैर सरकारी नौकरियां भी हमारे प्रदेश के अंदर बढ़ती जा रही हैं। राइजिंग राजस्थान के तहत जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके कारण 2047 का जो भारत बनेगा, उस भारत के अंदर हमारे आज जो युवा स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, क्लासरूम्स में बैठे हैं, खेल के मैदान में जो दौड़ रहे हैं, उनका भारत होगा 2047 का। और जैसे कि आप जानते हैं कि ओलंपिक की तैयारी एक दिन में नहीं होती, उसी तरह विकसित भारत की तैयारी एक दिन में नहीं हो सकती। आज से शुरू करेंगे तब 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित भारत बनेगा। हमारे युवा ड्राइव करेंगे हमारे देश को विकसित भारत बनने।
0: समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, राज्य मंत्री के विश्नोई और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित प्रदेश के कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मौजूद रहे। जिला मुख्यालयों पर भी सेवा संकल्प अभियान के तहत रोजगार उत्सव रखे गए। आयोजनों में नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए और जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। जोधपुर में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2026 में शामिल भारतीय लड़ाकू विमानों की दूसरे देशों द्वारा भी प्रशंसा की जा रही है। फ्रांस के एयर डिफेंस डिप्टी कमांडर जनरल जूलियन सबेने ने भारतीय लड़ाकू विमानों की क्षमता और विविधता की प्रशंसा करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल इस अभ्यास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि तरंग शक्ति अभियान से भारत और फ्रांस को अपने नीतिक और प्रचालन अनुभवों को एक दूसरे से साझा करने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि 12 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभ्यास में फ्रांस के राफेल A330 और A400M विमान भी शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का आठवां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाले 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। संग्रह में दिल्ली मेट्रो के 2 मॉडल, खेल से जुड़ी यादगार वस्तुएं, धार्मिक वस्तुएं, एक पेंटिंग, कलाकृतियां और हस्तशिल्प की वस्तुएं भी शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि नीलामी से मिलने वाली राशि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा के साथ याद कर रहा है। इस अवसर पर देश प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शास्त्री जी को भी विजय घाट स्थित समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश भर में भी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए महात्मा गांधी को याद किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के गांधी सर्किल पर राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सचिवालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस कड़ी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने अपने आवास पर श्रम दान कर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़ते हुए लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आगे आने का आह्वान भी किया। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वच्छता के प्रति अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की अपील की। महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर भी समारोह पूर्वक मनाई गई। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से आज से देश भर में खादी महोत्सव की शुरुआत हुई। आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की। जयपुर में खादी आयोग के मिशन निदेशक डॉ राहुल मिश्रा ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि प्रदेश में आज से खादी उत्पादों पर 50% तक की विशेष छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया

0: कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12-13 वर्षों में खादी ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं और खादी आज युवाओं के लिए एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है।
1: खादी ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से और राज्य के जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड्स हैं और पूरे देश भर में 17 सितंबर से हमारा सेवा संकल्प खादी महोत्सव 2026 जो है वो शुरू हुआ है और इस दौरान आज 2 अक्टूबर सारे हमारे जो खादी भंडार और भवन है वहाँ पर ग्राहकों की बहुत सारी भीड़ है, लोगों में उत्साह है, खादी के प्रति जागरूकता बढ़ी है और राजस्थान में स्पेशली पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो 2 अक्टूबर से लेकर के 30 जनवरी तक ये रिबेट दी जाती है ग्राहकों को और जो कि 50% तक होती है।
0: गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में आज विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। सभाओं में गांव से जुड़े मुद्दों और कुरीतियों के संबंध में जागरूकता बढ़ाई गई। झुंझुनू जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत पंचायतों में इसकी रोकथाम के लिए सामूहिक संकल्प दिलाया गया। इस दौरान बाल अधिकारिता विभाग की टीम ने ग्रामीणों को बाल विवाह रोकथाम कानून की जानकारी दी और इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। रेलवे ने अपनी गाड़ियों और रेल परिसरों को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाया है। उत्तर पश्चिम रेलवे में भी गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस के तहत इस अभियान की शुरुआत हुई। इस मौके पर जयपुर स्थित कार्यालय में रेलकर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के दौरान उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडलों, कारखानों, स्टेशनों, कार्यालयों, कॉलोनियों और रेल परिसरों में रोजाना अलग अलग थीम पर कार्यक्रम रखे जाएंगे। इस दौरान रेल में सफर करने वाले यात्रियों को भी जोड़ा जाएगा। और अब खेल। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आज अब तक 6 और स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाल लिए हैं। आज खेले गए महिला हॉकी के फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं भारत की पुरुष हॉकी टीम स्वर्ण पदक के लिए मलेशिया के साथ फाइनल मुकाबला खेल रही है। इससे पहले भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में ताजिकिस्तान के अब्दुल माजिद कुदियेव को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने चीनी ताइपे की नियेन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए देश को एक और स्वर्ण दिलाया। लवलीना ने चीन की बाओ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। आज दिन की शुरुआत महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीतने के साथ की। हालांकि पुरुष रिकर्व टीम को फाइनल में दक्षिण कोरिया से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। रिकर्व मिक्स टीम तीरंदाजी में भारत ने रजत पदक जीता। पुरुषों की सेप कटकरा के सेमीफाइनल में भारत को जापान से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने अंक तालिका में अब तक 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित कुल 76 पदक हासिल किए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, सरपंच गांव के विकास की धुरी, गांव के हर व्यक्ति को विश्वास कायम रखना उनकी जिम्मेदारी। सपनों की उड़ान सशक्त युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के युवाओं ने आज मुख्यमंत्री से संवाद किया, नशा मुक्त भारत की शपथ ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज विशेष ग्राम सभाओं के साथ स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित हुए और एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम प्रदर्शन जारी। आज 6 और स्वर्ण पदकों पर जमाया कब्जा, अब तक 16 स्वर्ण किए हासिल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से सलूम्बर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख तैयार किया है कमलेश कुमार झाड़ूला ने। सलूम्बर जिले में नगर परिषद चुनाव के बाद अब जिला प्रशासन पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गया है। जिला परिषद के 21 वार्डों, 7 पंचायत समितियों और प्रधान पदों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसी के चलते मतदान केंद्र, कार्मिक प्रशिक्षण, वाहन, ईवीएम, रूट चार्ट और कानून व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा भी की गई। नए मतदाताओं

0: खासकर 18 से 20 साल के युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया गया। इससे पहले जिले में हुए नगर परिषद चुनाव में शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। 25 वार्डों के लिए हुए चुनाव में 78.69% मतदान रहा। 14 सितंबर को मतगणना में भाजपा को 12, कांग्रेस को 11, बीएपी को 1 और निर्दलीय को 1 वार्ड मिला। वार्ड 14 में दोनों प्रत्याशियों को बराबर 154 वोट मिलने पर लॉटरी से फैसला हुआ। सभापति पद पर नरेश कुमार जैन और उपसभापति पद पर डॉक्टर लव व्यास निर्वाचित हुए। सितंबर माह में गांवों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए सेवा सेतु और विकसित भारत जन सेवा अभियान के तहत शिविर लगाए गए। पंचायत समिति मुख्यालय से लेकर गिरदावर सर्किल तक शिविर हुए। इनमें राजस्व, पंचायत, कृषि, स्वास्थ्य, बिजली, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सहित 22 विभागों ने एक साथ लोगों को सेवाएं प्रदान की। राशन कार्ड में आधार सीडिंग, ईकेवाईसी, एलपीजी आईडी मैपिंग और खाद्य सुरक्षा से जुड़े लंबित काम भी इन शिविरों में किए गए। जिला प्रशासन ने संपर्क पोर्टल की शिकायतों पर भी नजर रखी। जिले में सेवा सेतु और विकसित भारत जन सेवा अभियान के तहत गांवों में शिविर लगाए गए। इन शिविरों में राजस्व, पंचायत, कृषि, स्वास्थ्य, बिजली, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सहित 22 विभागों ने सेवाएं दी। राशन कार्ड में आधार सीडिंग, ईकेवाईसी और एलपीजी आईडी मैपिंग जैसे काम भी हुए। पिछले दिनों जिले में रात्रि चौपाल भी आयोजित की गई। घोड़सर और भबराना जैसे इलाकों में अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। सड़क, बिजली और पानी जैसी समस्याओं के मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए गए। सितंबर माह में जिले के विकास कार्यों को लेकर भी बड़ा आंकड़ा सामने आया। डीएफएमटी के तहत सलूम्बर जिले के 176 विकास कार्यों के लिए 16,94,00,000 रुपए मंजूर किए गए। इनमें 88 स्कूलों की मरम्मत, 47 उप स्वास्थ्य केंद्र और 40 नए कक्षा कक्ष शामिल हैं। खोलड़ी में जिला स्तरीय खेल परिसर के लिए 8 हेक्टेयर जमीन तय की गई है, जहां 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक, इंडोर हॉल और विभिन्न खेलों की सुविधाएं प्रस्तावित हैं। वहीं सिंचाई के क्षेत्र में सराड़ा सलूम्बर इलाके में 56,00,000 रुपए से ज्यादा की सोलर आधारित माइक्रो इरिगेशन परियोजना पर काम जारी है। पाइपलाइन बिछाने से 327 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। सितंबर महीने में स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियां भी कम नहीं रहीं। नए जिला अस्पताल की शिफ्टिंग की तैयारियों को लेकर अलग अलग विभागों के साथ निरीक्षण और मॉक ड्रिल की तैयारी हुई। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में डॉक्टरों, स्टाफ, मशीनों और अस्पतालों की व्यवस्थाओं की समीक्षा हुई। सीएससी लसाड़िया और सैटेलाइट अस्पताल चावंड के लिए डीएफएमटी से मिली 2 सोनोग्राफी मशीनों को जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। पिछले दिनों पिलादर में आयुर्वेद शिविर लगाया गया। शिविर में 60 मरीजों की जांच हुई। वहीं सराड़ी में बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य और योग शिविर लगाया गया, जिसमें 39 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। खाद्य विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कई दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की। नमूने लिए गए और करीब 15 किलो अवधि पार या दूषित खाद्य सामग्री मौके पर नष्ट कराई गई। जिले के घावड़ी, मगरी, ईसरवास में एक पेड़ मां यशोदा के नाम अभियान के तहत 500 पौधे लगाए गए। करीब 350 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। वट, पीपल, आंवला, अमलतास, खैर और कचनार जैसे पौधे लगाए गए। इसके साथ ही सलूम्बर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर रूपेश सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कयो सरपंच गांवरा विकास श्री धूरी गांवरा हर मिनखरा भरोसा ने कायम राखनो वारी जिम्मेदारी। सपनों की उड़ान सशक्त युवा संवाद कार्यक्रम री मार्फत प्रदेश रा नौजवाना आज मुख्यमंत्री साथे करी बतल नशा मुक्त भारत री शपथ ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पहली रा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री री जयंती माथे आज खास ग्राम सभावां रे साथे स्वच्छता कार्यक्रम विया। और एशियाई खेला माए भारत री स्वर्णिम नुमाइश चाल रही है। आज 6 और सोना रा तमगा माथे

0: सोना यो कब्जो अजे ताई 16 सोनारा तमगा हासिल करिया। समाचार रे साथ है मैं शंभु सिंह और अब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कयो है कि सरपंच गांवरा विकास री धूरी है और सरकारी योजनावा री जानकारी आखिरी लेन ताई पुगावन री जिम्मेदारी उनरी होवे है। आज जयपुर में पंचायती राज जन प्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कयो कि गांवरा गरीब मजदूर और काश्तकार री कोई समस्या छोटी नहीं होवे। इशारू पंचायत नुमाइंदा ने गांवरा हर मिनख रा भरोसा ने कायम राखता काम करनो चाहिए। मुख्यमंत्री कयो कि सरपंच गांवरी उम्मीद रो पहलो केंद्र है और गांधी जी रा राष्ट्र निर्माण री आधारशिला है।
1: सरपंच देश के विकास की धुरी है, क्योंकि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो भी पैसा आएगा वो निकाय और ग्राम पंचायत के माध्यम से नीचे जमीन पर उतरेगा। गांव का व्यक्ति अपनी समस्या लेकर सबसे पहले अपने स्थानीय जन प्रतिनिधि के पास जाता है और उसको बड़ी आशा और उम्मीद होती। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, क्योंकि आप सरपंच हैं, जो लोग आप पर विश्वास करते हैं हमें उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे समस्या छोटी हो चाहे वो बड़ी हो।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रदेश भरू आया सरपंचा पंचायती राज जन नुमाइंदा साथ बतल करी। जिला मुख्यालय माथे कार्यक्रम रो सीधो सजीव प्रसारण वीओ और सरपंच आपरी बात राखी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज स्मार्ट मूल निवास प्रमाण पत्र सुविधा और खेलो राजस्थान पोर्टल की शुरुआत करी। जयपुर रा भवानी निकेतन कॉलेज में सपनों की उड़ान सशक्त युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत करता मुख्यमंत्री 3,075 करोड़ रूपया रा 668 विकास कामारो लोकार्पण कयो और नींव धरी। ई मौके वणा कयो कि ऊर्जावान नौजवान देश री असली ताकत है और वाने नसारी लतू बचावनो सबरी भेड़ी जिम्मेदारी है। श्री शर्मा कयो कि विकसित भारत रा लगत सारो स्वास्थ्य और अनुशासित नौजवान रो वेणो जरूरी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नौजवाना और लोगों ने नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाई और सगला ने विकसित भारत और विकसित राजस्थान सारू मिलने काम करने रो संकल्प दिलायो। कार्यक्रम रे पछे खबर नवी सौ बतल करता नौजवान और खेल मामला रा मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ कयो कि आज रो नौजवान काले रो भविष्य है और साल 2047 रा विकसित भारत रा लगस ने हासिल करण सारू आज उन्हें तैयारी करी जावनी चाहिए।
2: जो अवसर राजस्थान में बढ़ रहे हैं हमारे युवाओं के लिए, जहां राजस्थान सरकार की नौकरियां हैं उसी के साथ साथ गैर सरकारी नौकरियां भी हमारे प्रदेश के अंदर बढ़ती जा रही हैं। राइजिंग राजस्थान के तहत जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके कारण 2047 का जो भारत बनेगा उस भारत के अंदर हमारे आज जो युवा स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, क्लासरूम्स में बैठे हैं, खेल के मैदान में जो दौड़ रहे हैं, उनका भारत होगा 2047 का। और जैसे कि आप जानते हैं कि ओलंपिक की तैयारी एक दिन में नहीं होती, उसी तरह विकसित भारत की तैयारी एक दिन में नहीं हो सकती। आज से शुरू करेंगे तब 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित भारत बनेगा। हमारे युवा ड्राइव करेंगे हमारे देश को विकसित भारत बनने।
0: जलसा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, राज्य मंत्री के विश्नोई और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास समेत प्रदेश रा कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मौजूद रिया। जिला मुख्यालय माथे सेवा संकल्प अभियान रे तहत रोजगार उत्सव राखी जा। आयोजन में नुआ नियुक्त कार्मिका ने नियुक्ति पाना बांटी जा और जयपुर में व्या राज्य थर्रा कार्यक्रम और सीधो प्रसारण करी जियो। जोधपुर में व्या बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2026 में भेड़ा भारतीय लड़ाकू विमानारी दूजा देशा कान्यू सराहना करी जावे। फ्रांस रा एयर डिफेंस डिप्टी कमांडर जनरल जूलियन सबे ने भारतीय लड़ाकू विमानारा बूता और विविधता ने सराया और कयो के दोनों देशों के बीच आपसी तालमेली अभ्यास रो महत्व हिस्सो है। आकाशवाणी सारू बतल माए वणा कयो के तरंग शक्ति अभियान भारत और फ्रांस ने आपरा रणनीतिक और प्रचालन अनुभव ने साझा करण रो मौको मिलेला। ध्यान जोगे के 12 अक्टूबर ताई चालन वाला ई अभ्यास माए फ्रांस रा राफेल A330 और A400M विमान ही भेड़ा विया है। प्रधानमंत्री ने मिलिया निजराना री ई नीलामी री 8वीं कड़ी 31 अक्टूबर ताई बधा दी रही है। संस्कृति मंत्रालय बतायो कि ई चरण में दिल्ली रा न्यारा न्यारा पहलवान ने दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह भेड़ा है।

0: आप 30 स्मृति चिन्हमाए 9 फोटो फ्रेम 9 यादगार चीजा 6 मूर्त और प्रतिमा भेड़ी है। आ चीजा माए दिल्ली मेट्रो रा 2 मॉडल खेलों जुड़ी यादगार चीजा धार्मिक चीजा और 1 पेंटिंग कलाकृतियां और हाथों बनी चीजा भेड़ी है। मंत्रालय कहो कि नीलामियों मिलन वाली रकम नमामि गंगे प्रोजेक्ट माए दी जायला। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान माथे सुन सको हो। इंटर साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पहली रा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती माथे वाने श्रद्धा साथे याद करे। ई मौके देश प्रदेश माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम रो आयोजन करीजियो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई मान्यता लोगा नई दिल्ली माए राजघाट माथे महात्मा गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पण करी। वठे शास्त्री जी ने विजय घाट माथे वाणी समाधि माथे सिरदारा फूल अर्पण करीजिया। प्रदेश भर में व्या न्यारा न्यारा कार्यक्रम मार्फत महात्मा गांधी ने याद करी जिया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर गांधी सर्किल माथे राष्ट्रपिता ने पुष्पांजलि अर्पण करी। ई मौके सचिवालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा रो आयोजन करीजियो। ई कड़ी में स्वच्छता ही सेवा अभियान रे तहत उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा आपरा रहवास माथे श्रमदान करने स्वच्छता रो संदेश दियो। वना स्वच्छता ने जन भागीदारी जोड़ता लोगों ने सफाई और स्वास्थ्य समाज सारू आगे आवण री अरज करी। वना प्रदेशवासियों स्वच्छता रे प्रति आपरा दायित्व ने निष्ठा रे साथे निभावण री अरज करी। महात्मा गांधी री जयंती आज वैश्विक थर्माथे जलसापूर्ण मनाई जी। कई देशा माए भारतीय राजनयिक मिशना ई मौके गांधी जी री मूर्त माथे पुष्पांजलि अर्पण करी और सत्य अहिंसा और शांति रा वारा संदेश ने याद करिया। गांधी जयंती मौके खादी और ग्रामोद्योग आयोग कानियो आज देश भर में खादी महोत्सव री शुरुआत हुई। आयोग रा अध्यक्ष मनोज गोयल नई दिल्ली में इन री शुरुआत करी। अठीने जयपुर में खादी आयोग रा मिशन निदेशक डॉक्टर राहुल मिश्रा आकाशवाणी बतल में बतायो कि प्रदेश में आज खादी उत्पादा माथे 50% तरी खास छूट दी जावे। वना बतायो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में लारला 12-13 साल में खादी नई ऊंचाइया हासिल करी है और खादी आज नौजवाना सारू फैशन स्टेटमेंट बन गयो है।
1: खादी ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से और राज्य के जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड्स हैं हर पूरे देश भर में 17 सितंबर से हमारा सेवा संकल्प खादी महोत्सव 2026 जो है वो शुरू हुआ है और इस दौरान आज 2 अक्टूबर सारे हमारे जो खादी भंडार और भवन है वहां पर ग्राहकों की बहुत सारी भीड़ है, लोगों में उत्साह है, खादी के प्रति जागरूकता बढ़ी है और राजस्थान में स्पेशली पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो 2 अक्टूबर से लेकर के और 30 जनवरी तक की रिबेट दी जाती है ग्राहकों को और जो कि 50% तक होती है।
0: गांधी जयंती रे मौके प्रदेश भर में आज खास ग्राम सभा रो आयोजन करी जो सभा में गांवों जुड़िया मुद्दा कुरीतियां रा बारा में जाग जगाई जी। झुंझुनू जिला में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान रे तहत पंचायत में रोकथाम सारू भेड़ो संकल्प दिराई जो। इस दौरान बाल अधिकारिता महकमा की टीम गांव वाला ने बाल विवाह रोकथाम कानून की जानकारी दी और इनरा कुप्रभाव सारू जाग जगाई। एशियाई खेल जापान में वेरिया एशियाई खेला में भारत शानदार नुमाइश करता आज अजय ताई 6 और सोना रा तमगा आपरी झोली में डाल लिया है। आज खेली जा महिला हॉकी रा फाइनल मुकाबला में भारत चीन ने 1-0 हरार सोना रा तमगा ने कब्जा माए करियो। वठे भारतीय पुरुष हॉकी टीम सोना रा तमगा सारू मलेशिया रे साथे फाइनल मुकाबलो खेल रही है। इनू पहला भारतीय पहलवान सुजीत कलकल फ्री स्टाइल 65 किलो भार माए ताजकिस्तान रा अब्दुल माजिद कुदियव ने हरार सोना रो तमगो जीतियो। मुक्केबाजी रा 80 किलोग्राम भार वर्ग माए अंकुश पंधाल सोना रा तमगा माथे आपरो नाम करियो। महिला मुक्केबाजी रा 65 किलोग्राम वर्ग माए प्रवीण हुड्डा चीनी ताइपेरी मुक्केबाज ने हरार सोना रा तमगा माथे कब्जो करियो। वठे मुक्केबाजी रा 75 किलोग्राम भार वर्ग माए लवलीना बोरगोहेन ऐतिहासिक कामयाबी हासिल करता देश ने एक और

0: रोहतम गोदी रहो। आज दिन री शुरुआत महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम 10 बारी ओलंपिक चैंपियन दक्षिणी कोरिया ने 5-3 हरार स्वर्ण पदक जीतन ने शुरू करी। फिर वहीं पुरुष रिकर्व टीम फाइनल में दक्षिणी कोरिया हार ने चांदी रा तमगा माथे संतोष करियो। रिकर्व मिक्स टीम तीरंदाजी में भारत ने चांदी रो तमगो मिलियो। रिकर्व मिक्स टीम में पुरुषारी सेपक टकराई सेमीफाइनल में भारत कांस्य रो तमगो हासिल करियो। भारत अजे ताई पदक तालिका में 16 सोनारा 25 चांदीरा और 35 कांसीरा तमगा हासिल करने छिंतर तमगा जीत लिया है। ने अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन रहे हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो सरपंच गामरा विकास री धूरी गामरा हर मिनकरा भरोसा ने कायम रखनो वारी जिम्मेदारी। सपनों की उड़ान सशक्त युवा संवाद कार्यक्रम री मार्फत प्रदेश रा नौजवाना माए आज मुख्यमंत्री साथे बतल करी नशा मुक्त भारत री शपथ ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पहली रा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री री जयंती माथे आज खास ग्राम सभावां रे साथे स्वच्छता कार्यक्रम विया और एशियाई खेला माए भारत री स्वर्णिम नुमाइश चाल रही है। आज 6 और सोनारा तमगा माथे जमायो कब्जो अजे ताई 16 सोनारा तमगा हासिल करिया। मैं इन साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरा हुआ मान रो अगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जाएला। नमस्कार।
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से राजस्थानी प्रादेशिक समाचार FM बैंड 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का वही चैनल है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है चौपाल कार्यक्रम।

चौपाल कार्यक्रम हमारा वाला सब किसान भाइयों ने मांझी भाई नो राम राम। किसान भाइयों आज 2 अक्टूबर है, आज नो दाड़ो देश ने दुनिया बल्ले बहुत महत्व राखे है, क्योंकि आज अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनावी रहा और आना अवसर ऊपर पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनावी रही है। किसान भाइयों महात्मा गांधी सत्य ने अहिंसा ने आपो जीवन नो आधार बनायो, एनु मानवु हतो के हिंसा कई भी समस्या नो स्थायी समाधान नथी, प्रेम धैर्य सत्य ने वात करीने मोटा थकी मोटा विवाद नो समाधान आपण करी शक। तो किसान भाइयों आपणो जे ग्रामीण जीवन है आनी भी आपणी आपसी सहयोग और आपणो आपसी जे भाईचारो है एनो उपरसा जीवन टीकलो है, क्षेत्र में काम करीने गांव ने विकास तक एक बीजानो अपने सहयोग करो बहुत आवश्यक है, और कार्य कार्य परिवार में पड़ोस में या गांव में कई बात ने लेने छोटा मोटा अगर मतभेद थी जाए तो ऐसा समय में अपने गुस्सो या हिंसा नो रास्तो अपना बने बजाय शांति थकी बात करवी जुए और कया भी मसला नो समाधान अपने निकालो जुए। किसान भाई अहिंसा केवल मानवी ने प्रति आपणे व्यवहार तक सीमित नथी, बल्कि आ प्रकृति और पशु पक्षी ने प्रति भी आपणो जे जिम्मेदारी है एनी जिम्मेदारी मीन्स या एना व्यवहार में आ देखा है। पशुओं प्रति दया राखवी, पेड़ पौधों की रक्षा करवी, जल ने मिट्टी नो संरक्षण करवो और पर्यावरण में नुकसान नहीं पहुंचे आ भी आपणी जिम्मेदारी है। किसान भाई जई तरह की अच्छी फसल बल्ले खेतर में संतुलन जरूरी है, एमस अच्छा समाज बल्ले प्रेम सद्भाव ने आपसी सम्मान भी जरूरी है। तो आजे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती ने दाड़े यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ने अवसर पर आपड़े संकल्प ल के परिवार और समाज में भाईचारा ने अपन बढ़ावी नहीं रखेंगा, कया भी विवाद ने हिंसा ने सहारे ने बल्कि बात करीने संवाद करीने और समझदारी हाथे सुलझावना अपन प्रयास करेंगा और आपड़ा गांव में शांतिपूर्ण सहयोगी और गांव ने समृद्ध बनावा में आपड़ी जे जिम्मेदारी है।

0: भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: किशन भाई वासे आपने हाथे कोदर भाई हैं और कोदर भाई देखिए आपने बात करी ने आपने जिला में जो सब्जी है इन्हों उत्पादन की संभावनाएं कितनी है, सब्जी उत्पादन में किसान ने कितनो लाभ थी सके और सब्जी उत्पादन करवो कितनो आवश्यक है आना सब वातन लेने कोदर भाई देखिए बात कर। तो कोदर भाई सप्ती की पहले तो आपनो स्वागत है और आज कार्यक्रम हमरी रहे એના કિસાન ભાઈએ ને આપણી જે ખેતી ગ્રસ્તી હે એમ પરંપરાગત તરીકાથી જે ખેતી હૈ તો કરી જ રહે આપણા એ બડી માત્રામાં કિસાન સોયાબીન હૈ મક્કા હૈ કપાસ ભી કરે હૈ પર હાથે હાથે કુછ કુછ ગાંવો મે હૈ થોડો મોટો સબ્જીનું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું હૈ। આજે ભી આપણે કહી શકીએ કે બડી માત્રામાં સબ્જીનું ઉત્પાદન આપણે જિલ્લામાં નથી થઈ રહ્યું। તો આપ આ જે કાર્યક્રમ હાંભળી રહ્યા કિસાનભાઈ હે એને સબ્જી ઉત્પાદનને લઈને હું એને સલાહ લઉં।
2: किसान भाइयों सबसे पहले आप सबने जयराम जी ने सब्जी उत्पादन है ये अपनी परंपरागत खेती थे अपने करी रहे बाप दादा ने इन्हें हाथे हाथे सब्जी उत्पादन बहुत आवश्यक है। जिम के खेतर रहे थे खेतर में परंपरागत खेती ने हाथे हाथे वाड़ी पशुपालन ने इन्हें हाथे हाथे अगर तुम्हारे जे भी जगह हुए एना में कम से कम एक बीघा में अगर अपने सब्जी उत्पादन कर तो इन्हें छोटी मोटी अपने आसपास में जो बाजार हुए मौसम हुए इन्हें अनुकूल अगर अपने सब्जियों में चयन करी ने अपने सब्जी कर तो एक तो देसी तरीके थे कि सब्जी अपने कम खर्च में अने कम लागत में है ये अच्छी उपज आ ली जाए समय भी कम रहे ज्यादातर सब्जी यही 45 दाड़ में इन्होंने है ये फूल आवी जाए लगभग लगभग 1.5 महीनो थे कि 2 महीना थे एटले पहली तुड़ाई नी पहली कटिंग नी लगभग थई जाय
1: बराबर।
2: तो आ करवा थकी 60 दाड़ा बाद या 55 दाड़ा बाद भी कोई फसल नी पहली तुड़ाई था सब्जी में तो लगभग जो फसल चक्र सब्जी नो फसल चक्र है एने हिसाबे गणो तो लगभग लगभग 4 महीने तक एक सब्जी नो पौधो आप लगभग लगभग अनुमानित रहे तो कही सको के 60 दाड़ा तक आपने नहीं कटिंग आले हर एक दाड़ा सूडी ने 2 दाड़ा सूडी ने जीवी जीवी सब्जी हो एने हिसाबे आले तो हर 1-2 दिन में है ई आपड़े आपड़ा हाथ में कैश एक नगद रुपयो आवे
1: बराबर।
2: सब्जी जेमज वेसी बैंगन है टमाटर है मिर्ची है गोभी है अबड़ा आत्मार मेथी नो सीजन है हरी सब्जी नो सीजन है पालक है धनिया है मटर है टमाटर है तो आ प्रचुर मात्रा नाणनी खपत है जेटलू भी उत्पादन थाय लगभग लगभग कम पड़े केम के आपड़ा बापड़ा वागड़ परिक्षेत्र में है ई अहमदाबाद नी सूरत नी बड़ोदा नी अने आणियाळी नीमच नी अने रतलाम नी नी इंदौर मंडी तक नो भी सामान माल है सब्जी ना रूप में डेली रात्रे गाड़ियां करी टरकन टरके भरे भराई ना आवे
1: बराबर।
2: के ने के लोकल लेवल मां अगर आपणे करंगा तो एने थकी आसपास ना लोगों ने मतलब सस्ती दर में ताजी सब्जी भी मिलेगा तो सेवा भी है अने आसपास ना मार्केट में खपत थवा थकी है ई के ने के आपणे है ई स्वावलंबी भी बनेगा ने नियमित आपणी महीना 2 महीने उदी रोज जे हाथ खर्चो है ई परंपरागत खेती 4 महीना में 4.5 महीने में कितना तैयार था तो एक दाड़ो आपणे पैसो देखो
1: बराबर।
2: सब्जी उत्पादन थकी है हर एक दाड़े है जेम दूध वारो है एक 10 वस्ते में दूध बीसी आवे तेने दाड़े 2 रुपया 300 रुपया एक घर खर्चो एक बहुत बड़ी मदद केवा एक एटीएम नी तरह काम करे। तो जैसे दुग्ध उत्पादन आप कर रहे हो 2 पशु रख रहे हो तो इन्हें हाथे हाथे अपने सब्जी उत्पादन भी करो तो इन्हारू बहुत कारगर है ने बिल्कुल आत्मनिर्भरता नहीं बहुत बड़ी रीढ़ है ना आए थे कि स्वावलंबनी बहुत बड़ी बुनियाद है।
1: तो आप सब्जी उत्पादन ने अगर बात करो आप तो अई ने को के मिट्टी आने बल्ले कई उपयुक्त रहेगा
2: अपना बांसवाड़ा ने जलवायु ही सर्वथा उपयुक्त है कोई ज्यादा एने लेने अपने तनाव चिंता पर आवश्यकता नहीं
1: मतलब हर तरह की सब्जी थी
2: बिल्कुल हर तरह की सब्जी है जीवित अलग अलग तरह की मिट्टी है तो अलग अलग तरह की मिट्टी अनुसार अलग अलग सब्जी नु चयन भी आप करी सको फलदार है बेलवारी है
1: અચ્છા આ સબ્જીઓનું આપણે ચયન કરવાની વાત કરો તો

0: સબ્જીએ બદલે અછું ઉન્નત કિસ્મનું બીજ કેટલો મહત્વપૂર્ણ છે?
1: नहीं, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज के जमाने में तो जैसे तकनीक हमारे हाथों में आ गई है, तो तकनीक के आधार पर भी आप आज मीडिया मोबाइल ना उपयोग कर आप जानकारी माते संगठित कर सको, एकत्रित कर सको। कृषि विभाग भारत सरकार ना जे एक्सीलेंस सेंटर है, अगर हो 200 किलोमीटर में एरिया में हो, अपना खरी वड्रा है सेंटर फॉर एक्सीलेंस, उदयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, तो ये विशेष करीनी विशेष फसल हर हुई, कोई विशेष लहसुन की फसलों के लिए है, तो कोई है वो बेल वाली फसलों के लिए है, तो कोई टमाटर के लिए, कोई लहसुन अनुसंधान केंद्र, तो वहां पर ये तमाम तरह की जानकारी ऊपर से लगा करके नीचे तक उसकी पूरी पैकेज और प्रैक्टिस है, उसका प्रशिक्षण मिलता है, बकायदा सरकारी योजनाओं पर आपको वहां पर स्टेपेंड मिलता है, ने बिल्कुल उन्नत प्रजाति नो रोप ने बीज भी बकायदा ही फर्स्ट वक्त तमारे एंट्री लेवल माते ही तमारी फर्स्ट क्रॉप आवे तार तक ही भारत सरकार राज्य सरकार ना जो प्रोजेक्ट है इन्हें तन पूर्ण रूप से 100% अनुदानित है, जार तक इन फर्स्ट हार्वेस्ट ने कटिंग किसान ने आवी जाए तार तक એની સુરક્ષા હારું, એની સંભાળ હારું, વિભિન્ન પ્રકારની ભારત સરકારની હોર્ટિકલ્ચર મિશન લાગેલું થકેલું હે, ને મસાલા ઉદ્યોગ બોર્ડ હે, એપીડા હે, વિપણન કે લી ઓર બહુ સારી સંસ્થાએ લગી હુઈ હે, લેકિન કહીં ના કહીં કિસાન હે વો વાસ્તવ મેં પૂરી ઈચ્છા શક્તિ કે સાથ મેં ઇસમે આયેગા, ઓર એક બાર આ જાયેગા તો નિશ્ચિત રૂપ સે ઉસકો બહોત હી વાજિબ લાભ મિલેગા। वो साल दो साल अगर आप नियमित करते हो तो निश्चित रूप से कि मारो मानू है कि आप धीरे धीरे आपने जो परंपरागत एरिया नो जो खेती नो रकबो है ये धीरे धीरे आप निश्चित रूप से कि घटेगा ने कम करोगा और उसी अनुरूप में आपकी जो परिवार है उसकी आर्थिक समृद्धि ये बहुत बड़ी बुनियाद आने वाले समय में बन सकती है। और आप आसपास में देखो जिन्होंने भी इसको अपनाया उसका सर्वे करो कि दो साल पहले उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या थी, सब्जी उत्पादन करने से उनको नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, फायदा क्यों हुआ, ऐसे आसपास पड़ोस के उदाहरण और उनका अनुभव साथ में लेते उनके साथ में अनौपचारिक चर्चा करते हुए फिर आप परम क्रॉप का सिलेक्शन फसल चक्र का सिलेक्शन करें और उनकी राय को समावेश करते हुए अपने अनुभव और उनके अनुभवों को मिला करके मध्यम मार्ग से इसकी बहुत छोटे स्तर पर शुरुआत करें। इससे आपकी महिलाएं बच्चे हैं एक्स्ट्रा टाइम में जो हमारी शारीरिक गतिविधियां उसको भी होगी कि कम लागत में बहुत ही उन्नत तरह से हमारे समृद्धि का एक द्वार खोल सकता है।
0: कुल मुलाई ने आप कहवा चाह रहे हो कि भाई सब्जी उत्पादन देखिए बहुत अच्छा लाभ है, उत्पादन भी अपने अच्छो थी जगह, मेरी खपत भी अच्छी है, कीमत भी अच्छी मिली जा है, और अपने अटले भी पालवे कि भाई अगर अपने स्थानीय बाजार में नहीं बेचते तो परिवहन की जो लागत है ये कम थी जाए, तो वजह थी कि अपने आने थी कि लाभ है ही वधारे है। तो किसान भाइयों आपने परंपरागत खेती हाथे हाथे जम कुदर भाई कह दू के भाई आपने अर्ध बीघो है एक बीघो है ए थी की शुरुआत करी सको, जिम जिम अनुभव थतो जा है एने हिसाब थी कि आपने आना रकबा ने बढ़ावी सको। तो परंपरागत खेती हाथे अगर सब्जी नु उत्पादन पर आपड़ा किसान भाई ध्यान देगा तो उनो आर्थिक जो सशक्तिकरण है ये संभव थी सके। तो कुदर भाई आपने आनी पूरी बातचीत बल्ले बहुत बहुत धन्यवाद, આપે આપણા જે અનુભવ સાજા કર્યા હે। ઓર કિસાન ભાઈઓ આજનો સમય હે તો હવે એક પહેલા ભજન આંબરો ફિર એના બાદ અગાડી વાત કરો।

0: Pues...
1: किसान भाइयों, खरीफ मौसम अब आप लगभग अंतिम चरण में है और अपने क्षेत्र में मक्का, सोयाबीन, धान जीवी जो फसलें आप करी रखी थी इनमें थी कि मक्का खास करी नहीं, सोयाबीन कुछ दड़ मब्बा और है, पर आज सब फसलें हैं ये पकई ने अब कटाई बल्ले तैयार थी रही थी कि है आवा समय में फसल नहीं सही समय पर कटाई करवी और कटाई ने बाद इनो ठीक तरह की प्रबंधन करवो बहुत जरूरी है। किसान भाई, फसल नी कटाई में अपने जल्दबाजी नहीं करवी, हर फसल नी कटाई एने पकवाने सही चरण ऊपर से अपने करवी जो जिनमें बहुत जल्दी कटाई करवा थी कि जे दाना है इनमें नमी वधार रही जाएगा तो उपज और इन जो गुणवत्ता है प्रभावित थागा जिन्हें वजह थी कि आपने एना भाव अच्छा नहीं मिलेगा और जरूरत थी कि वधारा अगर आपने देरी करेंगा तो जे दाना है झड़वा लगेगा, पक्षी थे कि नुकसान थागा और अचानक थमावारी से बारिश है, मान लो कई वक्त मावट ने रूप में बारिश थे गया, जाते जाते बारिश थे गई तो आवा में आ बारिश अपनी फसल ने खराब करी सके आनो खतरो भी बनेलो रहेगा। कटाई में पहले हमेशा किसान भाइयों मौसम नो जे पूर्वानुमान है एना माते भी आपने नजर रखवी जोईए जिने बाद आपण आ सुनिश्चित करी सके कि भाई मौसम ने जे पूर्वानुमान है एने हिसाब थी कि बारिश नी केटली संभावना है और बारिश नी अगर संभावना हो और फसल अगर पूरी तरह की पकी गई है हुकाई की है तो आवी स्थिति में आपने समय ऊपर कटाई करवानी जे योजना है बनाई लेवी जोईए और खेतर में जे कटेली फसल है इन्हें बारिश थे कि बचाओ बल्ले अपने सुरक्षित स्थान में जे व्यवस्था है ये पहले थे किस कर लेवी जोईए। किसान भाई, कटाई ने बाद मड़ाई करते समय भी सावधानी रखनी पड़े क्योंकि मड़ाई ने बाद अनाज ने साफ करीने अच्छी तरह थी ने हुकाबो बहुत आवश्यक है, अनाज में वधारे नमी रहे तो इनो अगर नमी रहे ने भंडारण करेंगे तेण में फफूंद और कीट लगवानी संभावना बढ़ी जा, अटले हमेशा भंडारण में पहले अनाज ने इनो जे नमी नो स्तर है ये अच्छो बनावी ने राखी ने पसे आपने ने हुकाबो देवो जरूरी है। भंडारण ने बल्ले साफ सूखो और हवादार जे स्थान हो एनो चयन करवो जोईए, अनाज नी जे बोरी है एने हीदू जमीन पर राखवाने बजाय लकड़ी ने जे पट्टा है या कई एवा ओसा स्थान पर मेनवो जोईए और भंडारण में स्थान में नमी और पानी के रिसावनी समस्या हो एवो नहीं रहेवो जोईए आनी वातनो भी आपणे ध्यान राखवू है और समय समय पर जे भी आपणो भंडारित अनाज है एनो निरीक्षण करतो रहेवो है, जांच करतु रहे है और इन्हें देखतु रहे है। तो किसान भाइयों, कटाई मड़ाई ने समय जे कृषि यंत्र जेनो अपन उपयोग कर एना समय भी अपने सुरक्षा नो विशेष ध्यान रखो है, खास करीने मशीन सालव जे थ्रेशर मशीन जो है तो इनी वगत अपने ढीले कपड़े पहरवाथी की बचवू जोईए और सालू मशीन में कार्य इनी सफाई या मरम्मत करवानी कोशिश अपने बिल्कुल नहीं करवी जोईए। मशीन में कई प्रकार ने कोई खराबी आवी जा तो खराबी आवे इन्हें पहले इन्हें अपने बंद कर दू और इन बाद इनी जांच करीने इन्हें उचित मरम्मत है एना काम ने अपने कर लो जोईए। और किसान भाइयों देखो, फसल नी कटाई ने बाद खेतर में फसल ना अवशेष भी रही जाए तो जे अवशेष रही जाए आ फसल ने अपने अवशेष ने जलाबन ने बचाई एनो जे उपयोग है पशु चारा ना रूप में कम्पोस्ट या जे जैविक खाद है एने बनाबन रूप में अपन करी सके, आना थी कि खेतर में जे जैविक पदार्थ है एने बढ़ाबा में मदद मिले और जे मिट्टी में सेहत है ये भी आना थी कि बढ़िया बनने रहेगा। तो किसान भाइयों, आपड़ी जे महीने ने मेहनत है ये मेहनत अवे रंग लावी रही है और इनी मेहनत थी कि तैयार से फसल है एने अपने सुरक्षित घर तक पहुंचाड़ो भी एटलो महत्वपूर्ण है जेटलो फसल नु उत्पादन करो, अटले सही समय पर कटाई, सावधानी पूर्वक मड़ाई ने उचित सुखाई ने हाथे हाथे सुरक्षित भंडार एनो करवो।

अभी चौपाल कार्यक्रम प्रसारित किया गया। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर जी आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7:30 होने को ही आइए सुनते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
0: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
2: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
4: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
3: वो कैसे?
4: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना? कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
3: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
5: खेतीबाड़ी सुन बड़ा सब काश्तकार भाई लोगों ने महेश भाई को राम राम और अभिलाषा जी आपने भी राम राम कार्यक्रम
6: सुना। राम राम महेश भाई आपने भी कार्यक्रम सुन रहे सगला किसान साथिया ने भी हमारी ओर सु घनी घनी राम राम सा।
5: देखो शाम को भगत है
6: जी
5: और किसान साथी अपना देखो दिन भर का खेती किसानी का काम पूरा करके और बैठे ही देखो और दिन थोड़ा जल्दी ढलवाने लग गया और खेती बाड़ी का काम तो ऐसे है कि देखो अब एक काम खत्म हो गया और दूसरों शुरू हो जाए।
6: बिल्कुल सर।
5: पर आमदनी चौकी रहे और एक काम के साथ में दूसरी जगह से भी दो पैसा आता रहे और खाने पीने की बात है तो खेती बाड़ी के लिए देखो दूध घी खाए बिना मेहनत को काम को नहीं हो।
6: बिल्कुल सर।
5: और दूध घी आवा देखो गाय भैंस रखा आपा तो बस अपने दूध मिले और बेच के आपा दो पैसा भी कमा ले। तो पशुपालन की जो बात है कि भी उन्नत पशुपालन ये कमाए देखो आपा ये समझा कि भी कई चीजें से मिलके ही बना है उन्नत पशुपालन कि अपना जगह दुधारू पशु ही बाकी आहार की व्यवस्था बाकी आवास की व्यवस्था और कई चीजें हैं कि चौकी नस्ल का आपा पशु लेके आवा जद खरीद के लियावा और बने टाइम पर टीका लगाना कई काम ही जैसे मिलके अपना जगह पशु ही अपने चोखो उत्पादन देवे
6: जी। और महेश भाई जब आप बात करा यहाँ सब चीजा की तो सुनिया में से सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह छे कि यदि उन्नत पशुपालन आप करबो चाहिए छा तो आपने सबसे पहली उन्नत नस्ल का पशु का चुनाव करना चाहिए। इनके पास बात आओ छे बीने राख बाकी तो भाई आप बीने जो राख रहे हैं बीको बाड़ो है बीकी साफ सफाई है बीने सर्दी गर्मी से बचाव है बरसात का मौसम से बचाव है तो ये जो सब सुविधा वहाँ ये सब व्यवस्था वहाँ यदि आप अपना बाड़ा की अपनी पशुशाला की कर ले भाई पानी को जो निकास है और जो कह बचे ना कि अलग अलग मौसम के हिसाब से आपने पशुशाला को ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए आप यह देखा कि अब देखो जो यो मौसम आ रहे हो सर्दी को मौसम आवलो तो आप यह देखा कि आपने जो पशुशाला छे उन्हें यह व्यवस्था रखा कि जो सीधी ठंडी हवा आवली वह अपने पशु तक सीधी न पहुंच सके और अब भी आप देखा चाहे कि सुबह और शाम हल्की ठंडी पड़वा लागी।

0: છે તો આપણા પશુને ભી હિસ્સે આપણને બચાવ કરી રાખડો હે.
1: બિલકુલ પક્કો બાડો હવે ઓર સાફ સુથરો હવે જરૂરી હે કે ભી પશુ આરામ સે રહે સકે. ઓર આહાર કી બાત હે કે ભી દેખો પશુને ચોખ્ખો આહાર મિલનો ચાહે વિકમાય સૂખો ચારો હરે ચારો ઓર ખનિજ લવણ ભી હોના ચાહે. મોસમ કે અનુસાર જો હૈ પશુ કો આહાર બદલતા રહેવા. સર્દી હૈ તો ભી સર્દી કો, ગરમી હૈ તો ગરમી કો, ઓર બારિશ કે અનુસાર જો પશુ ને જી મોસમ કે અનુસાર આહાર મિલનો ચાહે ભી હિસાબ સે ઉપા આહાર દેવા તો ચોખ્ખો ખાઓગો. જદી ભી બીચ મેં દેખો ચોખ્ખો દૂધ મિલોગો, ચોખ્ખો ઉત્પાદન મિલોગો. ઓર ચોખ્ખો આહાર સે જગા ફિર દેખો જો દૂધ પી કે જગા નવજાત બછડા હી બે ચોખ્ખા બેલ બનેગા, ચોખ્ખી ગાય બનેગી હૈ ને
0: જી.
1: और साथ में देखो पशुओं ने अपना देखा कि भी जो का संक्रामक रोग हो जाए ही तो बासु बचाव के लिए देखो टेम टेम पर जो का टीका हो पशु चिकित्सालय ले जाके लगवाना चाहिए.
0: और सबसे बड़ी बात महेश भाई आपा देखो अपना पशु ने रोज देखा छा बाकी रोज सार संभाल भी करा छा पर जी दिन भी आपने लगे कि आपनो पशु रोज से थोड़ो सो अलग दिखाई दे रहे छे वी की दिनचर्या में थोड़ो सो बदलाव छे वी का खान पान में थोड़ो सो बदलाव छे तो आपने तुरंत वी की सार संभाल करनी छे और नजदीक का जो पशु चिकित्सक है वहां से राय मशवरो करनो है.
1: और ए टाइम पर देखो पशुओं ने जो पेट का में कीड़ा पड़ जाए ही बाकी दवाई भी पिलाई जावे है
0: जी
1: तो पशुओं ने देखो समय समय पर किसान भाई अपना जगह ले जाकर पशु चिकित्सक पर और जगह पेट के कीड़ा की दवाई पिला लेवे ताकि पशु ने देखो चोको खानो पीनो चारो पानी जदी लागेगो जदी को पेट जो है कीड़ा से मुक्त रहेगा
0: जी सर.
1: और यह है कि देखो आप चाहे मुर्गी पालन करा अपने खेता गवाए ठीक है या बकरी पालन करा भेड़ बकरी आप पाला गाय भैंस हो चाहे ऊंट कुछ भी कोई भी आप पशु पाला तो बीच चोको उत्पादन आपने यदि मिले की चोखी नस्ल हो बिकी आहार की व्यवस्था बिकी और घूमबा फिर की बिकी चरबी चरबा ने जावे तो बात जगह भी थोड़ी होनी चाहिए
0: जी. और देखो सर लाडला कार्यक्रम में आप बात करें अच्छा स्वच्छता की तो स्वच्छता जी तरीका से आपने तानी जरूरी है उन्हीं तरीका से अपना जो पशु है भी के तानी भी स्वच्छता बहुत जरूरी है. टेम टेम पे आप यहाँ देखा कि अपना पशु है भाई अपना गाय है भैंस है बकरी है वाने ने लाता रहे वहां का उठवा बैठवा की जो जगह है वह स्वच्छ होनी चाहिए वहां को जो भोजन है वो भी स्वच्छ और पौष्टिक होना चाहिए. इनके साथ साथ वहां का पीबा का जो पानी की व्यवस्था है वह भी साफ सुथरी और स्वच्छ होनी चाहिए.
1: हाँ बिल्कुल साफ पानी होना चाहिए बिना समय समय पर बदलता रहे जबकि पात्र में जगह आपको चारो खाए बिकी भी नियमित रूप से सफाई होती रहनी चाहिए
0: जी.
1: कोई सड़ो गिलो चारो भी कमाए नहीं रहना चाहिए जगह अपना गर्भित पशु ही बाकी भी विशेष रूप से देखभाल होनी चाहिए. और कोई दिक्कत आवे प्रसव के समय तो जगह पशु चिकित्सक की बाकी सलाह लेनी चाहिए. यह ना कि भी अपनी तरफ से कोई आप कोशिश कर दिया है या कोई जो है पशु तकलीफ पहुंचा दी
0: खुद को डॉक्टर अपने खुद ने न बनना.
1: हाँ बिल्कुल
0: तो देखो सर यही छोटी छोटी बात और छोटी छोटी सावधानियां और ध्यान रखवा की बात है कि जहां से आप उन्नत पशुपालन कर अच्छो से अच्छो फायदो उठा सका छा. और महेश भाई देखो कार्यक्रम में भी आप फायदा की बात कर लेवा और कार्यक्रम ने ले चला जानकारी की ओर. तो देखो सर जानकारी देवा खातिर अपने साथ राजेंद्र कुमार शर्मा है जो बतावला की कृषि विकास में कृषि यंत्र को योगदान काई होवे छे और वहां से आप काई तरीका से फायदो उठा सका छा.
1: तो जानकारी देवा
0: देव सर
2: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुन लिया किसान भाई. और अब स्टूडियो में मौजूद है राजेंद्र कुमार शर्मा जी उपनिदेशक है कृषि अभियांत्रिकी कृषि आयुक्तालय जयपुर जो पधारिया है और आप यहाँ से बातचीत कर ला कृषि विकास में कृषि यंत्रा को योगदान.
3: सबसे पहले तो किसान भाइयों मैं आप सबसे राम राम करता हूँ. पुराने जमाने में जो खेती होती थी वो अपने बैलों से बैलों की जोड़ी से अपने जो खेती होती थी और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सब चीजें बिल्कुल ही बदल चुकी हैं. आज किसान भाई सभी जो है जो भी खेती के काम है जो भी हमारी संक्रियाएं होती हैं जुताई है बुआई है जो भी अपनी संक्रिया सारी निश्चित समय पर करनी होती है और इसके लिए हमें आजकल गांव में जैसे देखा जाता है कि अपने मजदूर नहीं मिल पाते खेतिहर मजदूर तो कृषि यंत्रों को इसलिए काम में लेकर के अपने जो भी काम है किसान भाई आप लोग जो है समय पर पूरा कर सकते हैं और बिना कृषि यंत्रों के आज खेती की परिकल्पना मेरे हिसाब से नहीं की जा सकती.
2: अड्डा एक सवाल वो जानबो चाहूँ की खेती में सभी काम है निश्चित समय पर कराया जावे.
3: हाँ जी
2: कौन कौन सा काम आसान हुआ है यंत्रा की वजह से.
3: देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं कि खेती से संबंधित सभी कामों को निश्चित समय पर किया जाता है तो ही अपनी खेती जो है मुनाफे का सौदा हो सकती है नहीं तो किसान भाइयों आपको नुकसान भी हो सकता है. अब जैसे मैं बताऊं जैसे आप वर्षा आधारित जो खेती करने वाले हमारे किसान भाई है बारिश शुरू होने से पहले वो खेत की जुताई करके अपने खेत को तैयार रखते हैं. बारिश होते ही बुआई का काम शुरू करना होता है खरपतवार को समय पर हटाना होता है फसल पर समय पर आवश्यकता अनुसार जो भी आपको

0: मान लिया कीड़े वगैरह कीटे पतंगे कुछ भी लग गया हो, कोई रोग लग गया हो, तो ऐसे में कीटनाशक आदि का भी स्प्रे अपने को करना होता है। फसल के पकने पर मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए कभी भी मौसम खराब हो सकता है तो हमें तुरंत फसल कटाई की व्यवस्था भी करनी होती है। फसल कटाई के बाद में फसल घाई का काम किया जाता है जिसमें फसल से दानों को अलग किया जाता है, फिर दानों को साफ और फिर उसकी ग्रेडिंग का काम किया जाता है, तब कहीं जाकर के हमारे किसान भाई अपनी फसल को बाजार में बेचने के लायक बना पाते हैं।
1: कौन सा यंत्र शुरुआती तौर पे किसान काम में लेवे है और किस तरीका से वहां को काम आसान हुआ है?
0: सबसे पहले बीजोपचार की बात आती है, जो पंचायतों में अपने जो एक सीड टिटिंग ड्रम अपना रखा हुआ है सभी जगह करीब करीब, उसमें अपने जो भी बीज हम ले रहे हैं उसको उसमें अपने जो निश्चित मात्रा में अपने जो केमिकल्स वगैरह जो भी हम बताते हैं, जो भी रिकमेंडेड है हर फसल के लिए, हर बीज के लिए अलग अलग, उनको डाल के उसमें मिला करके उसके बाद में फिर उसकी बुआई की जाती है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे सारे जो भी यंत्र काम में लिए जाते हैं अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए, संक्रियाओं के लिए, उसमें से जुताई के लिए जैसे जो मुख्यतः हमारे जो चल रहे हैं उसमें एमबी प्लाऊ है, डिस्क प्लाऊ है, रोटावेटर है, बुआई के लिए जो है सीड ड्रिल है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, मल्टी क्रॉप प्लांटर है, कटाई के लिए रीपर है, गहाई के लिए थ्रेशर और सीड क्लीनर ग्रेडर, ये सारे जो यंत्र हैं ये किसान भाइयों के लिए सारे कार्यों को बिना मजदूरों पर निर्भर रहते हुए अपनी खेती का काम करने के लिए पर्याप्त होते हैं और इनसे अपना काम अपना समय पे करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा वो कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया बात बताई, लेकिन इतना यंत्र एक किसान के लिए तो खरीद वो तो आसान को ना, माना कि काम है बहुत आसान हुई है तो कई किसान आपको उपयोग किराया पे लेके करे, कई किसान सामूहिक तौर पे खरीद कर सके, कई सरकार की ओर से कोई व्यवस्था ऐसी है कि जगह जगह आप भी काम में ले सको?
0: सबसे महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है कि यंत्र खरीदना ही एक बहुत बड़ी अपना जो है ना खेती का एक पूरा कार्य जो है अपना नहीं हो गया है। यंत्र हम जब भी खरीदते हैं तो यंत्र की लागत बहुत ज्यादा होती है और एक हमारे जो किसान भाई लघु सीमांत जो छोटे किसान है वो क्या होगा कि जैसे एक फसल में वो ज्यादा ज्यादा दो दिन या तीन दिन काम आ सकता है, तो उस यंत्र में उन्होंने जो भी पैसा लगाया फिर उसको साल भर उसको संभाल के रखना यंत्र को अपने काम में लेने के बाद में, फिर एक ही खेती में एक ही यंत्र काम में आता नहीं है तो फिर कितने तरह के यंत्र वो लेने के बाद में उसको चलाने के लिए ट्रैक्टर भी चाहिए। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में भी और इस साल भी हमारे जो लघु सीमांत भाई है वो अपने खेती के जो अपनी ऑपरेशन संक्रिया है, वो बुआई जुताई सारी संक्रिया, फसल कटाई भाई, इन सब के लिए हमने एक कस्टमाइजिंग सेंटर, कृषि यंत्र किराया केंद्र जिसको बोलते हैं, उनकी एक योजना हमने शुरू करी थी सन 2020-21 से वो शुरू है। और
1: बिल्कुल देखो, आप बात कर रहे हैं कृषि यंत्र की, तो मोबाइल को जमाना है, तकनीकी युग है, कई बार देखा कि विदेशा में जो खेती कर रहा है वाकई में यंत्र है, वो कटाई से लेकर के अनाज निकालबा से लेकर के सब चीजा, आज की बात करा आप अगर प्रदेश में बात करा तो कई चीजा यंत्र इतना महंगा है कि आप उपयोग में कम ले रहा है या बाकी किरायो भी इतना ज्यादा लागे, और अगर आम किसान काम में ले वो चावे तो की तरीका सु और कटो सु ले सके?
0: देखिए, अगर खुद अगर वो खरीद के रखता है अपने पास में तब तो उसकी मर्जी, तब अपना काम में ले सकता है या खुद अपने अड़ोसी पड़ोसी
1: अगर वो सक्षम है तब तो खरीद सकता है,
0: तब तो खरीद सकता है। और अगर वो खरीद नहीं सकता है तो जो कस्टमाइजिंग सेंटर्स जो हमारे बने हुए हैं उन पर हम एक मोबाइल ऐप आधारित एक मॉनिटरिंग सिस्टम, उसमें राज किसान कस्टमाइजिंग सेंटर ऐप के नाम से एक मोबाइल ऐप बनाया है, उस ऐप पर जितने भी हमारे राज्य में कस्टमाइजिंग सेंटर्स जो भी स्थापित हो रहे हैं या हुए हैं वो सब उनकी पूरी उसमें डिटेल उनका विवरण होगा, उनके पास किस किस सेंटर पे कितने कितने कौन से कृषि यंत्र ट्रैक्टर सहित उपलब्ध हैं और वो कब आपने बुकिंग करा सकते हैं, किस तारीख में बुकिंग करा सकते हैं, कौन सी फसल के लिए बुकिंग करा सकते हैं, सारी फैसिलिटीज उसमें होगी। कंफर्म होने के बाद बुकिंग का उनके पास में रेस्पॉन्स भी आएगा, वापस जवाब भी आएगा कि आपकी तारीख इतनी तारीख को इतने बजे आपको ये मशीन आपके खेत में पहुंच जाएगी, रेट लिस्ट भी उसमें फिक्स होगा, उसमें आपका लगभग बिल कितना आएगा वो भी बता दिया जाएगा। तो आपको बहुत ही मतलब किसान भाई को सुविधा इससे हो जाएगी, इससे एक मॉनिटरिंग हो जाएगी किस कस्टमाइजिंग सेंटर ने किस एरिया में किस खेत में कितना काम किया, ये सभी चीजें ऑनलाइन होगी और हम सभी लोग इसको डैशबोर्ड पे भी देख सकते हैं, और कोई भी ऐसी समस्या है जिसमें माली किसान भाई को कोई दिक्कत आई तो उसमें अपना जो है ग्रीवेंस अपनी शिकायत भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, अब बट बात कर रहे हैं कि किसान ये तकनीक से जुड़े, कृषि यंत्र से जुड़े जानकारी सबाने है, कौन कौन सा यंत्र ऐसा है जिसको उपयोग किसान ने ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए जिसको की समय की बचत भी हो और बाकी जो कृषि तकनीकी है कृषि को जो उत्पादन है भी के मायने भी कोई ज्यादा फर्क कौन पड़े, और जो आप किराया की बात करो कि जितनी मजदूरी जूं काम करे बीसों कम लागत के मायने वहां को काम हो जाए।
0: सर सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन ये एकमात्र जो अपने कृषि यंत्रीकरण की योजना भी चलाई जा रही है और इसमें जो मैं आपको संक्रियाओं के हिसाब से बताता हूं जैसे खेत की तैयारी के लिए है, फसल बुआई के लिए, खरपतवार की सफाई के लिए, कीटनाशक के स्प्रे के लिए, फसल कटाई, गहाई, सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग से संबंधित लगभग सभी तरह के यंत्र इसमें किसान भाइयों को अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं। और जो अब आप बात

0: रहे हैं कि कौन कौन से उन्नत कृषि यंत्र हैं जिनके उपयोग से वो अपने समय की बचत कर सकता है और बहुत अच्छे से खेती का काम अपना कर सकता है। तो मैं सबसे पहले जो एक जमीन को लेवल करने की जो बात आती है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा यंत्र है, लेजर लैंड लेवलर के नाम से बोलते हैं इसको। ये हमारे कस्टमाइजिंग सेंटर्स पे, सभी पे तो नहीं है लेकिन कुछ कस्टमाइजिंग सेंटर्स पे भी उपलब्ध है, और कुछ जगह किसान भाई अपने जो अपने काम में लेते हैं उसके बाद में अपने साथी लोगों को भी अपने किराए पे देते हैं। ये यंत्र जो है खेत की अपनी सटीक जो लेवलिंग है उसके काम में आता है, उसे पूरा स्लोप मेंटेन करता है। इससे समय की बचत, कम त्रुटि रहित काम करके कम परिश्रम में भूमि को आराम से समतल किया जा सकता है। इसकी जो कार्य क्षमता है जैसे 700 से 850 वर्ग फीट प्रति घंटा प्रति बीघा होती है। इसकी लागत लगभग 3.5 लाख रूपये के करीब है, जो की किसान भाई नहीं ले पाते हैं, जो सक्षम नहीं होते हैं, तो वो कस्टमाइजिंग सेंटर से ले सकते हैं
1: जी।
0: इसके बाद में जैसे एक उन्नत कृषि यंत्र एक और है, अपना जुताई के काम आता है, 2 बॉटम या 3 बॉटम रिवर्सिबल मोल्ड बोट प्लाउ
1: जी।
0: इसको जैसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, उसकी जो है मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए ये यंत्र काम में लिया जाता है। इसको मिट्टी पलट हल भी बोलते हैं। ये अपना 30 से 50 HP तक के ट्रैक्टर से चलाए जाते हैं। इसका जो प्रयोग है अपना जो प्राथमिक जोत है, शुरुआत में जो अपन जोत करते हैं, जुताई करते हैं, उसके लिए लिया जाता है
1: जी।
0: ये खेत में 1.5 फरो या जैसे असमान धसे हुए जो है ना स्थान है, सिर्फ खड्डे वगैरह नहीं छोड़ता है, एक समान अपने मिट्टी पलटता है। और इसकी कीमत लगभग 60,000 रूपये से मॉडल के हिसाब से 1,20,000 रूपये तक होती है
1: जी।
0: और इसकी कार्य क्षमता 1 बीघा प्रति घंटा तक की होती है
1: जी।
0: इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सबसे ज्यादा आज की तारीख में जो चलने वाला यंत्र है, जो 3-4 तरीके ऑपरेशन एक ही बार में कर देता है, ऐसे यंत्र के बारे में आपको बताता हूँ। उसका नाम है रोटावेटर। ये यंत्र मैं आपको बताता हूँ कि लगभग 2010-11 के करीब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में ये हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, इसको लोगों के चलन में लाने के लिए। इसको पहले जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जीएसएस केवीएसएस के थ्रू हमने उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था आरकेवीवाई में, और वहां पे रखवाया था और उसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था किसानों के खेतों पे। तो वो ये यंत्र इतना काम का है कि आपका जो सबसे पहले आपका मान लीजिए फसल अवशेष है उसके ऊपर में चलाए तो पहले तो फसल अवशेष को काट देगा, काट करके उसको पूरा मिट्टी में मिला देगा, जमीन को भुरभुरा बना देगा, उसके बाद में उसके पीछे एक पाटा चलता है तो आपके पूरे खेत को भी लेवल कर देता है। तो यूं करने के बाद में आपका रोटावेटर जो है आपके 4 ऑपरेशन एक तरह से हो गया, उसके बाद में सीधे आपको सिर्फ बुआई करनी है। तो आप देखिए कितना बढ़िया एक उपकरण हो गया आपके लिए। ये हरी खाद को भी एक तरह से मिट्टी में मिला देता है और इसका प्रयोग गीली सूखी दोनों तरह की भूमि में किया जाता है, चावल में भी कर सकते हैं। और इसकी कार्य क्षमता जो 3 से 4 हेक्टेयर प्रतिदिन तक की होती है, इसकी लागत जो लगभग 70,000 से 1.25 लाख रुपए तक की होती है।
2: ये यंत्र को उपयोग किसान किराए पे लेवे तो कहीं समय के आधार पर किराया लगे या खेती की आकार के आधार पर?
0: इसमें जो कस्टमाइजिंग जो हमारा मोबाइल ऐप बना हुआ है उसमें प्रति घंटा के हिसाब से भी उसमें किराए की दर है, प्रति एकड़ के हिसाब से भी है और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी है
2: जी।
0: जितना उसका काम है, जितना जिस तरह से वो लेना चाहता है किराए पे, उसके उसी तरह से उसकी रेट्स होती है। तो वो मान लीजिए उसको 3 घंटे के लिए चाहिए तो 3 घंटे की रेट लग जाएगी, 2 एकड़ के लिए तो 2 एकड़ के हिसाब से रेट लग जाएगी। जैसा वो चाहते हैं उसी हिसाब से उनकी सुविधा के लिए अपन ने कार्रवाई कर रखी है।
2: बिल्कुल। और कौन कौन सा यंत्र है, की तरीका से काम करें?
0: अब देखिए सारे किसान भाई हमारे जो है ट्रैक्टर ले नहीं सकते, 6-7 लाख-8 लाख रुपए के आसपास का ट्रैक्टर आता है और कम क्षमता का अगर हमने ट्रैक्टर ले लिया तो वो काम भी नहीं आप कर पाएगा किसान भाइयों का हमारा। तो इसके लिए एक सब्स्टिट्यूट है पावर टिलर। पावर टिलर है एक इस तरीके का इम्प्लीमेंट है जो की आपको बिना ट्रैक्टर के भी छोटे जो अपने यंत्र है, रोटावेटर है, चाहे सीड कंफर्टाइल ड्रिल है, चाहे सीड ड्रिल है, चाहे कल्टीवेटर है, चाहे लेवलर है, सबको उस पर आप लगा करके अटैच करके ट्रैक्टर का काम करते हुए आप उससे अपनी खेत की जुताई अपना काम अपना खेती का कर सकते हैं
2: जी।
0: 1 से 2 बीघा तक प्रतिदिन काम करने में सक्षम है, लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में इसकी कीमत होती है।
2: अच्छा,
0: अब सीड का फर्टिलाइजर ड्रिल, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है। लोबाग में जहां भी मैं जाता हूँ मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि सीड ड्रिल को आप रिप्लेस कीजिए। सीड ड्रिल से आप खाली सीड ड्रिल कर रहे हैं, आप उससे खाली अपना सीड डाल रहे हैं
2: जी,
0: जबकि सीड का फर्टिलाइजर ड्रिल अब अपने को यूज करनी है। किसान भाई समझ भी गए और काफी ये आजकल प्रचलन में है। इसमें क्या होता है कि सीड और फर्टिलाइजर उर्वरक के लिए दोनों के लिए अलग अलग कक्ष बने होते हैं, अलग अलग उसकी पेटी बनी होती है। एक फल से उसमें बीज निकलता है और दूसरे फल जो उसके बगल में होता है उससे उर्वरक निकलता है।
2: अच्छा,
0: दोनों को हाथ की हाथ बीज के पास ही उसको उर्वरक मिलने से उसका बीज का जो फुटान है वो तुरंत होता है। तो ये किसान भाई जो है इसको रिप्लेस करें, रिसीट का फर्टिलाइजर ड्रिल को ज्यादा से ज्यादा काम में लें। इसकी जो है कीमत लगभग 25,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की होती है। इसी तरह से जीरो टिल सीड ड्रिल है
2: जी।
0: इसमें क्या है कि अपने को खेत को तैयार करने की जरूरत नहीं है, पहले आपने जो फसल बो रखी है उसी पे सीधा अपन ड्रिल करके अपना सीड ड्रिल अपना अपना काम कर सकते हैं। इसको जीरो टिल बोलते हैं, इसमें कोई भी टिलेज की आवश्यकता नहीं होती है
2: जी।
0: इस तरह से हम बात करेंगे एक्स्ट्रा रिपर या एक्स्ट्रा कम्बाइन की। अब दाने वाली कंबाइन चलाने के बाद में हम जो भी अब बड़ा वाला जो कंबाइन चलाते हैं उसके बाद में पौधों के डंठल जो है खेत में छूट जाते हैं, उनसे भूसा बनाने के लिए स्ट्रा रीपर प्रयोग में की जाती है, जो कि आपके जो बचे हुए जो

0: डंठल है उनको बिल्कुल जमीन के पास से काट देते हैं, जिससे खेत में आपके अनावश्यक अवशेष बाकी नहीं रहते हैं। ये एक ट्रिल टाइप की मशीन होती है, इसमें ट्रैक्टर की पीटीओ से इसको चलाया जाता है
1: जी।
0: और ये इससे जो है आपके डंठल है स्टॉक कंबाइन के जो कटे हुए इकट्ठे होते हैं वो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल करके और इसमें तारों की जाली से भूसा आगे चलकर ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली होती है इसमें तारों की जाली होती है उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्रा बेलर की। अब दाने वाली कंबाइन चलाने के बाद जो पौधों के डंठल खेत में भी छूट जाते हैं उनसे बेल बनाने के लिए, उनके बेल मतलब कि जैसे आपका भूसा अलग अलग पड़ा हुआ है उसको उठाने में ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी समस्या आती है, तो उसके बजाय ये स्ट्रा बेलर को जब हम काम में लेते हैं तो उसकी एक कंप्रेस करके एक बेल ऐसी बना देते हैं कि आपके जो है ना आराम से उठा सकते हैं उसको, कोई भी आदमी उठा सकता है। ये बेल आती है आपके कई तरह की आती है, रेक्टेंगुलर भी आती है मतलब आयताकार आती है, गोल भी आती है, रेक्टेंगुलर ज्यादा चलती है। इसमें स्ट्रा का पिकअप असेंबली और स्ट्रा को कंप्रेस करके बांधने की इकाई होती है। स्ट्रा बेलर का इसका लगभग अनुमानित मूल्य जो अपना 6 से 8 लाख रुपए का होता है।
1: तो एक तरफ तो रोजगार की बात कर रहा है और दूसरी तरफ आदमी और जो मजदूर काम करे भी जगह हो मशीनरी काम में ले, हालांकि काम आसान बहुत ज्यादा हो जाएगा।
0: बिल्कुल
1: है। तो किसान ने कई कहनी चाहो क्योंकि कृषि को विकास जद आप कर सका, क्योंकि बिना कृषि यंत्र को जो योगदान के या को विकास भी संभव हुआ नहीं। कितना उपयोग किसान ने लेना चाहिए जी यंत्र को और कितो में कृषि का विकास में यू योगदान दे रहा है।
0: देखिए आज की तारीख में तो कृषि जो है, कृषि की जो संक्रियाएं हैं, समय पर जो हमें अपना खेती का कार्यक्रम करना होता है उसके लिए यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। बिना यंत्रों के आज खेती को हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे हम इसको कर पाएंगे। और खेती का जो भी काम है उसको करने के लिए हमारे जो यंत्र हैं वो सबसे पहली बात तो है कि उसकी लागत को कम करते हैं, मजदूरों पे जो हमारी निर्भरता होती है उसको कम करते हैं, हम ज्यादा उससे किसान भाई हमारे इतना लाभ कमा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और उसका जो फसल संवर्धन का और इसका कटिंग के बाद में जैसे सफाई का ग्रेडिंग का जो सिस्टम है उससे उसकी फसल का मूल्य संवर्धन, हमारे किसान भाई अपने उसका जितनी भी अच्छी फसल का उस सफाई और ग्रेडिंग करेंगे उससे उनका मूल्य भी ज्यादा मिलेगा। इस तरह से किसान भाइयों के लिए और हमारे राज्य और हमारे देश के लिए कृषि विकास में हर तरह से कृषि यंत्रों का योगदान उसे कभी भूल नहीं सकते, बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि सभी किसान भाई इस चीज को ज्यादा से ज्यादा अपनावें। तो मैं तो ये आप लोगों से अपील भी करूंगा कि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा अपने यंत्रीकरण पे ध्यान देंगे उतना आपकी खेती का जो काम है आसान हो जाएगा।
1: बिल्कुल, कृषि विकास में कृषि यंत्र को योगदान इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत विस्तार से आप जानकारी दी। राजेंद्र कुमार शर्मा जी उपनिदेशक कृषि अभियांत्रिकी कृषि आयुक्तालय जयपुर से पधारिया, इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपको घणो घणो धन्यवाद।
2: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
3: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
2: वो कैसे?
3: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
2: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
4: हाँ तो अभिलाषा जी।
5: जी साहब।
4: भाई दौलत भाई, देखो बहुत चौकी जानकारी राजेंद्र कुमार शर्मा जी से मिल रहा है कि कृषि विकास में कृषि यंत्रों को कई योगदान है। तो चौकी से जानकारी के बाद अब क्यों ना एक चौको सो लोगित हो जाए।
5: बिल्कुल साहब।

0: मैं तो कोड़ी में रामगढ़ लूट लाई। परवीन मिर्जा की आवाज में देखो लोकगीत तो बहुत चौको सुनाए आप
1: जी। पर देखो साहब आप बात करा कि अब कार्यक्रम में जो भी जानकारी आपने मिली है बिने सुननो ही कोने बिने सागे सागे गुन्नो भी है और इन सीख के साथ ही कार्यक्रम खेती बाड़ी को टेम भी पूरा हो तो चालू है।
0: तो अब खेती बाड़ी सिंह देव महेश भाई ने और
1: अभिलाषा ने
0: करा
1: गया और का चाला और करा
0: राम राम सा।
2: खेती बाड़ी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये अमीर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, रात के 8 बजने को है और अब आप सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं कल हो न हो फिल्म से सोनू निगम की आवाज में। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने और संगीतबद्ध किया शंकर एहसान लोई ने।

साथिया फिल्म से सोनू निगम की आवाज में आपने सुनाई होगी। गीत की बोल लिखी थी गुलजार ने और संगीत था एआर रहमान का। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं जहर फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में। गीत में बोल है शहीद कुरैशी के और संगीत अनु मलिक का।

दिल चाहता है फिल्म से आपने सुना ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत और फिल्म संगीत का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं बचना ए हसीनों फिल्म से के और शिल्पा राव की आवाजों में। गीत को लिखा है अनविता दत्त गुप्तन ने और संगीत दिया विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुना रहे हैं वीर ज़ारा फिल्म से। गीत में आवाजें हैं लता मंगेशकर और सोनू निगम की। गीत को लिखा जावेद अख्तर ने और संगीतबद्ध किया मदन मोहन ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनिएगा कार्यक्रम स्पॉट स्कैन। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: सारे खेलों में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन, परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगाई। कुश्ती में सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक पर लगाया दाव, यादगार वापसी कर जीता फाइनल मुकाबला। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर जीता स्वर्ण पदक, लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई किया। महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने दक्षिण कोरिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, स्वर्ण पदक देश के नाम किया। उधर पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक हासिल किया और सेलिंग में नेत्रा कुमानन और सेपक टैकरो में भारतीय पुरुष स्क्वाड्रन टीम ने जीता कांस्य पदक। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों से, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने आज एक के बाद एक कई पदक जीते। भारत ने आज टोटल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, चाहे हम मुक्केबाजी की बात कर ले, कुश्ती की बात कर ले, या फिर महिला हॉकी टीम की बात हो, या फिर आर्चरी की बात हो, सब में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश का झंडा शान से लहराया है। शुरुआत करते हैं मुक्केबाजी से। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम, परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में देश के लिए स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगाई। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
1: भारतीय मुक्केबाजों ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अलग अलग वर्ग में देश को पदक दिलाए। अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम फाइनल में दक्षिण कोरिया के किम मिनसियोंग को 4-0 से हराकर देश के लिए स्वर्ण पदक से अपना अभियान समाप्त किया।
2: स्प्रिंट डिसीजन से ही सही, लेकिन अंकुश पंघाल ने भारत को एक और गोल दिलाया और बॉक्सिंग में भारत के लिए आज एक हैट्रिक है। पहले भारतीय बेटियों ने, उसके बाद 21 वर्षीय अंकुश ने भारत के नाम एक और गोल्ड मेडल।
1: अंकुश ने जोरदार पंच लगाते हुए पहला राउंड 4-1 से जीता। दूसरे राउंड में भी उनका प्रदर्शन बेहतर रहा और उन्होंने 1-2 कॉम्बिनेशन और काउंटर पंच के साथ 5-0 से जीत हासिल की। अंकुश ने इस जीत के बाद कहा कि उन्हें अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास था।
3: अच्छा लग रहा है गोल्ड जीत के, और दिमाग में तो यही था कि हाँ बाउट जीतनी है, कैसे भी कैसे। प्रेशर तो नहीं था पर, लेकिन ये था कि खुद की जो मेहनत की थी उस पर विश्वास था कि हाँ गोल्ड लेना है। मोटिवेशन तो है कि वहाँ पे भी गोल्ड आया था और यहाँ पे भी गोल्ड है, कोर्ट बनाए रखे और हम और भी आगे जाएंगे।
1: उधर लवलीना बोरगोहाइन और परवीन हुड्डा ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए महिला मुक्केबाजी के स्वर्ण के लिए देश का 12 साल का इंतजार समाप्त कर दिया। दोनों ने मजबूत दावेदार मानी जा रही अपनी प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अलग अलग अंदाज में शानदार जीत दर्ज की। भारत की सबसे सफल मुक्केबाजों में शामिल ओलंपिक पदक विजेता लवलीना ने अपने 29वें जन्मदिन को खास बनाते हुए चीन की बाओ जीयी को 5-0 से हराया। उन्होंने इसके साथ ही पिछले एशियाई खेलों में जीते रजत पदक का रंग भी बदल दिया।
2: लास्ट 10 सेकेंड्स, द गोल्ड मेडल बीच, फाइनल राउंड कंक्लूड इन द ब्लू कॉर्नर, लवलीना बोरगोहाइन।
1: इस जीत के बाद लवलीना ने कहा कि ये पदक मेरे लिए बहुत खास है,
4: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए। कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए। मेरा बहुत ज्यादा वेट कंट्रोल नहीं रहता है, लास्ट के 2-3 दिन ही 1-2 केजी कम करना पड़ता है, लेकिन आज तो जरूर गोल्ड मेडल की वजह से जरूर स्वीट खाऊंगी।
1: परवीन ने इसके बाद पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता।
5: प्रवीण का पंच पड़ा है गोल्ड मेडल पे। प्रवीण हुड्डा ने भारत की झोली में इस बार ब्रॉन्ज नहीं गोल्ड मेडल डाला है।
6: गेम्स 2026 का 13वां गोल्ड मेडल प्रवीण हुड्डा ने जीता है।
1: इस जीत के साथ लवलीना और परवीन एशियाई खेलों में मुक्केबाजी का स्वर्ण जीतने वाली भारतीय महिला मुक्केबाजों की विशिष्ट श्रेणी में शामिल हो गई हैं। उनसे पहले मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम ने 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में 51 किलोग्राम

0: फ्लाईवेट वर्ग का स्वर्ण पदक जीता था। आईची नागोया में भारत ने मुक्केबाजी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 पदक जीते जिसमें 3 स्वर्ण शामिल हैं। प्रिया घंगास ने 60 किलोग्राम, कपिल पोखरिया ने 90 किलोग्राम और नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक वर्ग में कांस्य पदक जीते। एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजी प्रदर्शन 2010 के ग्वांगझोउ खेलों में रहा था जहां भारतीय टीम ने कुल 9 पदक हासिल किए थे। इनमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल थे। महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारतीय मुक्केबाजों का ये शानदार प्रदर्शन पिछले महीने ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में रिकॉर्ड तोड़ अभियान के बाद आया है। शांत शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: लवलीना हो, अंकुश हो या प्रवीण हो, बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आज उन्होंने एक के बाद एक भारत को 3 स्वर्ण पदक दिलाए। मुक्केबाजी से चलते हैं अब कुश्ती की ओर, जहां सुजीत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत को एक और स्वर्ण पदक दिलाया। भारतीय रेसलर सुजीत कलकल ने एशियाई खेलों के कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। रोमांचक फाइनल में सुजीत ने तजाकिस्तान के अब्दुल मजीद कुदियेब को 10-9 से हराया। सुनते इस मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
2: फाइनल मुकाबले में सुजीत ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए कुश्ती में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया।

0: के लिए एक और गोल।
1: उन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार वापसी करते हुए ये जीत हासिल की। मैच के ज्यादातर समय 23 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी 2-9 से पीछे चल रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने मैच के आखिरी पलों में लगातार 8 पॉइंट हासिल करके जबरदस्त वापसी की और कुदीएव को हराकर इस एशियन गेम्स में भारत के लिए रेसलिंग का पहला स्वर्ण पदक सुनिश्चित किया। कलकल की ये जीत आईची नागोया में उनके शानदार प्रदर्शन का नतीजा थी। इससे पहले भारतीय रेसलर ने अफगानिस्तान के सैयद उमर जजई के खिलाफ अपनी चुनौती शुरू की और शुरुआत में 0-3 से पिछड़ गए। इसके बाद कलकल ने पुश आउट और शोल्डर थ्रो से पॉइंट हासिल करके मैच का रुख बदल दिया और 5-3 की बढ़त बना ली। फिर उन्होंने एक और थ्रो और रोल से 4 और पॉइंट हासिल किए, जिससे उन्होंने 13-3 से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीत दर्ज की और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके बाद कलकल ने ईरान के अब्बास इब्राहिम जागरे सावतकोही के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और बिना कोई पॉइंट गवाए तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीत हासिल की। सेमीफाइनल मैच उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उन्हें जापान के ओलंपिक चैंपियन कोतारो कियोका का सामना करना था। हालांकि कलकल पहले पीरियड के अंत में 0-2 से पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में उन्होंने वापसी करते हुए 3 पॉइंट हासिल किए, जबकि कियोका सिर्फ 1 पॉइंट ही बना पाए। मैच 3-3 से ड्रॉ पर खत्म हुआ, इसीलिए कलकल ने तय नियमों के आधार पर जीत हासिल की और रोमांचक फाइनल को भी अपने नाम कर लिया। भरतनाथ स्पोर्ट्स कैप।
2: आइए सुनते हैं जीत के बाद सुजीत ने क्या कुछ कहा।
3: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया।
4: देखो यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
2: मुक्केबाजी हो, कुश्ती हो और उसके बाद अब बात हॉकी पर, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक और शानदार प्रदर्शन किया और भारत को एक और स्वर्ण पदक दिलाया। एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 44 साल का सूखा खत्म कर दिया है। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने चीन को 1-0 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: फाइनल मैच में भारतीय टीम ने शुरुआत से ही चीन पर दबाव बनाने का प्रयास किया। मैच के 6 मिनट में बलजीत कौर को ग्रीन कार्ड मिला, लेकिन 10वें मिनट में अपना 200वां इंटरनेशनल मैच खेल रही लाल रेमसी यामी ने बेहतरीन गोल दागते हुए भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। भारतीय टीम को इसके बाद अपनी बढ़त दोगुना करने का सुनहरा मौका मिला, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर को टीम गोल में तब्दील नहीं कर सकी। हालांकि मजबूत डिफेंस के दम पर भारतीय टीम पहले क्वार्टर फाइनल में अपनी बढ़त को बनाए रखने में सफल रही। दूसरे क्वार्टर में चीन ने वापसी करने की कोशिश की और आक्रामक खेल दिखाया। चीन को जल्द ही पेनल्टी स्ट्रोक मिला, लेकिन सविता पुनिया ने दमदार बचाव करते हुए चीन को बराबरी करने से रोक दिया। हालांकि इसके बावजूद चीन का

0: आक्रामक खेल लगातार जारी रहा, लेकिन वह भारतीय टीम के मजबूत डिफेंस को नहीं भेद सके। तीसरे और चौथे क्वार्टर में भी भारतीय टीम के डिफेंस ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया और चीन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। तीसरे क्वार्टर में कप्तान सलीमा टेटे के चोटिल होने के बावजूद भारतीय टीम ने चीन को हावी होने का मौका नहीं दिया। चौथे क्वार्टर में सलीमा मैदान पर वापस लौटी और उनकी अगुवाई में टीम अपने दबदबे को कायम रखते हुए गोल्ड मेडल जीतने में सफल रही। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और श्रोताओं, आपको बताएं, भारतीय महिला हॉकी टीम ने आखिरी बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल 1982 में जीता था। वहीं 1998 में टीम ने सिल्वर और 2018 में भी फाइनल तक का सफर तय किया था। भारतीय महिला टीम का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में शानदार रहा। गोल्ड जीतने के साथ ही भारतीय टीम ने लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। और श्रोताओं, उधर भारतीय पुरुष टीम का सामना कल स्वर्ण पदक मुकाबले में मलेशिया से होगा, मतलब कल भी एक और स्वर्ण पदक की उम्मीदें होंगी। और अब बात तीरंदाजी पर। भारत की महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। भारतीय टीम की 10 बार की चैंपियन दक्षिण कोरिया पर यह ऐतिहासिक जीत है। महिला रिकर्व आर्चरी टीम का एशियन गेम्स इतिहास में यह पहला स्वर्ण पदक है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: इंडिया विल विन गोल्ड, इंडिया हैज वन गोल्ड इन द वुमेन्स टीम रिकर्व इवेंट, अ फीट नेवर डन बिफोर। सेलिब्रेट दिस विन, ब्रीद इन दिस मोमेंट, हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। फर्स्ट टाइम चैंपियंस, टू यंगस्टर्स इन कीर्ति एंड कुमकुम अलोंग विद अंकिता भगत आर स्टेपिंग ऑन टू द प्राइम पोडियम विद गोल्ड।
3: भारत की महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने फाइनल में मजबूत कोरियाई टीम को 5-3 से हराकर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। दोनों टीम 54-54 का स्कोर करके सेट बराबर कर दिया और हर एक को एक पॉइंट मिला। कोरिया ने दूसरे सेट की शुरुआत 10-9 और 9 के स्कोर के साथ जोरदार तरीके से की। तीसरे सेट में कोरिया ने 8 के साथ शुरुआत की, लेकिन फिर अगले दो शॉट में 10 और 9 के साथ वापसी की। अपने अगले तीन शॉट में कोरिया ने 3 बार 8 का स्कोर किया, जिससे भारत को सेट जीतने का एक मजबूत मौका मिला। इसके बाद भारत ने 8 के साथ शुरुआत की, फिर 9 के साथ और आखिर में कुमकुम ने 10 का स्कोर करके तीसरा सेट अपने नाम कर लिया, जिससे टीम 4-2 से आगे हो गई। चौथे सेट में कोरिया ने 2-9 के स्कोर से शुरुआत की, उसके बाद 10 का स्कोर किया। भारत ने 8-8 और फिर 9 के शॉट लगाए। इसके बाद कोरिया ने 8-9 और 9 के शॉट लगाए। कीर्ति ने 9 का शॉट लगाकर शुरुआत की और अंकिता ने 1 और 9 का शॉट लगाया, जिसके बाद कुमकुम ने 10 का स्कोर करके सेट बराबर कर दिया, जिससे 5-3 से जीत पक्की हो गई। कुमकुम मोहोद, अंकिता भक्त और कीर्ति शर्मा ने धैर्य के साथ साहसिक खेल का प्रदर्शन करते हुए भारत को पदक दिलाया। मनोज, स्पोर्ट्स कैन।
1: आइए सुनते हैं पदक विजेता अंकिता ने जीत के बाद क्या कुछ कहा।
4: हम लोग बहुत खुश है कि हम लोगों ने पहली बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। इसी दिन के लिए पिछले 2-3 महीने से बहुत मेहनत की है। साई बहुत सपोर्ट करती है हम लोगों को।
1: हर भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम ने रजत पदक जीता। फाइनल में 9 बार की चैंपियन दक्षिण कोरियाई टीम ने भारत को हराया। भारत के नीरज चौहान, यशदीप भोगे और धीरज बोमदेवरा की तिकड़ी को दक्षिण कोरिया की टीम ने 1-5 से हराया। और अब बात सेपक टैकरों पर। भारतीय पुरुष स्क्वाड्रन टीम ने एशियन गेम्स के सेपक टैकरों स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें जापान से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। एशिया में यह भारत का सेपक टैकरों में तीसरा पदक है। और अब बात सेलिंग पर। भारत की सेलर नेत्रा खुमाना ने महिलाओं की डिंगी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। दो रेस की फाइनल सीरीज के बाद नेत्रा ने 14 पॉइंट के साथ फिनिश किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब बात क्रिकेट पर। एशियाई खेलों में कल भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का सामना स्वर्ण पदक मुकाबले में पाकिस्तान से होगा। सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया था। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपने सुझाव sportscan.ear@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार। Thank you.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आत्मसम्मान बढ़ा और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।
0: बुधवार को दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि मन की बात से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: 2014 अक्टूबर से आकाशवाणी पर शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करते हैं। यह कोई नीतिगत संबोधन नहीं है, इसमें किसी आम नागरिक द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सामने लाया जाता है, किसी योजना को सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है और स्वच्छता, जल संरक्षण या आत्मनिर्भरता जैसे विषयों में लोगों से सहयोग की अपील की जाती है। रेडियो उन जगहों तक भी पहुंचता है जहां संचार का कोई और माध्यम नहीं पहुंच पाता। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा था,
3: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
2: मीडिया से बातचीत में लखनऊ के विभिन्न हिस्सों से श्रोताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक दूसरे से और

0: देश से जुड़ने का एक नया माध्यम प्रदान किया है।
1: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझना चाहिए। आप भारत का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है तो हमें उस पर अमल करना चाहिए।
2: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गाँव के उन नौजवानों तक पहुँचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौरान पिछड़ गए थे और उनकी बात को कर रहे हैं।
0: आज करोड़ों भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनते हैं। एक आकांक्षी भारत उत्सुकता के साथ उन कहानियों को सुनता है जिनमें बदलाव के वास्तविक अनुभव सामने आते हैं। मन की बात ने सार्वजनिक संचार के स्वरूप को एक नया रूप दिया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। एक रिपोर्ट।
4: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेइचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत के राजदूत नागुमा मल्लिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के क्रॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवम्बर तक उपलब्ध रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने

0: केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें शिशु देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5 लाख शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी है। एक रिपोर्ट।
1: आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। आयोग ने मौजूदा महिला केंद्रित बाल देखभाल अवकाश ढांचे को लिंग भेद रहित बाल देखभाल अवकाश में बदलने की सिफारिश की है, जो दोनों अभिभावकों में से किसी एक को उपलब्ध हो। रिपोर्ट में मौजूदा 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश ढांचे को दोनों कामकाजी अभिभावकों के बीच समान रूप से विभाजित करने का प्रस्ताव है। इसमें प्रत्येक को 365 दिन मिलेंगे या साझा पूल बनाने का प्रस्ताव है, जहां दोनों अभिभावक एक ही संगठन में काम करते हों। 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए रिपोर्ट में प्राथमिक और माध्यमिक देखभालकर्ताओं के बीच 60:40 के रूप में साझा देखभाल मॉडल का भी प्रस्ताव है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सार्वभौमिक और कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बनाने का भी प्रस्ताव है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मिजोरम में कल दुखद सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सूचना और प्रसारण जगत के 3 सदस्यों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये दुर्घटना तब हुई जब अधिकारी आधिकारिक ड्यूटी पर थे और उनका वाहन गहरी खाई में गिर गया। मृतकों में भारतीय सूचना सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर इंगम पामे और नामपीबू मरिन माई तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो के कर्मचारी एच लियानविला शामिल हैं। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
3: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया। यही सोच के उतरे थे मैट पे कि वही देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
2: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
4: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
2: महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट खोल दिए गए हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। कल लक्षद्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गाना आशा भोसले, अमित कुमार, रीमा लहरी और साथियों की आवाजों में है। फिल्म का नाम है थानेदार। गीत अनजान का है, संगीत बप्पी लहरी का।

राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में हमारे तुम्हारे फिल्म का गाना। गीत योगेश गौड़ का है, संगीत आरडी बर्मन का।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प।

आइए अब सुनते हैं लम्हे फिल्म का गाना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत शिव हरी का।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें।

0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
1: कार्यक्रम का अगला गाना शब्बीर कुमार की आवाज में है। फिल्म का नाम है बेताब। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत से सवारा है आरडी बर्मन ने।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा, आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले।

एक ऐसी अभिनेत्री का जिक्र है जिन्होंने 1960 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा को अपनी खूबसूरती और अभिनय से पर्दे में एक चमक पैदा की, उसे रोशन किया। ये दो दशकों तक सबसे चर्चित और हिंदी फिल्मों की सफलतम नायिका रही। भारतीय सिनेमा में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया।

अभिनेत्री आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ। आशा पारेख की माताजी ने इन्हें शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए बहुत ही कम उम्र में भेजना शुरू कर दिया था और आपने कई गुरुओं से नृत्य सीखा जिसमें पंडित बंसीलाल भारती भी शामिल हैं। जहां तक आशा पारेख के फिल्मी करियर की शुरुआत की बात है तो आपने बेबी आशा पारेख के नाम से सन 1952 की बिमल रॉय की फिल्म माँ से शुरुआत की। फिल्म में लेने के पहले इस निर्देशक ने एक मंचीय कार्यक्रम में नृत्य करते देखा था और फिर एक बाल कलाकार के रूप में बेबी आशा को फिल्म में लिया। फिर दोबारा 1954 की फिल्म बाप बेटी फिल्म के लिए भी बेबी आशा को आपने अनुबंधित किया था। बाद की फिल्मों की असफलता ने बेबी आशा को दुखी कर दिया। बाल कलाकार के रूप में आपने कुछ एक और फिल्में भी की जिसकी वजह से इनको स्कूली शिक्षा त्यागनी पड़ी। आशा पारेख की उम्र 16 रही होगी जब इन्होंने दोबारा अभिनय के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा आजमाने की सोची, पर सन 1959 की विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई में नायिका के रूप में आप नहीं चुनी गई। इनकी जगह अभिनेत्री अमिता ने वो भूमिका निभाई थी। आशा पारेख को फिल्मकार ने यह कहकर रिजेक्ट किया था कि इनमें स्टार मटेरियल नहीं है, जबकि 8 दिनों बाद ही निर्माता सुबोध मुखर्जी और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन ने आशा पारेख को हीरोइन के रूप में 1959 की फिल्म दिल दे के देखो में शम्मी कपूर के साथ कास्ट किया और ये फिल्म सफल रही और आशा पारेख को इस फिल्म ने स्टार बना दिया।

0: मेरी जान, वाम, वाम, वाम, वाम, वाम।
1: दिल दे के देखो की सफलता ने फिल्मकार नासिर हुसैन और आशा पारेख की जोड़ी बना दी, जिससे इन्होंने साथ साथ 6 फिल्में की जो काफी सफल रही। ये फिल्में हैं 1961 की देवानंद के साथ जब प्यार किसी से होता है।

सन 1966 की विजय आनंद द्वारा निर्मित म्यूजिकल थ्रिलर जिसके निर्माता थे नासिर हुसैन। फिल्म थी तीसरी मंजिल।

शशि कपूर के साथ लेखक, निर्माता और निर्देशक नासिर हुसैन की म्यूजिकल रोमांस फिल्म प्यार का मौसम।

0: और फिर 1971 में आई आशा पारेख और जितेंद्र की ताहिर हुसैन द्वारा निर्मित, नासिर हुसैन द्वारा लिखित निर्देशित फिल्म कारवां, और फिर सन 1984 की मंजिल मंजिल में आशा पारेख ने एक केमियो रोल किया था। लेकिन इन छह फिल्मों ने जहां नासिर हुसैन और आशा पारेख की फिल्मी केमिस्ट्री को सफल बनाया, वहीं हिंदी सिनेमा को भी कलात्मक ढंग से परिष्कृत किया, असरदार बनाया।
1: कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल,

फिल्मों की हिट नायिका जिन्हें हम आशा पारेख कहते हैं। फिल्मालय स्टूडियो की शशधर मुखर्जी द्वारा निर्मित निर्देशित दिल देके देखो से फिल्म दर्शकों और समीक्षकों ने मान लिया कि अ स्टार इज बॉर्न। बात की सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली फिल्मों ने इन्हें सर्वोत्कृष्ट हिट गर्ल के रूप में स्थापित किया। इसी नाम से आशा पारेख ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खालिद मोहम्मद के साथ मिलकर लिखी द हिट गर्ल।

बचपन से ही सीखी नृत्य कला इनकी अभिनय ख्याति को देश विदेश में बढ़ाने में सहायक रही। अभिनय के अलावा आशा पारेख अपने सामाजिक उत्थान के कार्यों के लिए भी जानी जाती है। 1988 से 2001 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड की आप अध्यक्ष रहीं, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन से भी आप संबद्ध रहीं और फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स, टेक्नीशियन और एक्टर्स के हितों की रक्षा के लिए बने संगठनों से भी आप जुड़ी रहीं। बाद के वर्षों में आप टीवी के कोरा कागज और पलाश के फूल जैसे धारावाहिक की निर्माता निर्देशक भी बनी। चलिए इन बातों के बाद अब फिर से चलते हैं हिट गर्ल की उन फिल्मों की ओर जिसमें आशा पारेख ने ग्लैमर गर्ल, उत्कृष्ट नृत्यांगना और टॉम बॉय जैसे किरदारों को बखूबी निभाया था। शक्ति सामंत की फिल्म पगला कहीं का में आशा पारेख ने डॉक्टर शालिनी का किरदार निभाया था।

1971 की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म कटी पतंग में आपने काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। आशा पारेख की जिद्दी फिल्म भी काफी मशहूर रही और जिसमें ये गाना उनका काफी मशहूर रहा।

0: कई निर्माता निर्देशकों ने कई बार आशा पारेख को अपनी फिल्म में कास्ट किया, जिसमें विजय आनंद और मोहन सहगल प्रमुख हैं। अपने हिंदी फिल्मी करियर की सफलता के दौर में आशा पारेख ने अपनी मातृभाषा गुजराती में भी फिल्में की, जिसमें 1963 की फिल्म अखंड सौभाग्यवती बड़ी हिट फिल्म थी। पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में भी आपने अभिनय किया। हिंदी की आन मिलो सजना इनकी कई लोकप्रिय फिल्मों में से एक रही।
1: रंग रंग के फूल खिले मोहे भाए कोई रंग ना।

दो बदन 1966 की, 1969 की चिराग, 1978 की मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में आपके अभिनय को काफी सराहा गया। फिल्म भरोसा, आए दिन बहार के, उपकार, शिकार, कन्यादान, आया सावन झूम के जैसी 60 के दशक की फिल्में आशा पारेख के अभिनय से सजी थी।

0: मेरा गांव मेरा देश 1971 की एक्शन ड्रामा फिल्म जिसे निर्देशित किया था राज खोसला ने, नायक धर्मेंद्र के साथ आशा पारेख की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस फिल्म में जहां आशा पारेख अंजू बनी थी, वहीं विनोद खन्ना ने डाकू जब्बर सिंह का रोल अदा किया था। इस फिल्म के गीतों ने भी धूम मचाई थी।
1: कुछ

फिल्म नादान, समाधि, राखी और हथकड़ी, हीरा, अनजान राहें, रानी और लाल परी, जख्मी, उधार का सिंदूर जैसी फिल्मों के साथ साथ 1970 के दशक में आई आशा पारेख अभिनीत फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की में एक कुलीन ठाकुर राजनाथ सिंह चौहान के प्रेम तुलसी का किरदार आपने निभाया था, जिसमें राजनाथ के बेटे अजय को जन्म देने के बाद तुलसी अपना जीवन राजनाथ की पत्नी के लिए बलिदान कर देती।

सन 1980 के दशक में बिन फेरे हम तेरे, सौ दिन सास के, बुलंदी, कालिया, हथियार और बंटवारा जैसी फिल्में और फिर 1990 के दशक में प्रोफेसर के पड़ोसन, भाग्यवान और 1994 की घर की इज्जत और 1995 की आंदोलन। 1995 के बाद से ही आशा पारेख ने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया, फिर कुछ काम टीवी के लिए किया। वर्तमान में आप अपनी डांस एकेडमी और सांताक्रूज में स्थित आशा पारेख हॉस्पिटल पर ध्यान दे रही हैं। जाहिर है अपनी उपलब्धियों की, सम्मानों की, फिल्मों की, अनुभवों की और यादों के साथ अपनी आप निजी जिंदगी जी रही हैं अपने ढंग से, जो कि महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक फिल्मी दर्शकों की बात है, आशा पारेख जी के फैंस की बात है, तो आशा जी आज भी उनके लिए द हिट गर्ल है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था आशा पारेख पर, आलेख और स्वर जी शाम का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से FM बैंड 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 10 बजने को ही आइए सुनते आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से जापान में आयोजित हो रही एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाइलाइट्स। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: one of the biggest Indian stories of the day. That 1-0 triumph over China in women's hockey finals doesn't just end a four-decade drought. It also officially stamps India's ticket to the Los Angeles 2028 Olympic Games. Here's Anupam Pathak with the story of a historic final.
1: महिला हॉकी के फाइनल में आज भारत की लड़कियों ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया और उनके लिए तालियां ही तालियां। जितनी भी बजाइए कम है। चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और लॉस एंजलिस ओलंपिक में प्रतिभागिता पक्की कर ली कॉन्टिनेंटल चैंपियन होने के नाते। भारतीय हॉकी प्रेमियों के लिए एक बहुत तनाव भरा, खून जमाने वाला, रोमांच से भरा हुआ मैच था ये। पूल लेवल पे गोल दागने वाली लड़कियों ने मजबूत टीम के विरुद्ध रणनीति बिल्कुल बदल दी। थोड़ी रिस्की जरूर थी लेकिन पूरी तरह फिट और मुफीद रही। फर्स्ट क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत के दूसरे सीरियस मूव में ही मौका आ गया। डी के भीतर मिले क्रॉस पर अपना 200वां मैच खेल रही लाल रंग सियामी ने रिवर्स शॉट उठता हुआ लगाया तेज और एकदम निशाने पर, आंखों में चस्पा हो जाने वाला गोल, शायद गोल ऑफ द टूर्नामेंट। भारत 1-0 से आगे हो गया और इसके बाद भारतीय रणनीति सिर्फ और सिर्फ रक्षा करने की रही। गाहे बगाहे मिले अवसरों को छोड़ दें तो खेल मध्य मैदान में ही होता रहा या फिर चीनी खिलाड़ी आक्रमण करते रहे। पूरे मैच में 62% गेंद चीन के खिलाड़ियों के पास ही रही और दूसरे क्वार्टर में भी चीन हमला ही करता रहा, भारत बचाव करता रहा। खासतौर पर सुशीला चानू और नवनीत कौर ने बहुत शानदार तरीके से चीनी आक्रमण विफल किए। फिर आया एक और दिल थाम लेने वाला क्षण, चीन का अटैक बना। पहले पेनल्टी कॉर्नर मिला वो बेकार गया, उसके थोड़ी देर बाद उन्हें मिल गया पेनल्टी स्ट्रोक। किसी को भी लगेगा अब तो स्कोर बराबर। सविता पूनिया ने अकल्पनीय पूर्वानुमान के साथ अपने बाईं ओर गिरते हुए ग्लव्स से पेनल्टी स्ट्रोक का शॉट रोक दिया। हाफ टाइम स्कोर 1-0 और इसके बाद चीन ने चाहे जितना दबाव बनाया भारतीय अंततः उसे बेकार ही करते रहे। डिफेंस पूरी तरह शबाब पर, चीन के विरुद्ध चीन की दीवार की तरह डट गया भारतीय रक्षण। चौथे क्वार्टर में भारत ने यही रणनीति अपनाए रखी। समय की सुई घूम रही थी, वैसे वैसे चीन की खींच भी बढ़ रही थी लेकिन भारतीय लड़कियां गेंद को मध्य में रख समय बिताने की कोशिश में लगी थी। अंत में हुआ ये कि चीन ने अपने गोलकीपर को भी मैदान से बाहर कर दिया, यानी सभी 11 खिलाड़ी अटैक पर। लेकिन तब भी भारत गोल पोस्ट खाली देखकर भी प्रत्याक्रमण के मूड में नहीं आया, बस एक ही मूव बनाया चीनी डी तक पहुंचने का और जैसे ही हुटर बजा लड़कियां उछल पड़ी, देश उछल पड़ा, स्वर्ण पदक भारत को। अब इंतजार रहेगा कि भारत की पुरुष टीम भी कल फाइनल में मलेशिया को मात दे दे और स्वर्ण पदकों की जोड़ी पूरी करे और वो भी 2028 ओलंपिक में सीधे प्रवेश कर ले। इस जीत ने भारतीय हॉकी और नीति नियंताओं को भी अच्छा मौका दे दिया है। अब तैयारियां करने, प्रयोग करने, नई प्रतिभाओं को मौका दे, देश के लिए बेस्ट टीम तैयार करने के लिए 2 साल का समय मिल गया है, वरना अभी करीब 1 साल और इंतजार करना पड़ सकता था ओलंपिक कोटा के लिए। चलते चलते ये भी बता दूं कि इसके पहले 1982 में अंतिम बार भारत ने महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था एशियन गेम्स में।
0: Next on to the wrestling mat, and this was a day when India had plenty at stake across 4 weight categories, and one of those bouts produced a quite extraordinary comeback. Here's Shahid Azmi with a wrestling report.
2: 8 साल का इंतजार खत्म हुआ, वो भी ऐसे कमबैक के साथ जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भारत के सुजीत कलकल ने एशियन गेम्स में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के पदकों की संख्या में न सिर्फ इजाफा किया बल्कि जकार्ता 2018 के बाद पहली बार भारत को एशियन गेम्स में पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं रजत रुहाल, प्रिया मलिक और दीपांशी सहित 3 भारतीय पहलवान मैट पर उतरे थे लेकिन वे कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सके। पहले बात गोल्डन बॉय सुजीत कलकल की। फाइनल मुकाबले में सुजीत ने ताजिकिस्तान के अब्दुल मजीद कुदियेव को रोमांच के प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में 10-9 से शिकस्त देकर भारतीय खेमे को खुशी से भर दिया। सबसे खास बात यह रही कि पहले पीरियड के बाद सुजीत 2-9 से पीछे थे लेकिन दूसरे पीरियड में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार 8 अंक जुटाए और मुकाबले के आखिरी 10 सेकंड में निर्णायक टेकडाउन के साथ बाजी पलट दी। इससे पहले सुजीत ने राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के सैयद उमर ज़साई को 13-3 से और क्वार्टर फाइनल में ईरान के अब्बास इब्राहिम को 10-0 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने जापान के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन कोटारो कियोका को 3-3 के बराबरी के बाद पॉइंट क्राइटेरिया के आधार पर मात दी। आपको ये भी बताते चले, सुजीत साल 2026 में अब तक

जी हाँ, एशियाई चैंपियनशिप और वर्ल्ड अंडर 23 खिताब जीतने के बाद अब एशियन गेम्स का गोल्ड भी उनके नाम रहा। वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में दीपांशी कांस्य पदक से चूक गई। कांस्य पदक मुकाबले में उन्हें कजाकिस्तान की जेने बयानोवा ने चित करके यानी बाईफॉल के जरिए शिकस्त दी, जबकि महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया मलिक को राउंड ऑफ 16 में किर्गिस्तान की एपेरेमेडित काइजी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह पुरुषों के 125

0: अनीशा 57 किलोग्राम में मैट पर उतरेंगी।
1: Now to the boxing ring. Three Indian boxers went into gold medal bouts today. Lovlina Borgohain, Parveen Hooda and Ankush Panghal. And all three emerged as Asian Games champions. For a golden day for Indian boxing, here's Shahid Azmi.
0: मुक्केबाजी रिंग में भारतीय मुक्केबाजों ने विरोधी बॉक्सरों पर ऐसा पंच जड़ा कि एक ही दिन में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लग गई और इतिहास के पन्नों पर लिख दिया एक नया गोल्डन अध्याय। एशियन गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल ने अपने मुक्कों से बैक टू बैक 3 स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाल दिया। पहले बात लवलीना बोरगोहेन की, अपने जन्मदिन पर लवलीना ने खुद को और देश को शानदार तोहफा दिया। महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में लवलीना ने चीन की बाओ जी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही हांगझाऊ के रजत को स्वर्ण में बदलते हुए लवलीना ने इतिहास रच दिया। वे मैरी कॉम के 2014 के बाद एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई। लेकिन भारत का स्वर्णिम पंच यही नहीं रुका। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा का मुकाबला चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन चेन नियन चीन से हुआ। मुकाबला बेहद करीबी रहा, लेकिन परवीन ने शानदार धैर्य दिखाते हुए 3-2 से जीत दर्ज की और पहली बार एशियन गेम्स चैंपियन बन गई। इससे पहले परवीन ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की नवखोर खादी मोवा और सेमीफाइनल में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। और फिर बारी आई तीसरे स्वर्ण की। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अंकुश पंघाल ने कोरिया के किम मिसियोंग को 4-0 से हराकर भारत के लिए तीसरा गोल्ड जीता। अपने पहले ही एशियन गेम्स में अंकुश ने शानदार प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल में 5-0 की जीत के बाद सेमीफाइनल में उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के फजलुद्दीन एरकिन बोए को 4-1 से हराया और फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भी अंकुश ने कोई मौका नहीं दिया और भारत की झोली में तीसरा स्वर्ण डाल दिया। इस तरह भारत ने बॉक्सिंग में 3 स्वर्ण और 3 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते। इन 6 पदकों में एक गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज पुरुषों ने जबकि 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज महिला बॉक्सरों ने जीते। आपको ये भी बता दे, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने इस इवेंट में 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत 4 पदक जीते थे।
1: Next to the archery range, and another memorable day for India. There was history in the women's recurve team event, while the mixed and men's team competitions also had Indian interest. Shahid Azmi has a complete story.
0: Nagoya में भारतीय तीरंदाजों ने आज निशाने पर ऐसा तीर चलाया कि पदकों से झोली भर गई। एक ही दिन में भारत ने तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किए। महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर पहली बार एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि मिश्रित और पुरुष रिकर्व टीम ने सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। यानी आज धनुष की डोर से निकले हर तीर ने भारत के लिए इतिहास की नई इबारत लिखी। बात पहले महिलाओं के ऐतिहासिक प्रदर्शन की करते हैं। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और सिर्फ 17 साल की कुमकुम मोहोत की भारतीय तिकड़ी ने तेज हवाओं के बीच शानदार धैर्य और सटीक निशाने का प्रदर्शन किया। फाइनल के शुरुआती 2 सेट बेहद रोमांचक रहे। दोनों सेट 54-54 और 56-56 की बराबरी पर खत्म हुए, लेकिन तीसरे सेट में भारत ने बड़ा पलटवार किया। दक्षिण कोरिया के तीरंदाज लगातार 3 बार 8 अंक पर रुके, जबकि भारत ने 55 अंक जुटाकर सेट अपने नाम करने के साथ 4-2 की बढ़त बना ली। चौथे सेट में दोनों टीमों का स्कोर 54-54 रहा। कीर्ति शर्मा के एक तीर ने समीक्षा के बाद 8 के बजाय 9 अंक दिए और भारत ने इतिहास रच दिया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में चीन को 5-1 से हराकर पहली बार महिला रिकर्व टीम के फाइनल में जगह बनाई थी। 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला रिकर्व टीम ने नागोया में पदक का रंग बदलकर सीधे स्वर्ण कर दिया। उधर रिकर्व मिश्रित टीम इवेंट में भारत ने रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक के लिए खेले गए फाइनल में धीरज बम्बा देवरा और कुमकुम मोहोत की भारतीय जोड़ी का सामना चीन से हुआ। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन चीन के हाथों भारत को 3-5 से हार कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने शुरुआती 2 सेट गंवाए, लेकिन तीसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए 37-36 से जीत दर्ज की। चौथे सेट में दोनों टीमों के बीच 37-37 की बराबरी रही, लेकिन शुरुआती बढ़त के दम पर चीन ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। स्कोर लाइन की बात करें तो भारत को 34-38, 35-37, 37-36 और 37-37 से कांटे भरे मुकाबले में शिकस्त मिली। वहीं दिन के आखिरी फाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक हासिल किया। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को 1-5 से हार का सामना करना पड़ा। पहला गेम 56-56 की बराबरी पर खत्म हुआ। उसके बाद दूसरे गेम में भारत 50-57 और तीसरे गेम में 54-56 से पीछे रह गया। इस तरह दक्षिण कोरिया ने स्वर्ण पदक जीता जबकि भारत के हिस्से रजत पदक आया। इस शानदार

शुदा भी अपने किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में दुनिया फिल्म का गीत सुना। जावेद अख्तर के बोल थे आर डी बर्मन का संगीत। आइए अब आपको सुनाते हैं किशोर कुमार की आवाज में दुश्मन फिल्म का गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोता, अभी आपने मुकेश कुमार, किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज में धर्म कर्म फिल्म का गीत सुना। मौजूद सुल्तानपुरी के बोल थे आर डी बर्मन का संगीत। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं तेजा फिल्म का गीत, नितिन मुकेश, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार और साथियों की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

नितिन मुकेश, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार और साथियों की आवाज में गाए तेजा फिल्म के खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। अब से खुशी पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं,

लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में 5 अक्टूबर तक गरज के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: रात्रि के 11:05 हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह के 5:53 आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। शुभ रात्रि। जय हिंद।